0: जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नजर चारधाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
3: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
2: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
3: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
1: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सर श्रीकाल, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। संडे की खूबसूरत सी सुबह में खुशी आपके साथ है और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल शो और बाहर का वेदर भी बहुत ही खूबसूरत है।

संडे की सुबह जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं और भाई बारिश ने भी कमाल करके रखा है। हाँ, कल पूरे दिन बारिश हुई है। मैंने इतना कुछ प्लान किया था कि वीकेंड है, कुछ स्पेशल करेंगे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो फिर कल हमने नींद ही पूरी कर ली है। वैसे बात करते हैं आज की, और आज संडे मॉर्निंग है एंड 27 सितंबर की तारीख है आज। बहुत ही प्यारा दिन संडे का जब अपनी फैमिली के साथ हम लोग होते हैं। और दोस्तों आज संडे का खूबसूरत थॉट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा महसूस करने का, और सबसे जरूरी खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने का। इसीलिए आज की सुबह को शिकायतों से नहीं, शुक्रिया और मुस्कुराहट के साथ शुरू कीजिएगा, क्योंकि जब मन खुश होता है ना तो छोटी सी सुबह भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। आपका आज का दिन सुकून, मुस्कान और पॉजिटिव वाइब से भरा रहे, हम तो यही कामना करते हैं। आप सभी को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं क्या जी, की हाल चाल दोस्तों मैनू? ओहो, घर में गर्मा गर्म चाय पकौड़े चल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आनंद लीजिएगा। और खुशी यहाँ पर आ गई है आपकी सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए। तो इस ब्यूटीफुल संडे आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9883789689। अभी लौट कर आती है कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, एंड तब तक आप भी मुझे अपने संदेश पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और एवरीवन करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन, एंड आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं स्पेशली, वो भी सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो बस आप ये प्यारे से चेहरे पर ना प्यारे से स्माइल कर दीजिएगा, और ये गाना आप सभी के लिए, एंजॉय करें। दावन मूवी से जो अमेजिंग मूवी आई है अभी, तमन्ना भाटिया साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा जी की,

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया एंड अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाज़ में, और आपने हमें याद किया, हमने आपको याद किया, तभी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे है ना व्यूअर, आप सभी से गुफ्तगू करने के लिए। और सच में मौसम बहुत ही प्यारा है,

दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम बोल कर नहीं, महसूस करके निभाते हैं। नदियाँ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है हमसे, नदियों का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है हमसे। कभी माँ बनकर जीवन देती हैं, तो कभी किनारों पर बैठकर हमारी थकान चुरा लेती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ आपकी खुशी, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो संडे मॉर्निंग मस्ती। और दोस्तों, आज है 27 सितंबर और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। दोस्तों, नदियां सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये हमारे जीवन की वो धड़कन है जिनसे खेती, पेड़ पौधे, इंसान और न जाने कितने जीव जंतु जुड़े हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस नदी का पानी कभी हमारे लिए जीवन था, अगर उसी में हम कूड़ा, प्लास्टिक और गंदगी डालते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। दोस्तों, नदियाँ बहती रहें तो ज़िंदगी मुस्कुराती है, नदियाँ बहती रहें तो ज़िंदगी मुस्कुराती है, नदियाँ सूखें तो हरियाली भी रूठ जाती है। इनका पानी सिर्फ पानी नहीं, जीवन की पहचान है, इन्हें साफ रखना हम सब की जिम्मेदारी और सम्मान है। तो आज वर्ल्ड रिवर डे पर क्यों ना हम एक छोटा सा प्रण लें, ना नदी को गंदा करेंगे, ना किसी को गंदा करने देंगे। कूड़ा नदी या फिर उसके किनारे नहीं फेंकेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। क्योंकि दोस्तों, नदी को बचाना सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं है, नदी को बचाना यानी अपने आने वाले कल को बचाना। तो आज जब किसी को भी आप जब किसी नदी को देखें तो सिर्फ एक तस्वीर लेने के लिए मत रुकिए, एक पल ठहरिए, ये भी सोचिए कि हम उस नदी के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आरजी खुशी और आपसे मैं एक बस इतनी सी गुजारिश करूंगी कि नदियां हमारी विरासत हैं, इन्हें साफ रखें, सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला ट्रैक भी बहुत ही खूबसूरत है। स्टे कनेक्टेड स्टेट यूनियन एफएम मुरादाबाद 89.6, और यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आए तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ।

हमारे पास यहाँ पर मुस्कान जी का मैसेज आया है न्यू मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग पहुँच जाती है आज की सुबह और कहती है कि खुशी जी सैटरडे मेरा भी ऑफ रहता है और मैंने भी सोचा था कि कल मैं कहीं घूमने जाऊंगी एंड फ्राइडे की इवनिंग मैंने बहुत सारी प्लानिंग की, लेकिन हुआ ये कि सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मतलब इतनी बारिश हुई कि पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलना हुआ। सेम पंच, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट वैसे हुई नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलिए कल का दिन तो जैसा भी बीता बीत गया लेकिन आज के दिन को अपन खूबसूरत बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एवरीवन। आज की सुबह हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। जल्दी से मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा और सुनिए कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक। Mixing it.

0: हेलो जी, सत श्री अकाल।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम बाहर का बहुत ही औसम है, एकदम कूल वेदर है। दोस्तों, कभी रास्ते ना मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, कभी रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, कभी अनजान शहर अपनी सी कहानी कह जाता है, और कभी एक छोटी सी यात्रा जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। एग्जैक्टली राइट एवरीवन, होता ना ऐसा कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ हमें एक अपनापन सा फील होता है, लगता ही नहीं है किसी अनजान शहर में हम आए हैं, वो अपना अपना सा लगता है। दोस्तों, आज मैंने बात की है शहरों की, अनजान सिटी की, जहाँ पे हमें घूमने का शौक होता है, हमारा ड्रीम होता है कि हम उस सिटी में जाना चाहते हैं या फिर उस कंट्री में जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज 27 सितंबर को हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन की जो हमें घर से थोड़ा बाहर निकालकर दुनिया को नए नज़रिए से देखने का मौका देता है। जी हाँ दोस्तों, आज है विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे। घूमना सिर्फ नई जगह की तस्वीरें लेना नहीं है, घूमने का मतलब नए लोगों से मिलना, नई संस्कृति को समझना, नए स्वाद चखना और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद के साथ वक्त बिताना। और सच कहूँ ना, कभी पहाड़ों की ठंडी हवा, कभी समुद्र की लहरें, कभी किसी पुराने शहर की गलियां, ये सब हमारे अंदर की थकान को थोड़ा कम कर देती हैं। दोस्तों, सफर में सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, कई बार इंसान के अंदाज बदल जाते हैं। कुछ सफर तस्वीरों में नहीं मिलते, बस दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ, क्या आप सब तैयार हैं? दोस्तों, अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो आप कौन से सिटी में जाना चाहेंगे, कहाँ आप घूमना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले कहीं घूमने जाने का तो आप कहाँ पर जाना चाहेंगे? पहाड़ों पर, समुद्र किनारे, या कोई ऐसी ऐतिहासिक शहर, या कोई शांति वाली जगह? बताइए, अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ घूमना चाहेंगे? बताइए बताइए व्यूअर, अगर आज आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ घूमना चाहेंगे? हमें बताइएगा हमारे ऑफिशियल नंबर पर। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी अपनी खूबसूरत यहाँ पर संदेश पहुँचाइएगा आज की सुबह संडे मॉर्निंग मस्ती शो में। और बात करेंगे अभी मुरादाबाद शहर के बारे में कि अपने सिटी में क्या चल रहा है और आज का वेदर कैसा रहने वाला है, क्या आज भी बारिश होने वाली है, कैसा रहेगा आज का मौसम, सब आपको खुशी बताएगी। बस आप खुशी के साथ बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मैं लौट कर आ रही हूँ कुछ खूबसूरत गानों के इस पर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

बिल्कुल दोस्तों, यही तो प्यार है कि हम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और आप वहाँ से अपना आंसर पहुँचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6, मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। वक्त हुआ है 10:53, 10:53 राइट नाउ टाइमिंग हो गई है। और आपकी लाजवाब मैसेज जोए हुए हुए दिल को छू लेते हैं। दोस्तों आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है एंड इसी मौके पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, अगर आज आपको अपना बैग पैक करके कहीं भी घूमने निकलने का मौका मिले, कहीं घूमने निकलने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? कोई ऐसी सिटी, जगह या आपका फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ जाने का सपना आप लंबे समय से देख रहे हैं, बस हमें बताइए आपकी वो फेवरेट जगह कौन सी है और वहाँ जाने की सबसे खास वजह क्या है। आपकी जवाब का हमें इंतजार रहेगा क्योंकि हो सकता है आपकी बताई गई जो जगह है किसी और श्रोता की नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन जाए। बताइए बताइए एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत मैसेज आए हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मेरे नाम उस्मान है, मोहम्मद उस्मान जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहते हैं कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं। और ये कहते हैं वैसे तो मैम मैं ड्राइवर हूँ और रही घूमने की बात तो इंडिया में मैं लगभग ज्यादातर घूम ही चुका हूँ, बस अब मेघालय घूमने का मन है। ओ वाओ ब्यूटीफुल, आप जरूर जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर अभी आया है, खुशी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मुरादाबाद में बारिश पड़ रही है कल से और रुकी नहीं रही है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मुरादाबाद सील गुप्ता से सलीम अंसारी जी एंड कहते हैं खुशी जी हमें घूमने का मौका मिलेगा तो हम गोवा जाना चाहेंगे। अरे वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल प्लेस, गोवा भी अच्छा है एंड साथ में इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं यहाँ पर, इन्होंने नाम लिखे हैं अनाया सनाया। सलीम अंसारी जी ने अपना मैसेज पहुंचाया आज की सुबह, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप जरूर जाएंगे अपने फेवरेट प्लेस पर, हम यही दुआ करते हैं कि आप जल्दी से घूमने जाएं। वैसे एवरीवन आप भी मुझे बताइएगा अगर आज आपको कहीं घूमने का मौका मिले या आप घूमना चाहते हैं तो कौन सी वो सिटी है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं? आपका बहुत पुराना ड्रीम है कि यार मेरा सपना है मैं वहाँ घूमना चाहती हूँ या घूमना चाहता हूँ, बताइएगा। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप जाने का लंबे समय से सपना देख रहे हैं, अपने मैसेज हमें पहुंचाएगा। तब तक मैं आपको कुछ और खूबसूरत गीत यहाँ पर सुनवाती हूँ, आज की सुबह मैंने यहाँ पर चुने हैं, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी लौटकर आने वाली हूँ मैं, वापस जब आऊंगी इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार तो बताऊंगी कि आज अपने मुरादाबाद शहर का वेदर कैसा रहने वाला है, वो भी जानना बहुत जरूरी है ना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

अब आप खूबसूरत हैं तो इसमें देखिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और ये रियलिटी है, सच में आप बहुत प्यारे लिसनर हैं हमारे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि काला टीका लगा के रखा करो, नजर ना लग जाए आपको। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:07 और संडे मॉर्निंग है, 27 सितंबर की तारीख है, आज दिन संडे का है। और बात करते हैं अब मुरादाबाद शहर की कि मुरादाबाद शहर में कैसा वेदर रहने वाला है आज का। दोस्तों आज 27 सितंबर को मुरादाबाद में मौसम सुहावना और बारिश वाला रहने वाला है। शहर में बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। आज का तापमान करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और बारिश की संभावनाएं भी काफी ज्यादा हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर निकलिए, संभल कर निकलिए और मौसम का अपडेट जरूर देखते रहिए।

और दोस्तों एशियन गेम्स में भारत के लिए गर्व की खबर सामने आई है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में अपना कबड्डी का खिताब लगातार दूसरी बार बरकरार रखा। वाकई हमारी बेटियों ने एक बार फिर देश का नाम रोशन कर दिया है।

और दोस्तों आज इंटरनेशनल डॉटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक, तब तक आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनी फैमिली के साथ। अगर घर पर हैं तो टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि एवरी डे तो आप बिजी रहते हैं, लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है जब आप अपनी फैमिली को वक्त देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, एंड कुछ बातें उनकी सुनो, कुछ अपने दिल की भी कहो। और फिलहाल अभी गाना सुनो, मैं आती हूँ बस कुछ प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। और दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, टुडे इज डॉटर डे सेलिब्रेट। दोस्तों, आज 27 सितंबर को इस स्पेशल डे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल डॉटर डे।

दोस्तों, बेटियां सिर्फ घर की रौनक नहीं होती हैं, वो घर के सपनों की सबसे खूबसूरत उड़ान होती हैं। उन्हें सिर्फ प्यार नहीं, उनके हर ड्रीम को पूरा करने का कॉन्फिडेंस भी दीजिए। और आज का दिन सिर्फ अपनी बेटियों को विश करने का नहीं, बल्कि उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करने का भी दिन है। अगर आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, या खिलाड़ी बनना चाहती है, आर्टिस्ट बनना चाहती है, या फिर कुछ ऐसा करना चाहती है जो बिल्कुल उसका अपना सपना है, तो उसे रोकने से पहले एक बार उसका सपना समझिए। उसे कहिए, बेटा तुम अपना ड्रीम देखो, मेहनत तुम करना, सपोर्ट हम करेंगे। क्योंकि कई बार एक बेटी को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बस अपने परिवार का ट्रस्ट, सपोर्ट और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। और एक छोटी सी शायरी कि बेटी के सपनों को उड़ान दीजिए, बेटी के सपनों को उड़ान दीजिए, उनके हौसलों को आसमान दीजिए, वो जो बनना चाहती हैं बनने दीजिए, बस उसके हर कदम पर अपना साथ दीजिए। और पेरेंट्स से एक बात दिल से मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को सिर्फ ये मत बताइए कि दुनिया कैसी है, उन्हें इतना पढ़ाइए, इतना सिखाइए और इतना उनको इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो अपनी दुनिया खुद बना सकें, उनकी स्टडी को प्रायोरिटी दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके ड्रीम को सीरियसली लीजिए। और जब वो कुछ नया करने की कोशिश करे तो उन्हें ये मत कहिए लोग क्या कहेंगे, बल्कि कहिए तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जब परिवार बेटी के सपनों पर भरोसा करता है ना, तो बेटी सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बनाती, वो पूरे परिवार का नाम रोशन करने की ताकत रखती है। तो आज इस डॉटर डे पर हर बेटी के लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा मैसेज, अपने ड्रीम पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करती रहिए और अपनी पहचान खुद बनाइए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप कहीं मजा आएगा, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। लौट कर आऊँगी तो कुछ और स्पेशल बातें हैं जो आप तक शेयर करनी है। एंड बाकी आप भी अपने संदेश, अपने मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
2: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
1: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

दोस्तों अभी अमेजिंग ट्रैक आपने सुना कुमार सानू अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में एंड फ्रॉम द मूवी सूर्यवंशम और ये गाना बहुत ही प्यारा था ना। और दोस्तों हम कहते हैं ना कि साल कितने जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे अभी तो साल शुरू हुआ था और देखते ही देखते कई महीने निकल जाते हैं। देखिए 2026 का नवा महीना चल रहा है और ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो आज मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन है। आज की मॉर्निंग मैं आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं। जी हाँ एवरीवन, एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं आप मुझे बताइए। मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ, चलो आपके लिए और इजी कर देते हैं। ऑप्शन ए 48 सप्ताह, ऑप्शन बी 50 सप्ताह, ऑप्शन सी 52 सप्ताह 52 सप्ताह एंड ऑप्शन डी 54 सप्ताह। तो आप मुझे सही जवाब पहुंचाइएगा। मैंने आपसे आज की मॉर्निंग पूछा है कि वन ईयर में कितने वीक्स होते हैं, एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं, और ऑप्शन ए है 48 सप्ताह 48 वीक्स, ऑप्शन बी 50 वीक्स, ऑप्शन सी 52 वीक्स एंड ऑप्शन डी 54 वीक्स। अब आप अपना सही जवाब हमें पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइए दोस्तों साल में कितने सप्ताह होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं एंड ये मैसेज हमारे पास आया है, हाय दी कैसे हैं आप। अफरोज फातिमा जी का मैसेज आज की सुबह हमारे पास आया है और ये कहती हैं, अगर मुझे कहीं घूमने का मौका मिले ना तो मैं कश्मीर घूमना पसंद करूंगी, मेरी ख्वाहिश है कि कश्मीर जाने की। ओके, आपको कश्मीर जाना है, ब्यूटीफुल प्लेस है। और ये कहती हैं, आज की सुबह आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने लिखा है यहाँ पर, लव यू मैम, लव यू टू डियर। वैसे कश्मीर तो मैं भी नहीं गई हूँ एंड बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ की। जब वहाँ के बारे में सोचते हैं ना तो एक अलग ही मतलब एहसास होता है ना, बहुत ही खूबसूरत वहाँ का नज़ारा है। तो चलिए व्यूअर्स, आप अपने जवाब हमें पहुंचाएगा एंड तब तक मैं आप तक पहुंचाती हूँ एक अमेजिंग ट्रैक। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनवाते हैं आपको ये शानदार से गाना फ्रॉम द मूवी बता दें मूवी का नाम। चलिए आप वो गाना सुन लीजिए और आप खुद पहचान जाएंगे कि कौन सी फिल्म का ट्रैक है एंड बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये काम हम आप पर छोड़ते हैं, तब तक आप सुनिएगा ये अमेजिंग गाना और मैं लौट कर आती हूँ। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

आपने इतने प्यार से हमें बुलाया तो हम क्यों नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, शाज भट्ट की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। देखिए दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है तो मौसम का लुफ्त उठाइए, लेकिन जरूरी लेकिन दोस्तों सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश में भीग गए हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि तुरंत घर जाकर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कपड़े चेंज करें, शरीर को अच्छी तरह से सुखाएं और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिए। और बाहर का खाना पीना थोड़ा अवॉइड कीजिए, और अगर कपड़े या फिर जूते गीले हों तो उन्हें ज्यादा देर तक ना पहने। बारिश का मौसम ही दोस्तों एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल भी अच्छे से रखिएगा। और आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, आज का मेरा सवाल बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली हम कहते हैं ना कि यार दिन महीने साल कैसे कैसे एकदम जल्दी जल्दी गुजरते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। तो मेरा इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है, एंड आप मुझे बताइए दोस्तों एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं। ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, ऑप्शन ए 48 वीक्स, ऑप्शन बी 50 वीक्स, एंड ऑप्शन सी 52 वीक्स, ऑप्शन डी 54 वीक्स। तो अपना सही जवाब अपने नाम के साथ पहुँचाइएगा, हमें इंतजार है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

दोस्तों कुछ कहानियाँ ना सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती हैं, वो हमारे दिल में बस जाती हैं। और जब बात हो मोहब्बत, खूबसूरत रिश्तों की और सिनेमा के उस जादू की, तो एक नाम अपने आप जहन में आ जाता है, यश चोपड़ा जी। दोस्तों आज 27 सितंबर को हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस महान फिल्मकार को जिन्हें प्यार से कहा गया है रोमांस की बादशाह। यश चोपड़ा जी का जन्म 27 सितंबर 1932 को लाहौर में हुआ था। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले यश जी ने बाद में सिनेमा की दुनिया को ही अपना बना लिया और बतौर आर्टिस्ट डायरेक्टर अपने सफर की शुरुआत की। असिस्टेंट डायरेक्टर और अपने सफर की शुरुआत की 1959 में धूल का फूल से उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की और फिर वक्त, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर और वीर ज़ारा जैसी यादगार फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। और दोस्तों फिर वो दौर आया 1970 में, उन्होंने यशराज फिल्म की नींव रखी जो आगे चलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गया। और मोहब्बतें को पर्दे पर खूबसूरती से दिखाने की उनकी कला ऐसी थी कि स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में भी उनकी फिल्मों का हिस्सा बनकर भारतीय दर्शकों के दिलों में बस गई। आज उनके जन्मदिन पर हम आइए याद कर रहे हैं उस महान फिल्मकार को जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर प्यार को एक खूबसूरत एहसास बना दिया। यश चोपड़ा जी को दिल से नमन करते हैं।

0: और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत जवाब भी आप सभी के आ रहे हैं, तो सभी को हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे और देखते हैं आज के हमारे संडे मॉर्निंग शो के कौन बनते हैं लकी सुपर स्टार। उनसे अभी उनको ऑन ईयर हम विनर बनाएंगे। सबसे पहले किनका सही जवाब आया है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप।
1: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और सच में दीवानी तो मैं भी हूँ, बारिश में गर्मा गर्म आलू के पकौड़े और चाय की। जैसे मौसम मतलब बारिश वाला होता है ना, तो मेरे मन में ना सबसे पहले यही थॉट आता है कि गर्मा गर्म पकौड़े, और वो भी स्पेशली मम्मा के हाथ के बने हुए मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। एंड कल मैंने वही सोचा और मैंने मम्मा से रिक्वेस्ट की कि मम्मा देखो मौसम इतना प्यारा है तो क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं। तो फिर मम्मा ने बनाए और फिर हमने घर में सब मिलकर सबने साथ में खाया, बहुत इंजॉय किया। अगर आपका भी मन हो रहा है तो फिर इतना सोच क्यों रहे हैं, आप बनाइए गर्मा गर्म पकौड़े, खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। यार संडे का दिन है, इसको एंजॉय करो। और आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था एंड उसका सही जवाब हमें सबसे पहले पहुंचाते हैं। आज की जो हमारी शो की बनती है लकी विनर, उनका नाम हम अनाउंस करते हैं। एंड सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचा है यहाँ पर राघव अंकित जी ने फ्रॉम एकता कॉलोनी लाइन पार मुरादाबाद से, ऑप्शन सी 52 वीक्स। एंड इन्होंने सही जवाब पहुंचाया है ऑप्शन सी 52 वीक्स, वन डे इन नॉन लीप ईयर एंड 52 वीक्स एंड 2 डेज इन लीप ईयर। एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। तो आज आप हमारे शो के बनते राघव अंकित जी लकी विनर एंड आपके लिए जोरदार तालियां।

0: कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है आपको, आज आप हमारे शो के बनते हैं लकी विनर एंड आपके लिए एक अमेजिंग ट्रैक यहाँ पर खुशी प्ले करने वाली है और हमारे पास सही जवाब हमें और श्रोताओं ने भी पहुँचाए हैं, उनका भी नाम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, विकास जी का, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। 52 वीक्स होते हैं वन ईयर में। एंड नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं, खुशी जी आदाब, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, संडे में मॉर्निंग मस्ती शो आपको आपका सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हम, थैंक यू सो मच। बारिश भी बहुत घमासान हो रही है। एंड मैम एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, आवाज मोहम्मद रफी साहब जी की, और ये भी सही जवाब के साथ हमारी साथ आज की सुबह जुड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मैसेज पहुंचाते हैं, जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की सुबह आप सबने पार्टिसिपेट किया एंड सही जवाब के साथ आप हमारे साथ जुड़े। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और सेफ रहिए, बेवजह बाहर जाने से बचिए। अगर आपको बताएं कि वेदर अभी बारिश वाला है तो मैं कहूँगी आपसे कि अगर कोई काम ना है बाहर, कोई काम नहीं है तो मत जाइएगा, और अर्जेंटली अगर कोई काम है जाना पड़ रहा है तो सेफ्टी के साथ जाइए, ठीक है? और बाकी मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वेन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में ना सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी जी। देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सीतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सिहतिया जी, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात कर रहे हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे खुशी जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सिहतिया जी, अब हम सुन रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर और गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है सिहतिया जी?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो गुपचुप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है, अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा।
0: ठीक कहा आपने सिहतिया जी। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
1: किशोर अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसा काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसा बचा जाए, तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसे में कोई तरीका है जिससे मैं अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से ये फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मनाना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सिहतिया जी, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी पर आओ।
0: लेकिन सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
1: बिल्कुल खुशी जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है, यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
0: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा है क्या?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म,

0: साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। आरकेएस के सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि LHBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, ग्रे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह सभी किसी ना किसी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
1: साथ देंगे क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले लेते हैं हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों, सेहत सही
1: तो लाभ कई। सुनते रहिएगा अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेरे यानी RJ आनंद के साथ और आपका फेवरेट प्रोग्राम है जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। ये प्रोग्राम आप डेली सुनते हैं 12:30 बजे जहां पर हम ढेर सारी नए नए एक्सपर्ट से बातें करते हैं और आज का विषय बहुत खास है। और आपको बताएं, हमारे साथ बीच बीच में आते रहते हैं CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई कमाल के एक्सपर्ट जो आपकी आंखों के लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं। और आज का जो विषय है बहुत ही खास है क्योंकि आज है बहुत ही प्यारा दिन। आज 27 तारीख है और आज जो है हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड रेटिना डे सेलिब्रेट किया जाता है। और रिटिना के बारे में ढेर सारी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रोहन कपूर जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
4: थैंक यू आनंद, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ।
3: सर, हमारे लिसनर्स आपको ढेर सारे सुन रहे हैं तो सबसे पहले उनकी तरफ से आपका वार्म वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। और आज का जैसे कि विषय मैंने बताया अपने श्रोताओं को, वर्ल्ड रिटिना डे 27 सितंबर को ये हर साल मनाया जाता है। सर, रिटिना क्या है, इसका मकसद क्या है मनाने का?
4: रिटिना का मतलब होता है आंखों का पर्दा।
3: ओके,
4: आंखों का पर्दा को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे कैमरा होता है उसके पीछे फिल्म होती है, वैसे ही हमारे आंख या जो पर्दा है वो कैमरे की फिल्म क्या है।
3: ओके,
4: तो हमारे को जो भी हम देखते हैं वो उस पर्दे पे प्रोजेक्ट होता है और हमारा ब्रेन उसको पढ़ता है। पर्दा बहुत जरूरी चीज है अगर हमारे को साफ देखना है, और एक हेल्दी पर्दा इसलिए जरूरी है बिकॉज तभी हम साफ देख पाएंगे।
3: सो सर, आपने बिल्कुल सही बताया। और मुझे लगता है ना, हम ज्यादातर आम लोगों को ये पता होता है कि आंखों में सिर्फ छोटी छोटी प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन उसके पीछे भी जैसे अभी आपने बताया कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, है ना, उसे हम जिसे रेटिना कहते हैं। ओके, तो अगर आम भाषा में बोले तो रिटिना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, आम भाषा में अगर लोगों को समझाएं थोड़ा सा? और
4: आम भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जैसे कैमरे का फिल्म होता है वैसे ही आंखों का पर्दा होता है। रिटिना को हिंदी में हम आंखों का पर्दा कहते हैं। कैमरा की अगर फिल्म हेल्दी है तभी कैमरा फोटो खींच पाता है, वैसे ही अगर
3: क्लैरिटी भी आ पाती है,
4: यस, तभी वो क्लैरिटी भी आ पाती है। इसलिए अगर हम पर्दे को स्वस्थ रखेंगे तो हमारी विजन बहुत क्लियर रहेगी।
3: वेरी नाइस। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया है आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। और डॉक्टर साहब, इसी बीच मेरा अगला सवाल होगा कि रिटिना की बीमारी कितनी आम है, क्या रिटिना से जुड़ी समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती हैं या उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ जाता है?
4: रिटिना की बहुत सारी बीमारियां हैं और ये हर एज ग्रुप के पर्सन को इफेक्ट कर सकती है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का रीजन रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होती है जो प्रीटर्म बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हम थोड़ा मिडिल एज का पेशेंट देखें और उसको अगर शुगर या हाइपरटेंशन मतलब BP की बीमारी है तो शुगर और BP की बीमारियां भी आंखों का पर्दा खराब करती हैं। तो पर्दा बहुत मल्टीपल एज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में इन्वॉल्व हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये सब बीमारियां प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है, ठीक भी करी जा सकती है और रोकी भी जा सकती है।
3: जैसे किसी भी बीमारी के स्टार्टिंग में कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती संकेत जिसे लक्षण कहते हैं, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं सर?
4: ये थोड़ा बीमारी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब शुगर और बीपी की वजह से जो असर आता है, उसमें यूजुअली पेशेंट आके बोलेगा कि उसे धुंधला दिख रहा है या आंखों के आगे कुछ काले रंग के धब्बे से आए हुए हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि ये दोनों बीमारियां ही जब ये सिम्टम्स शो करें, मतलब ये बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं और हमारे को उसे पहले ही डिटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो प्रीटर्म बेबीज में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो आरओपी नाम की बीमारी है, उसके कोई लक्षण नहीं होते। बाहर से पेरेंट्स देख के नहीं पता लगा सकते कि बच्चे का पर्दा ठीक है या नहीं, वो एक चेकअप पे ही पता लगता है। तो हर पेशेंट को यूजुअली रूटीन चेकअप जरूर करवाना चाहिए।
3: ओके डॉक्टर साहब, इसी बीच में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, मतलब अगर अचानक किसी व्यक्ति की नजर कम होने लगे या उसे थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगे, उसे कितनी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में?
4: यूजुअली मैं बोलूंगा कि इसमें जल्द से जल्द आप जो भी नियर बाय फैसिलिटी अवेलेबल है उस पे पहुंचे, जिससे कि एटलीस्ट एक डायग्नोसिस बन पाए। धुंधलापन बहुत सारी बीमारियों में आता है, उसमें पर्दा भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, आगे काली पुतली भी हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा ग्रेव है, कितनी ज्यादा सीरियस है, वो पता तभी लगेगा हम जल्द से जल्द चेकअप कराएं। तो एज सून एज पॉसिबल नियर बाय फैसिलिटी पे जाया जाए और उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कराया जाए।
3: ओके डॉक्टर साहब, आज के समय में डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है, तो क्या इसका असर रेटिना पर पड़ता है?
4: डायबिटीज इस समय सबसे कॉमन बीमारी है,
3: बिल्कुल,
4: नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में,
3: पूरे वर्ल्ड में।
4: और डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो पर्दे पे असर डायबिटीज की वजह से आता है, वो उसकी भी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। शुगर की बीमारी इंसान के ब्रेन, किडनी और आंखें तीनों को खराब करती है, और इसीलिए हर शुगर से ग्रस्त पेशेंट को अपना पर्दे का चेकअप जरूर जल्द से जल्द कराना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्द शुरू हो जाता
3: है। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, के साथ बात कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाइए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद आनंद के साथ, और आज का विषय बहुत खास है और आज हम आपके साथ ढेर सारी बातें कर रहे हैं रेटिना पे। और हमारे बीच में डॉक्टर रोहन कपूर जी मौजूद है हमारे स्टूडियो में इस वक्त, सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब डिस्कस कर रहा था इन सब बातों पे, तो आपने ROP के बारे में बताया, तो बेसिकली ये क्या चीज है मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग में जानना है, क्योंकि मैंने भी कभी ये सुना नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को आप इस विषय में बताएं।
1: ROP इस बीमारी को कहते हैं रेटिनो ऑफ प्री मेच्योरिटी। अगर हम किसी को सिंपल भाषा में समझाएं तो बीमारी का मतलब है प्री मेच्योर बेबीज को रेटिनोपैथी होना, उनका पर्दा खराब होना। नेचुरली ये होता है कि किसी भी बच्चे का पर्दा 40 हफ्ते पे बनता है, लेकिन जो बच्चे प्री टर्म मतलब टाइम से पहले बर्थ हो जाती है उनका पर्दा पूरा बना नहीं होता। जब वो पर्दा पूरा बना नहीं होता तो वो पर्दा बीमार पड़ सकता है, और उस बीमारी को ROP कहते हैं। ये प्री टर्म बेबीज की रेटिना की बीमारी है।
0: ओके, आई होप लिसनर्स आपको समझ आ गया होगा कि ROP क्या है। अच्छा सर, क्या ROP के शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो कैसे, मतलब पेरेंट्स को पता लगे, उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं?
1: सबसे बड़ी प्रॉब्लम ROP की बीमारी के साथ ये है कि उसके सिम्टम्स आप बाहर से देख के पकड़ नहीं सकते। पेरेंट्स सिर्फ बच्चे की आंख देख के बाहर से ये नहीं बता सकते कि बच्चे को ROP है या नहीं, और इसीलिए ROP बीमारी को पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर प्रीटर्म बेबी की रेटिना की स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग ही ऐसा एक मेथड है जिससे ROP है या नहीं ये पता लगाया जा सकता।
0: ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर रोहन जी, अगर ROP के समय रहते ही पहचान हो जाए तो क्या इसका इलाज संभव है, और किस तरीके से किया जा सकता है ROP का?
1: ROP आता है अंडर प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, मतलब वो बीमारियां जो प्रिवेंट करी जा सकती हैं अगर टाइम पे डिटेक्ट हो जाए। तो डेफिनेटली अगर टाइम पे इसका डिटेक्शन हो, जो एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग के टाइम पे होता है, तो ये बीमारी से बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बट सबसे जरूरी है टाइम पे स्क्रीनिंग हो, और अगर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। ट्रीटमेंट इसका बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स में होता है, जिसमें इंजेक्शन, लेजर और सर्जरी, ये तीनों में से कुछ भी यूज करा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेज है बीमारी।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए मुझे, अगर ROP की समय पर जांच या इलाज ना हो पाए तो सिचुएशन में क्या खतरा मतलब हो सकता है?
1: अगर ROP ट्रीट नहीं करी गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है, और यूजुअली ये बीमारी दोनों आंखों में होती है। तो इसलिए अगर बच्चे को ROP की बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे नहीं हुआ, तो बच्चा दोनों आंखों से ब्लाइंड हो सकता है, और एक स्टेज के बाद वो बीमारी ट्रीट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इसको टाइम पे डिटेक्ट करना और ट्रीट करना जरूरी है।
0: ओके, तो ROP की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है?
1: ROP की स्क्रीनिंग सबसे जरूरी है उन बेबीज में जिनका वजन मतलब बर्थ वेट 2 किलो से कम हो, या वो बेबीज जिनका बर्थ 34 वीक से पहले हुआ। अगर कोई बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 kg से ज्यादा हो या 34 वीक्स से बाद पैदा हुआ हो, लेकिन उसको ICU में भर्ती रखना पड़ा हो, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिली हो, उसकी छाती में सिम्टम्स या इन्फेक्शन रहे हो, तो भी ROP की स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए।
0: ओके, ठीक है। सो लिसनर्स देखिए, बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, अगर आपका भी इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें एक मैसेज करेंगे। बहुत सिंपल, हमारा नंबर है 9837896896 पे आप हमें अपने क्वेश्चन अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम डेफिनेटली सर के साथ बैठ के उसे डिस्कस करेंगे। आप हमें अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं, और बाकी ही ऐसे ही अभी जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी आपको मिलेंगे वापस।

0: वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं आनंद के साथ। और आज का विषय बहुत खास है दोस्तों, आज वर्ल्ड रिटिना डे है। हर साल ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, और इसी पर आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम डॉक्टर रोहन कपूर जी से। हमारे साथ स्टूडियो में है सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से, और बीच बीच में तमाम सारे एक्सपर्ट आते हैं और आपकी आंखों के विषय में हम तमाम सारी बातें करते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ कॉमन बीमारीज हमें और आपको पता थी, लेकिन अब जब से सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हमारे साथ आ रहे हैं, तब से बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो मुझे पता लग रही है और मेरे साथ साथ पूरे मुरादाबाद को पता लग रही है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के, थैंक यू सो मच। आपके एक्सपर्ट सच में बहुत रोशनी फैला रहे हैं। एंड अभी आगे बढ़ेंगे डॉक्टर रोहन कपूर जी, अभी हम आरओपी पे बात कर रहे थे आपके साथ। तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को तो ये चीज पता नहीं लग पाती होगी, बट आप कैसे उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं?
1: कुछ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होती है जो हर पीडियाट्रिशियन और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट फॉलो करता है आरओपी बच्चों के लिए। वो स्क्रीनिंग गाइडलाइन जो है वो है कि कोई भी बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 किलो से कम हो या जिसका बर्थ 34 वीक से पहले हो गया हो, ऐसे सब बच्चों को पीडियाट्रिशियन यूजुअली सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट रेफर करते हैं हमारे पास आरओपी स्क्रीनिंग के लिए। अगर कोई बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 किलो से ज्यादा हो या उसका जेस्टेशन मतलब पैदा होने की एज 34 वीक से ज्यादा हो, लेकिन उसको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला हो, आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट चला हो, इन्फेक्शन हुए हो, उनको भी ये पीडियाट्रिशियन हमारे पे रेफर करते हैं फॉर आरओपी स्क्रीनिंग। जब हम आरओपी स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें हम बच्चे की आंख में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उनके पर्दे को देखा जाता है, देखने के लिए कि क्या उनका पर्दा पूरा बना है या नहीं, और अगर नहीं बना है तो क्या वो आरओपी की बीमारी

0: ग्रस्त है या नहीं, और अगर वो ग्रस्त होता है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये यूजुअली प्रोसीजर पेनलेस होता है, बच्चे को कोई पेन नहीं होता है, बट पूरे प्रोसीजर में 45 मिनट से एक घंटा लग सकता है।
1: ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में आरओपी के मुख्य कारण क्या होते हैं, जैसे मतलब अगर आप इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहें हमारे लिसनर्स को।
0: सबसे मेन कारण तो प्रीमेच्योरिटी ही है। प्रीमेच्योरिटी के साथ लो बर्थ वेट, जिसका बर्थ वेट कम है, वो एक मेजर कारण है। इसके अलावा जिन बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी ज्यादा मिलती है क्योंकि उनको जरूरत होती है, वो भी आरओपी को प्रमोट कर सकता है। ऑक्सीजन से ही जिंदगी है, ऑक्सीजन इसलिए दी जाती है जिससे कि बच्चे की लाइफ बनी रहे, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसमें से एक आरओपी है। इसके अलावा बहुत सारे शरीर के इन्फेक्शन, स्पेशली जो लंग को इन्वॉल्व करते हैं या जो इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों की, वो भी आरओपी को प्रमोट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का कम होना भी एक कारण देखा गया है, और इसलिए बच्चों का हीमोग्लोबिन 12 से यूजुअली ऊपर रखने का प्रमोशन किया जाता है। ये कुछ और रीजंस हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ।
1: ओके, सो डॉक्टर रोहन कपूर के साथ ढेर सारी बातचीत है और ये बातचीत जारी रहेगी। अभी हम मिलेंगे थोड़ी सी देर में, एक छोटा सा इसमें म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए बहुत जरूरी है, और बातचीत चल रही है बच्चों की, तो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चे वाला गाने मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पर छोटू सा गाना है, उसके बाद जल्दी से वापस आना है, तो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो, अभी लौट कर आते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। यहाँ पर आपकी काम की बातें होती हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ। और आज हमारे बीच में डॉक्टर रोहन कपूर जी स्टूडियो में मौजूद हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से। सर से आज हम आरओपी के बारे में ढेर सारी डिस्कशंस कर रहे थे। सर, इसी बीच में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने प्री मेच्योर बच्चों की बात करी, तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स वैसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इस केस में आप कैसे मतलब उनके पेरेंट्स को यू नो समझाते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं, क्या वो अलाउ कर देते हैं इस केस में? क्योंकि या फिर इतने सारे लोगों को देख के कहना कि पेरेंट्स पैनिक तो होते ही होंगे, डेफिनेटली उनमें हो जाती है भाई, पूछताछ भी करते होंगे, तो कैसे आप उनको मतलब यू नो ये करते हो पूरा मैनेज?
1: इसमें एक बहुत बड़ा रोल पीडियाट्रिशियन का है।
0: ओके।
1: हमारे मुरादाबाद के पीडियाट्रिशियंस और आसपास के एरिया के पीडियाट्रिशियंस बहुत वेल अवेयर है आरोपी के बारे में।
0: ऑलराइट।
1: तो बहुत बार वो ही पेरेंट्स को बता देते हैं कि आरोपी की स्क्रीनिंग जरूरी है और जरूर जाके करवाइए। जब पीडियाट्रिशियन बोलता है तो पेरेंट को समझ में आता है कि हाँ ये जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि फ्रेश वॉक इन, मतलब पेशेंट्स को कहीं आसपास से पता लगा कि ये बीमारी होती है और उनका बच्चा प्रीटर्म होता है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं बोलने कि ये बच्चा प्रीटर्म हुआ है, हमारे को पता लगा इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर जब उनको बताते हैं कि ये बीमारी क्या है, प्रिवेंटेबल है, नहीं ट्रीट करी तो इसमें ब्लाइंडनेस है, तो वो बच्चे की स्क्रीनिंग टाइम पे कराते हैं और अगर जरूरी होता है तो ट्रीटमेंट भी टाइम पे कराते हैं।
0: ओके, तो मतलब आपकी टीम वहां जाती है या फिर बच्चे को आप अपने हॉस्पिटल बुलाते हैं?
1: हमने एक बहुत वेल डेडिकेटेड टीम बना रखी है।
0: ओके।
1: जो हमारी आरओपी एक्सपर्ट टीम है। इस समय हम मुरादाबाद और उसके आसपास के 6 और डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बहजोई, संभल, ये सारे इन्वॉल्व है। ये हमारी एक टीम जो है एक स्पेशल फंडस कैमरा, एक रेटिना का इमेज लेने का डिवाइस होता है, वो कैरी करती है। और हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है बहुत सारे आईसीयू के साथ, बच्चों के आईसीयू के साथ, पीडियाट्रिशियंस के साथ। उन सब पीडियाट्रिशियंस के सेंटर पे हम जाते हैं, वहां पे हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किन बच्चों को आरओपी है, और अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनमें आरओपी होता है तो हम उनको अपने सेंटर बुलाते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। ऐसे भी केसेस जहां पे वो बच्चे बहुत सिक होते हैं, एडमिटेड होते हैं और वो रेफर नहीं हो पाते हैं, तो हम एक्चुअली में जाके भी उन आईसीयू में इन बच्चों को ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। इस टाइम पे हमारा एक्सपेंशन का प्लान है और हम चाहेंगे कि आसपास के और एरियाज हम कवर करें, जिससे कि हम इस आसपास के एरिया को और अपने शहर को आरओपी से एटलीस्ट रिलीफ दे पाए।
0: ओके, बहुत बढ़िया। सर, जैसे हर साल 27 सितंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वर्ल्ड रूटीना डे, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करने का दिन है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का दिवस है ये। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी, तो दोस्तों बहुत सारी बातें आज हमने करी है डॉक्टर रोहन कपूर से। और सर, आपका जो ये मिशन है, इसे देखने के बाद, सुनने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो बढ़िया और ग्रेटफुल आप कर रहे हैं। एंड चलते चलते तमाम मुरादाबादीज आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं आई नो इस टाइम पे, बहुत सारे लिसनर्स हमारे सुन ही रहे हैं, तो आप क्या एक मैसेज कन्वे करोगे पूरे मुरादाबाद के नाम हमारे स्टूडियो से लाइव?
1: आई थिंक हम इस मिशन को नाम दे चुके हैं 30 दिन रोशनी के।
0: अरे वाह,
1: जैसे कि ये पता लगे सबको कि हर बच्चे की स्क्रीनिंग उसके बर्थ के विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए, स्पेशली जो बच्चा प्रीटर्म है और लो बर्थ वेट वाला है। ये स्क्रीनिंग के लिए हमारी टीम बहुत मेथड, बहुत ही मेहनत से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है और स्क्रीन कर रही है, और जहां भी हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसे आरओपी होता है, उसे हम अपने सेंटर पे ट्रीट कर रहे हैं। हमारे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में इस टाइम पे आरओपी के ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो हम यूज करके इस शहर को आरओपी से रिलीफ देना चाहते हैं। तो मैं बस ये बताना चाहूंगा सबको कि वो याद रखें कि बच्चों की रोशनी को हम बचा सकते हैं और हमें वो काम बच्चे के पैदा होने के विद इन 30 डेज शुरू कर देना चाहिए।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने दिया सर, और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी। हाँ जी, तो डॉक्टर रोहन कपूर जी हमारे स्टूडियो में हैं और जितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने जानकारियां दी उतने खूबसूरत वो भी हैं। ऋतिक रोशन के कजन नजर आ रहे हैं मुझे, मैं इनको देख पा रहा हूँ। सर, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए हमारे मुरादाबादी को, ये कोई बर्शिंग नहीं है, एक्चुअली जो मुझे फील हुआ मैंने आपको बता दिया। लाइटों से भी सुंदर आपकी स्किन है, क्या है आपकी खूबसूरती का राज, पहले यही बता दो आप।
1: मैं मुरादाबाद का ही लड़का हूँ।
0: अरे वाह, सच
1: में।
0: वैसे मैं सबसे पूछ लेता हूँ ये आप कहाँ से हो, लेकिन आज आपसे नहीं पूछा, पता नहीं क्यों फीलिंग ही नहीं आई अंदर से, शायद आप लोकलिटी से ही हो।
1: हाँ, मैं लोकल आईटी हूँ। मैं मुरादाबाद का ही जन्मा हूँ 1994 में।
0: ऑलराइट।
1: यही का मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्कूलिंग के बाद जो है लुधियाना चला गया था। मैंने कृष्ण मेडिकल कॉलेज लुधियाना से MBBS करा, वहीं से मैंने उसके बाद MS करा, मास्टर्स करा। 10 ईयर्स लुधियाना में रहा मैं MBBS और MS करने के लिए। उसके बाद मैं LV प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद गया, वहां मैंने 3 साल काम करा, फेलोशिप करी, जिसमें मैंने रेटिना सर्जरीज में एक्सपर्टीज ली. और उसके बाद अब मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट वापस आया हूँ, अपने शहर वापस आया हूँ इस शहर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. जो मैंने सीखा, जो हमने गेन करा, अब वो टाइम है कि हम उससे लोगों का भला करें.
0: दैट्स वेरी ग्रेट. करंटली तो जहाँ वर्किंग है वहाँ के बारे में बताइए थोड़ा सा आप.
1: मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में वर्क करता हूँ. हमारे पास यहाँ पे रेटिना डिपार्टमेंट है जिसमें हम 3 डॉक्टर्स हैं. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है सीएल गुप्ता में, जिसमें से एक मेजर डिपार्टमेंट रेटिना डिपार्टमेंट है. और इस समय पर्दे से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. हम चाहेंगे कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो आंखों से संबंधित, और अगर उसमें वो पर्दे से संबंधित है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और हम We'll be very happy to provide them with very good services.
0: That's very nice. Thank you so much. Lovely talking to you, sir. Thank you so much for coming. बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी. और लिसनर्स आप सिर्फ ये सुन नहीं सकते हैं, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं. मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन है वो आप देख सकते हैं सीएल गुप्ता का इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब चैनल है उनकी लिंक मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे शेयर करता हूँ और अपने इंस्टाग्राम पे भी. तो फटाफट हमें फॉलो कीजिए और वहां जाके सारे वीडियोज और जो भी कॉन्वर्सेशन वो आप देख सकते हो. जैसे कि मैंने कहा शायद वो ऋतिक रोशन के कजन तो नहीं है, वो आप देख सकते हो वीडियो में आके. सो प्लीज जल्दी से फॉलो कीजिए एफएम मुरादाबाद की. इंस्टा हैंडल है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से. और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ. फटाफट जाओ फॉलो करो और अभी के लिए ऐसे ही सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. डॉक्टर रोहन जी, जाते जाते आप एक गाना तो बता दो अपनी पसंद का जो आप मुरादाबाद को डेडिकेट करना चाहते हो. इतनी सारी कॉन्वर्सेशन होगी, एक गाना आपका पसंद का. फाइनली बातों बातों में जो है अब हमें जाने का हमारा समय हो गया और डॉक्टर रोहन जी ने अपनी पसंद का गाना भी ढूंढ लिया है. वो उन्होंने मुझे बता दिया है चुपके से मेरे कान में कि भाई नहीं, मैं उनकी आवाज में. जी सर प्लीज बता दें आप.
1: इतनी बार ऋतिक रोशन का नाम आ गया है तो
0: ऋतिक रोशन ने पैसे नहीं दिए थे बट फिर भी मैंने कर दिया. कोई बात नहीं, आप प्लीज बताएं गाना.
1: फिर तो ऋतिक रोशन का गाना ही बनता है. एंड आई थिंक लकी अली का गाना है एक पल का जीना.
0: ये बिल्कुल उन्हीं का गाना है और एक पल का जीना. और गाने में एक मीनिंग भी है, थॉट भी, और गाना भी बहुत अच्छा है. और बहुत अच्छा लगा आपने बहुत अच्छा गाना छोड़ के हम जा रहे हैं अपने लिसनर्स के लिए. सब डांस करेंगे इस गाने पे. वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत अच्छा लगा. एफएम मुरादाबाद आपको थैंक यू करता है. लवली मीटिंग यू सर. थैंक यू गाइस. आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं लकी अली का गाना. आप कहीं मत जाना, रेडियो की बिल्कुल मत घुमाना. बाय.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: तो आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए, अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची में तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
1: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था, वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी, आपको क्या लगता है?
2: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना?
1: बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नहीं कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए, एकदम क्विकली। उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए, ये ब्रिंकेट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, इवन यंगस्टर्स में भी। और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस, जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है, जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे तो उससे खेलते थे और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
1: आजकल तो आपको पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको।
0: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उस पे कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
1: चीजें हमें कितनी अच्छी लगती थी।
0: और हम बच्चे खुद का मतलब अब क्या है, इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो। और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
2: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप राजी क्या कहना चाहते हो,
0: तुम बताओ पहले तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी। मैं तो सच बताऊं मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर भी जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली हैप्पी दिवाली मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
2: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
0: हाँ, और जो साइकिल के जो टायर होती थी ना उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी।
2: हाँ, वो
0: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
2: चलाया प्राची ऐसा वाला,
0: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
2: नहीं बढ़ती है, प्रॉब्लम्स कितनी है। हाँ, छोटे बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं।
0: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेके जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं। अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी आप यू नो आप ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
2: जुड़े नेचर से जुड़े। दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें। उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा, तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपने प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती, बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

हाँ जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाली एक साथ बैठकर खाना खाते थे, कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे

0: बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा, और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है ताकि उनको भी पता रहे, अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है, जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है कोई आवाज नहीं लगा रहा, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: हाँ, तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है बातचीत करता है तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले आप उनको फोन मत दे दीजिए, एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं। इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए, क्योंकि पहले के बच्चे भी तो हम सबने भी तो पढ़े हैं, यानी कि हम सच बताऊं मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े है बिना फोन के बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जिस जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो इसीलिए श्रोताओं बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों फूलों तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियो कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे रीना, और आज फिर से कि वुमेन राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर वुमेन को पता होना बहुत जरूरी है। महिलाएं सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालती, बल्कि समाज और देश के निर्माण में भी उनकी उतनी ही बड़ी भूमिका है। लेकिन अपने अधिकारों की जानकारी होना उतनी ही जरूरी है जितना आपने सपना देखा हो। कानून महिलाओं को कई ऐसे अधिकार देता है जो उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का हक दिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे हक क्या महिलाओं को पता है उनके राइट्स के बारे में? तो इन्हीं राइट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ कनेक्ट हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा सर। तो हम इनसे ही विमेन राइट्स के बारे में जान लेते हैं, महिलाओं के अधिकार, कौन से अधिकार हर महिला को जरूर पता होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानून की मदद कैसे ले सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी। वैसे आप काफी टाइम के बाद फिर से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जरा।
3: देखिए, मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके स्टूडियो में आने का, और जो आपका शो है लीगल टॉक, ये अच्छी अच्छी आप जो है लीगल जो है जानकारी हमारे ऑडियंस को, जो कम्युनिटी हमारे लिसनर्स हैं रेडियो के, उनको आप देते हो। लेकिन पिछले 2 वीक से मैं नहीं आ पा रहा था, कुछ थोड़ा सा कहीं मेरे को कुछ प्रायोरिटी के कुछ काम थे, तो उसके लिए मैं पहले तो अपने लिसनर्स से उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। और जो है आज मैं आपके समक्ष दोबारा से आया हूँ, और मैं एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली आजकल जो हम देखते हैं लेडीज के साथ अक्सर बहुत क्राइम बढ़ गया है, और महिलाओं को जानकारी भी नहीं होती कि हमें किस तरीके से जो है अपने जो है हितों का ध्यान रखना है या लीगल जो उनके राइट्स हैं उसके बारे में। तो आज हम वुमेन्स राइट्स के ऊपर एक टॉपिक हमारा है, उसको लेंगे चाहेंगे कि रीना हमसे उस विषय में बात करें।
2: जी बिल्कुल सर, मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ कि सर जब भी मौका मिले तो आए, और सर को जैसे ही मौका मिलता है वो आ जाते हैं हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, आप सभी के साथ बातें करने के लिए। क्योंकि देखिए, अक्सर हमें अच्छी अगर गाइडेंस का पता होगा, किस चीज के बारे में पता होगा, तभी हम डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, महिलाओं के लिए सबसे जरूरी कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं?
3: देखिए, महिलाओं के लिए जो ज्यादातर आपने सुना ही होगा कि आजकल जो घटनाएं होती है उनके साथ में घर में मारपीट है, या शादी के बाद जो है डॉरी से रिलेटेड है, या जो है उनको संपत्ति में हिस्सा है, भरण पोषण है, मेंटेनेंस है। तो बेसिकली महिलाओं को घरेलू हिंसा में से सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण, स्त्री धन संपत्ति भरण पोषण, कार्यस्थल पर जहाँ पे आप वो वर्क कर रही है वहाँ पे हैरेसमेंट की बहुत घटनाएं सुनने में आती है, और साइबर अपराधों से संबंधित जो भी उनके राइट्स हैं उनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए।
2: साथ ही साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा क्या है?
3: देखिए, जब एक महिला घर में रहती है तो उसके साथ कभी ऐसा होता है कि घर में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मारपीट होती है, तो केवल घरेलू हिंसा जो होती है केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अगर उसके साथ जो है कोई जो है मौखिक या उसको इमोशनल भी किसी तरीके का, या कोई फाइनेंशियल उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या कोई फिजिकल भी कोई उसको जो है

0: वो क्रम में रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि कौन सी घटना किस दिन हुई। फिर अगर उसको एविडेंस कुछ मिल जाता है उसको एविडेंस को सुरक्षित रखे वो, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार जो ऐसे पुलिस है या प्रोटेक्शन ऑफिसर है या महिला हेल्पलाइन है या न्यायालय से वो हेल्प मांग सकती है। अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है या महिला को लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है तो तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुला सकती है।
1: और सर जिसके पास फोन ना हो उसे घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए तो फिर कैसे कर सकते?
0: भाई देखिए, आपको अपने जो अड़ोसी पड़ोसी है उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप जो है पुलिस को सूचित करवाइए, तभी आपको हेल्प मिल पाएगी।
1: और कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर, घर में ही धमकी दे दिया जाता है।
0: देखिए आजकल ये जो घटनाएं ये बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, है ना, घर में परिवार में जो आपसी मनमुटाव की वजह से महिलाओं के साथ जो एक शोषण की वारदात जो हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे महिला को भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। या ऐसा कोई उसको अपना कोई नंबर उसको ऐसा एक नोट करके रखना चाहिए, जैसे अपना कोई घर का नंबर है या किसी फ्रेंड का नंबर है, पुलिस के नंबर पे आप तुरंत 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई कानूनी मदद मांगते हैं तो हमारे जो जुडिशरी में जो महिला को वुमेन्स राइट्स जो उसको प्राप्त हैं तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस तुरंत उस केसेस में हेल्प करती है।
1: आर्थिक पर ताड़ना क्या होता है सर?
0: देखिए आर्थिक का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, जैसे कोई फाइनेंशियल अगर कोई आपको किसी तरीके से, उदाहरण के लिए अगर महिला की आय या उससे अधिक आर्थिक संसाधनों पे कोई अनुचित उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है या उसको जरूरी खर्चा कोई, जैसे भाई हस्बैंड की शादी होती है तो उसका दायित्व बनता है कि वो घर पे जो अपनी पत्नी का बच्चों का पालन पोषण करे, अगर उसको वो खर्चा नहीं दे रहा है या उसको रहने में खाने को पहनने को कपड़े नहीं दे रहा है तो ये भी एक तरीके से आर्थिक रूप से जो एक निर्भर है उसके ऊपर महिला जो है अपने हस्बैंड के अपने पति के ऊपर, तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना का शोषण के रूप में ऐसे माना जा सकता है, तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना होती है, तो इसे आर्थिक एब्यूज भी कह सकते हैं हम लोग।
1: सर जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दहेज की मांग होने पर महिला क्या करे, क्योंकि ऐसा बहुत से घरों में देखा भी जाता है अभी भी।
0: देखिए दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, और अगर दहेज की कोई मांग करी जा रही है, प्रताड़ना करी जा रही है दहेज से रिलेटेड, तो आप पहले तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, परिस्थितियों के अनुसार पुलिस में शिकायत करिए या उपलब्ध जो भी आपके पास कानूनी जो आपके पास राइट्स हैं उसको आप जो है फॉलो करिए। और जो है सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलूंगा कि दहेज ना ले ना दे, क्योंकि दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमारे समाज को दहेज मुक्त समाज बनाना है, आप बिल्कुल एक आदर्श विवाह करिए जिसमें जो है दहेज का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, बस यही मैं समझाना चाहूंगा।
1: क्या अभी भी है ऐसा सर कि जहाँ पे दहेज ना दिया जाता हो?
0: देखिए अभी भी प्रचलन है, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली केसेस आते हैं दहेज का आरोप तो देखिए लगता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हो जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, इस वजह से भी मोस्टली केसेस आते हैं कि लोग दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे लीगल राइट्स एक महिला को भी मिले हुए हैं तो उसमें एक छोटी छोटी बात का जो एक कहते हैं कि बतंगड़ बन जाता है, छोटी छोटी जो बातों का बड़ा रूप हो जाता है, और उसमें क्या होता है कानून जैसे महिला को अधिकार मिले हुए तो महिला उस अधिकारों के तहत वो अपने पति और परिवार वालों पे दहेज का केस दर्ज करा देती है। लेकिन अगर हम कई केसेस जैसे हमारे पास आते हैं, अगर हम उसमें काउंसलिंग भी करते हैं, पहले हम कोशिश यही करते हैं कि घर बस जाए, क्योंकि देखिए घर जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, टूटने को दो मिनट में आप तोड़ सकते हो। मेरे पास भी कई केसेस ऐसे आते हैं, तो हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं दोनों पक्षों की, हस्बैंड की भी करते हैं और वाइफ की भी उसकी करते हैं, लड़की पक्ष की भी करते हैं, तो उसमें जो मुद्दे असल में निकल के आते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे मोबाइल की वजह से लोगों में झगड़े आजकल बढ़ गए हैं, फिर जो है सबसे बड़ी चीज है दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, ठीक है, फिर कहीं जगह हमें आर्थिक तंगी को लेके भी मुद्दे मिले हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन असल वजह कुछ और होती है, और उसको क्योंकि लीगल राइट मिला हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि जो लड़की होती है या महिला पक्ष होता है वो जो है दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाना शुरू कर देता है। तो मैं यही बोलूंगा कि कानून अगर आपको दिया गया है, आपके हित के लिए दिया गया है, हितों की रक्षा के लिए दिया गया है, उस कानून को आप कवच बना के उस का मिसयूज ना करें एटलीस्ट कम से कम।
1: बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है।
0: बहुत मिसयूज हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दहेज कानून बना हुआ है इसको एक लीगल टेररिज्म की भी संज्ञा दे दी है। मतलब एक वर्ड लीगल टेररिज्म तक यूज करा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप सोच सकते हैं कि घर टूटने का कारण कुछ और होता है और उसको आजकल मुकदमों की इतनी बाढ़ आई पड़ी है। असल वजह जो कुछ और

0: है, लेकिन वो उसको एक, क्योंकि कानूनों का ऐसा मिसयूज भी कई बार हमें देखने को मिला है, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई भी बात है, अगर आपका रिश्ता बच सकता है तो आप कम से कम उसको काउंसलिंग के थ्रू या थोड़ा अपने परिवार जनों के थ्रू बैठ के उसको मैटर को रिजोल्व करिए। जो आपको कानून दिए गए हैं वो वास्तव में पीड़ित लोगों के लिए दिए गए हैं, लेकिन देखने में ऐसा आता कि कुछ लोग सिर्फ इस चीज को मिसयूज करके एक सामने वाले पक्ष पे दबाव बनाने का काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
1: क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर चीज पक्ष लड़कियों की तरफ है, महिलाओं के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि जो पक्ष है उनकी तरफ, तो उसमें जो लड़के हैं तो उनकी भी मुझे लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए सर।
0: बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, कई बार हमने देखा है कि अगर आपको कानून दिए हैं एक पीड़ित के लिए दिए, जब कानून बने थे तो उस टाइम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, सब चीजें थी, लेकिन आज की डेट में महिला बहुत स्वावलंबी हो गई है, सेल्फ डिपेंड हो गई है,
1: ठीक है।
0: लेकिन अगर आपको कानून एक दिए गए तो कानून वास्तव में पीड़ित के लिए दिया गया, आप उसको कम से कम उस जो आपको राइट दिया गया उसका मिसयूज ना करें, मैं यही बोलूंगा। और जो है पुरुष के लिए, तो देखिए कानून हमारे जो है ना मेंटेनेंस वगैरह का पुरुष के लिए भी अब थोड़ा सा जुडिशरी में हो गया कि अगर महिला कमा रही है और पुरुष अगर असक्षम है, हैंडीकैप्ड है, नहीं कमा पा रहा, तो वो भी अपनी वाइफ से क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस।
1: ओके,
0: तो फिलहाल ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि देखिए असल वजह कुछ और होती है, और लीगल जो टर्म्स में अगर हम जो कानून बने हुए हैं अगर उसको हम देखेंगे तो आजकल लोग बहुत मिसयूज करने लग गए हैं।
1: करेक्ट, ये तो है सर।
0: तो कई बार जो है परिवार टूटने का कारण ये भी होता है, हो सकता है आपका परिवार बच जाए, लेकिन आप सबसे पहले असल चीज, जो असल वजह है, उसको आप जानिए। हाँ, आपको अगर कानून दिए गए हैं, आपको सरकार ने या जुडिशरी ने आपके लिए कोई कानून दिए हैं, तो आप उसका एटलीस्ट मिसयूज ना करें, और अगर वास्तव में आप पीड़ित हैं तो आपको जरूर कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, स्त्री धन क्या होता है?
0: देखिए, जब एक लड़की शादी होके परिवार में, दूसरे परिवार में जाती है, तो उसको जो उपहार उसकी माँ की तरफ से, उसके मायके वालों की तरफ से, या जो उसको ससुराल की तरफ से जो भी उसे गिफ्ट, ज्वेलरी जो भी दी जाती है, उसको हम स्त्री धन बोलते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। तो महिला की शादी से पहले, शादी के बाद में मिले जितने भी उपहार हैं, आभूषण है, संपत्ति है, उन सबको हम स्त्री धन बोलते हैं, और उसका स्वामित्व जो है, महिला को अधिकार उसको मिल जाता है, ये उसी का होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये राइट है उसका, अगर उसको गिफ्ट दिए गए हैं उसके परिवार की तरफ से या ससुराल की तरफ से, तो वो उसका राइट है, वो उसका है, वो स्त्री धन बोलते हैं।
1: मतलब वो बोल सकती कि मेरा है।
0: हाँ, मेरा है नहीं, है ही उसका, ये अधिकार है।
1: ओके सर, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा, स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं उसने?
0: देखिए, अगर स्त्री धन वापस नहीं किया जा
1: रहा
0: देखिए अगर स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो पहले आप गहनों और सामान की सूची, बिल, फोटो, बैंक रिकॉर्ड और अन्य एविडेंस जितने भी है सुरक्षित रखें, वो सारा रिकॉर्ड लेके आप एक कानूनी नोटिस दीजिए, या पुलिस में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या न्यायालय के माध्यम से आप जो है मुकदमा भी पंजीकृत करा।
1: सर आपने पुलिस की ही नाम ली है, तो मेरा अगला क्वेश्चन भी यही है, पुलिस फायर दर्ज ना करे तो क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको पुलिस के उच्च अधिकारी है, सबसे पहले आपको चौकी को सूचित करना चाहिए, चौकी इंचार्ज अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप एसएचओ को, थाने को संपर्क करें, थाने अगर थाना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई नहीं करता तो आप उससे नेक्स्ट सीओ जो सर्किल ऑफिसर है उस जोन का, वो आप संपर्क करें, अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप एसपी सिटी या एसएसपी के माध्यम से भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या महिला अकेले पुलिस स्टेशन जा सकती है?
0: जी बिल्कुल जा सकती है, महिला स्वयं शिकायत दे सकती है, जरूरत पड़ने पे वह परिवार के किसी सदस्य, अधिवक्ता या सहायता संगठन की भी मदद ले सकती है, ये उसका अधिकार है।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है?
0: जी बिल्कुल मांग सकती है, कानून में निर्धारित परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है, जो भी अमाउंट है और जो भी उसका राइट है, मामलों के तथ्यों को, दोनों पक्षों को की आर्थिक स्थिति को सुनने के बाद, उसको देखने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय जो ऑर्डर देगा, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा।
1: सर हमारा अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस तय करते समय क्या देखा जा सकता है?
0: देखिए मेंटेनेंस तय करते समय दोनों की जो है जीवन स्तर देखा जाता है, उनकी दोनों की इनकम देखी जाती है, उनकी परिस्थितियां देखी जाती है, और एक जजमेंट 2020 में या 21 में शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन दी थी, रजनीश वर्सेस नेहा, एक गाइडलाइंस, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि दोनों पक्षों की इनकम देखी जाएगी, उसके आधार पे दोनों पक्षों को अपना बैंक का 3 साल का ITR, ठीक है, उनके बैंक स्टेट

0: इन्वेस्टमेंट्स, उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब देनी होगी। उसको दोनों पक्षों को देखने के बाद, दोनों पक्षों की इनकम प्रूफ देखने के बाद ही कोर्ट संज्ञान लेके उसका डिसाइड करेगा कि कितनी मेंटेनेंस देनी है या नहीं देनी है। वो दोनों पक्षों की इनकम देख के ही होता है, क्योंकि अधिकतर हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं, जैसे हम अगर हम मेंटेनेंस का केस देखते हैं कि हस्बैंड की आमदनी तो कम है और जो है पत्नी क्लेम कर रही है जो है लाखों में
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया पिटीशन में, आपने कुछ भी मांग लिया, वो कोर्ट से मिल जाएगा आपको। कोर्ट दोनों पक्षों का एविडेंस देख के, उसका आधार देख के, उसका जो क्या बेस है उसका, उसका इनकम प्रूफ देख के ही आगे डिसीजन लेती है। कई बार हमने ये भी देखा है, ऐसे भी केसेस आते हैं कि पत्नी की बहुत अच्छी जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है
1: जी जी जी,
0: ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में आके बिल्कुल जो है क्लीन हैंड दिखा देगी अपने आप को और मेंटेनेंस मांगती है। तो ये गलत है, ये कोर्ट का कानून का खोल उड़ाने वाली बात होती है। अगर कोर्ट के संज्ञान में आ गया तो कोर्ट आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती है, इसलिए आपको कोई भी झूठा एफिडेविट कोर्ट में फाइल नहीं करना चाहिए। आपकी जो इनकम है आपको वही शो करनी चाहिए, और अगर आप इस तरीके से कोर्ट में अनक्लीन हैंड दिखा के अपने आप को जो है प्रेजेंट करेंगे तो ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, मैंने महिलाओं के केस में देखा है, अगर उनका कोई आपसी पारिवारिक विवाद हो जाता है हस्बैंड से तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अधिवक्ता के माध्यम से जो है वो कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि भाई हमारे इतने खर्चे हैं, ये हमें दिलाए जाए, वो दिलाए जाए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बिना चीजों को संज्ञान लिए या बिना चीजों को देखे ऐसे ही डिक्लेयर कर देता है, तो उस चीजों से भी बचना चाहिए। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी जुडिशरी जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और खास तौर पर न्यायालय में ये जो मैट्रिमोनियल केसेस है, पारिवारिक विवाद है, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको जो हमारा न्यायालय भी है वो बहुत गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे लोग क्या करते हैं, वो केसेस एफआईआर लिखा देते हैं, दहेज की लिखा दी, मेंटेनेंस की लिखा दी। फिर लड़के वाले पक्ष की तरफ से भी कई बार क्रॉस एफआईआर भी हमने देखने को मिली है। तो न्यायालयों पे एक बहुत ज्यादा केसेस का भार है, तो निश्चित तौर पे अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि हर केस को मॉनिटर करके, और स्पेशली जो है मैट्रिमोनियल केसेस को बहुत कमतर से जांच हो रही है उसमें।
1: सर अभी आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी है, जिस महिला की गवर्नमेंट जॉब होती है, तो मेरा इसी पे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए उस महिला का पति ही पढ़ा रहा है उसको, फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो बहुत से आपने केसेस देखे भी होंगे और आते भी है,
0: सोशल मीडिया पे भी आया था काफी,
1: कि तलाक दे देती है फिर बाद में, तो इसके लिए भी कार्रवाई की जाती है?
0: देखिए तलाक तो देखिए दोनों पक्षों का आपस का एक म्यूचुअल रिकंसाइल का मैटर है। अगर उनको लगता है कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो आप म्यूचुअली भी अलग हो सकते हो। कोर्ट अगर आपके साथ क्रुएल्टी हुई है तो आप कोर्ट में सिद्ध करो, प्रूफ करो कि भाई मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो है वही गवर्नमेंट जॉब है महिला की और हस्बैंड ने उसको पढ़ाया है और गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो देखिए कोर्ट को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि आपने जो है गवर्नमेंट जॉब उसकी लग गई और आप किसने पढ़ाया और क्या। कोर्ट बेसिकली जो आपने प्रेयर करी है
1: जी,
0: जो आपने रिक्वेस्ट करी है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष, उस प्रेयर के अकॉर्डिंग वो कोर्ट, उसका डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है कि वो देखती है कि सपोज करिए किसी लेडी ने अपने पति से 2 लाख रुपए की मेंटेनेंस मांगी भरण पोषण के लिए, खर्चे के लिए, अब वो खुद ही 2 लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रही है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो ऐसे नहीं मिलता है।
1: अच्छा नहीं मिलता,
0: ऐसे नहीं मिलता है। वो कोर्ट प्रॉपर उसको एविडेंस देखेगी, ठीक है, फिर वो खुद भी जॉब कर रही है वो, तो कोर्ट सारी बातों को देखती है। और अगर वो ऐसे केसेस में अगर वो झूठा शपथ पत्र महिला देती है तो उसके विरुद्ध भी कोर्ट संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकता है।
1: ओके,
0: तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई जुडिशरी में कोई आपको रिलीफ दिया गया है या कोई आपको फेवर के लिए कोई लॉ दिया गया, तो आप उसका मिसयूज ना करें एटलीस्ट।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, तलाक के बाद महिला के क्या अधिकार हो सकते हैं?
0: देखिए परिस्थिति को अनुसार जो है मेंटेनेंस है, एलिमनी है, बच्चों की कस्टडी है, स्त्री धन है और अन्य वैधानिक राहतों के लिए वो आवेदन कर सकती है। और जो है तलाक के बाद भी अगर देखिए आपकी तलाक की तो पिटीशन में अगर ये सारी चीजें मेंशन है कि भी दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग रहेंगे और तलाक विवाह विच्छेद होता है और भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और वन टाइम अगर आपका सेटल्ड हुआ है तो देखिए आपका राइट सब वही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: एलिमनी अगर आपने वन टाइम उससे ले ली, लेकिन अगर तलाक आपका हुआ है और उसके बाद भी आपने मेंटेनेंस की मांग की हुई है तो आपका राइट है, जब तक आपकी सेकंड मैरिज नहीं हो जाती या आप कहीं सेटल नहीं होती तो आपका राइट है, आप जो है अपने पति से आप मेंटेनेंस ले सकते।
1: सर दोनों की अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो तब भी महिला बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे खर्चे तुम उठाओगे तलाक के बाद?
0: देखिए मैंने आपको क्या बताया, आप कोई भी प्रेयर करते हो तो उसके साथ में आपको एविडेंस कोर्ट उससे मंगाती है, आपको बैंक स्टेटमेंट स्टेटमेंट देने पड़े, आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
1: ओके सर, अगला क्वेश्चन है, क्या माँ बच्चे की कस्टडी मांग सकती है?
0: हाँ बिल्कुल मांग सकती है कस्टडी। कस्टडी का निर्णय केवल माँ या पिता के आधार पर नहीं होता। जो न्यायालय का प्रमुख जो विचार होता है वो बच्चे का वेलफेयर होता है, कि बच्चे का वेलफेयर होना चाहिए, और मामले की परिस्थितियों को देख के कोर्ट जो है उसकी कस्टडी मदर या फादर किसी को भी दे सकती है।
1: ओके, बच्चे की कस्टडी में क्या महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, बच्चे की जब कस्टडी मांगी जाती है तो जो कोर्ट देखती है, सबसे पहले बच्चे की उम्र देखती है, उसकी जरूरतें देखती है, क्या उसकी नीड्स है, ठीक है, फिर उसकी एजुकेशन है, उसकी सुरक्षा है, उसकी देखभाल है, ओवरऑल जितने भी वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है या जो भी फैक्टर्स है उसको देख के ही कोर्ट आगे अपना डिसीजन दे।
1: क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिलता है?
0: देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत जो कॉपरेंसी प्रॉपर्टी में बेटी को बेटे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, और हालांकि संपत्ति की जो प्रकृति है या जो पुराने जैसे ट्रांसफर जैसे केसेस होते हैं, तथ्य होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ बेटी का और बेटे का बराबर का अधिकार हो।
1: शादी के बाद बेटी का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार खत्म हो सकता है?
0: देखिए, केवल शादी हो जाने से बेटी का वैधानिक संपत्ति अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि संपत्ति किस प्रकार की है और कौन से कानून अधिकार उस पर लागू होते हैं।
1: महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो क्या किया जा सकता है?
0: देखिए, अगर उसको महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको संपत्ति के डॉक्यूमेंट और टाइटल की स्थिति देखनी होगी, उसको क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आप लीगल नोटिस दे सकते हैं, पार्टीशन सूट डाल सकते हैं, या और जो कोई लीगल रेमेडी आपको मिली हुई है आप उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकते हैं।
1: विधवा महिला के संपत्ति संबंधी अधिकार क्या है सर?
0: देखिए, विधवा महिला के अधिकार से संबंधित जो है पर्सनल लॉ जो भी होते हैं और संपत्ति की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उत्तराधिकार में अगर उसका हिस्सा है तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स देखकर ही जो भी एक कानूनी स्थिति है वो हम बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे ही सारी चीजें चलती हैं।
1: क्या महिला अपनी संपत्ति की बिल बना सकती हैं?
0: हाँ, समानता सक्षम व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में कोई भी बिल बना सकता है। उचित तरीके से अगर आप बिल तैयार और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो जरूरी होता है, तो कोई भी आदमी अपनी संपत्ति की बिल बना सकता है।
1: कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न पर क्या कानून है?
0: देखिए, अगर वर्क आपका प्लेस है वहाँ पे अगर हैरेसमेंट का कोई केस आता है तो पॉश एक्ट 2013 अगर बनाया गया है, उसमें अगर कार्यस्थल पे आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप उसके तहत जो है आप जो है शिकायत कर सकते हैं।
1: हमारा अगला क्वेश्चन है सर, POSH का क्या मतलब?
0: हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, POSH जो पॉश एक्ट है उसका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये वर्क प्लेस पे ही किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये कानून उसी के तहत बनाया गया। इसका उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पे महिलाओं को सुरक्षित रखना और उनकी शिकायत को प्रक्रिया को समझ के और एक्शन लेना।
1: ऑफिस में इंटरनल कमेटी नहीं है तो क्या करें?
0: देखिए, संस्था के जो संस्था का जो आकार है या कह सकते हैं उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वॉल्यूम है और जो लागू कानून की रिक्वायरमेंट है, जो भी कानून है उसके अनुसार अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी नहीं है तो उसके लिए आपको एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मतलब पूरा एक आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और संबंधित लोकल कमेटी या सक्षम जो भी अधिकारी के समक्ष उस शिकायत डेस्क एक आपको कंप्लेंट डेस्क बनानी पड़ेगी। तो ये जरूरी है ये
1: सर। और ऑफिस की बातें हो रही है तो एक और क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस में अश्लील मैसेज या अनवांटेड एडवांस आए तो क्या करें?
0: देखिए, कई बार केसेस में हमने देखा है कि भाई ऑफिस में ही वर्क प्लेस ऐसा होता है, वहाँ लड़के लड़कियाँ भी काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है मजाक करते हुए वल्गर मैसेज भेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ईमेल है उसको सुरक्षित रखिए, डिलीट करने के बजाय उसको एविडेंस प्रिजर्व करें और जो भी कंप्लेंट मैकेनिज्म है उसका उपयोग करते हुए आप जो उसने भी आपको हैरेस करने की कोशिश करी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें।
1: सर, कई बार व्हाट्सएप पे भी इस तरीके के मैसेज आते हैं
0: जी,
1: तो उस समय क्या करना चाहिए?
0: देखिए, संदेशों को, स्क्रीनशॉट्स को, जो नंबर है, जो चैट डिटेल्स है उसको आप सुरक्षित रखें और जो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो पुलिस को या साइबर क्राइम मैकेनिज्म में आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, निश्चित तौर पे एक्शन होगा।
1: महिला की फोटो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर डाले तो उस समय हम क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपने, बहुत सारे आजकल केसेस आ रहे हैं, आपने सुना हुआ एक वर्ड डीप फेक।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो डीप फेक क्या होता है, लोग क्या करते हैं आपकी फोटो को मिसयूज करके उसका वल्गर कंटेंट बना के और आपको डिफेम करते हैं, आपको जो है बदनाम कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो परिस्थिति और फोटो की प्रकृति जो है उसके आधार पर अगर प्राइवेसी और क्रिमिनल और साइबर लॉस लागू होते हैं उस पे, तो आप उस एविडेंस को सुरक्षित रखिए और तुरंत कंप्लेंट करिए, तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होगा।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर स्टॉकिंग क्या है?
0: देखिए, किसी व्यक्ति को अगर अनवांटेड आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहे हो बार बार, ठीक है, उसको मॉनिटर कर रहे हो बार बार उसको, या उसको हैरेस करके हैरेसमेंट के माध्यम से आप उसको परेशान कर रहे हो, तो ये साइबर स्टॉकिंग में आता है और ये एक तरीके का क्राइम माना जाता है।
1: निजी फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी मिले तो क्या करें, क्योंकि इसके धमकी बहुत दी जाती है सर
0: आजकल। देखिए, बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बहुत साइबर जितने भी क्राइम्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, आपकी फोटो, निजी फोटो जो हैक कर लेंगे, फिर उसको एडिट करके कुछ उसको ऐसा कंटेंट बना देंगे कि वो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको किसी भी थ्रेट में नहीं आना है, ठीक है, जो पहले कोई भी पैसे ना दे, ना किसी धमकी के दबाव में आए, कोई भी नया कंटेंट ना भेजें, स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल नंबर, मैसेज जितने भी सुरक्षित रखें और तत्काल उसकी सूचना साइबर क्राइम में या पुलिस कंप्लेंट तुरंत करें।
1: अगर कोई फोन पर धमकी दे रहा हो तो सर?
0: देखिए, फोन पे अगर धमकी दे रहा है तो आप पहले कॉल डिटेल पूरी उसकी सुरक्षित रखिए, मैसेज सुरक्षित रखिए, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखिए और खतरे की गंभीरता के अनुसार पुलिस को तत्काल सूचित।
1: सर एक जो मैसेज आप महिलाओं तक पहुंचाना चाहे, प्यारा सा संदेश जो आप विमेन को देना चाहें।
0: देखिए, मैं बस आपसे जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी कानून आपको दिए गए हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है आप खुद भी कानून का पालन करें, है ना। अगर आपके लिए कोई कानून दिए गए हैं तो वास्तव में पीड़ित के लिए हैं, आप पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए कानून है, उसको आप सजग रह के आप उसका जो है हेल्प मांग सकती हैं, लेकिन कानून का मिसयूज ना करें, बस मैं यही बोलूंगा मैं। और क्योंकि देखिए, जो सरकार आपके लिए कानून बनाती है, जुडिशरी बनाती है, वो पीड़ित के लिए बनाती है, लेकिन हम लोग जैसे कोर्ट में देखते हैं मोस्टली जो है छोटी छोटी बातों पे लोग जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में FIR करा देते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो है वास्तविक जो जड़ झगड़े की वो जानना चाहिए, है ना। एक जो है हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में छोटी छोटी बातों पे जो आजकल मैं देखता हूँ कि तुरंत दहेज की FIR हो जाती है, फिर लड़के पक्ष भी मारपीट की FIR लिखा देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें रिश्तों में कटुता बढ़ती है। अगर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जहाँ बैठ के आप समस्या को सुलझा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल, ये तो सही कहा सर आपने, क्योंकि कोई भी समस्या है अगर हम सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे तो मिल ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए श्रोताओं, हम लेते हैं यहाँ से एक जाने की इजाजत और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी से। आई होप कि जितने भी विमेन्स हमें सुन रही हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला है, क्योंकि आपको राइट्स दिया गया है तो उसका सही तरीके से यूटिलाइज करिए, गलत तरीके से यूटिलाइज मत करिए। और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
5: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
4: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हाँ जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट

0: थाली खड़ सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, 20,000 रूपए डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है। बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए जल्दी शिकायत ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।
1: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
1: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
2: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's single. Squash boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वैश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
7: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
7: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था, इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
6: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
7: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
7: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं। जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
6: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
7: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
7: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
7: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षो में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
8: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
9: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
6: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया जिसमें एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
11: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज है और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। इन एक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
10: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वैश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत

0: सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: हेलो, मैं हूं आपके साथ आपके अपनी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। आप सभी को पता है कि देखिए, जब भी हम आते हैं ना तो दोनों कुड़िया साथ में ही आते हैं गप्पे शप्पे करने के लिए, आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भैया, सच में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि हर किसी इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो उसके लिए हमेशा खास होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उसकी एक मैसेज, एक कॉल देखकर ना हमारे चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। मतलब वो इंसान हमारे लिए बेहद खास होता है। आई नो कि आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो बेहद और बहुत ज्यादा खास भी होगा। कहते हैं ना, जिंदगी में भीड़ बहुत मिलती है, लेकिन उस भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो बाकी सबसे अलग होता है, जिसके सामने आपको अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है, दुख छुपाना भी नहीं पड़ता है। वो बस देखकर समझ जाता है कि आज मन ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपका सबसे पुराना दोस्त हो या परिवार का सदस्य ही हो। कभी कभी कोई इंसान अचानक जिंदगी में आता है और धीरे धीरे बहुत खास बन जाता है। आपके लिए भी ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जिसके बारे में सोचते ही चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ भाई खुशी, तुम बताओ, तुम इतनी टहल क्यों रही हो, ये बताओ पहले।
4: टहलना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं टहल रही हूँ। और मैं बताती हूँ कि जिंदगी में ना सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद वही होता है जहाँ आपको हर बात बोलकर समझानी नहीं पड़ती, सामने वाला आपकी चुप्पी से भी समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। एक बात, एक छोटा सा सवाल, क्या हुआ, और अचानक लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे पूछने वाला है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में किसी गिफ्ट से कम नहीं होते, और हो सकता है आप रोज उनसे बात ना करते हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उनका एक मैसेज भी बहुत बड़ी उम्मीद दी जाता है। ऐसे इंसान को संभाल कर रखिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा इंसान समझने वाला नहीं मिलता।
3: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और मुझ वक्त का साथ ये बहुत जरूरी होता है। अच्छे समय में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, असली पहचान तो तब होती है जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और जब चेहरे पर स्माइल नहीं होती, बस कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और जब लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, तब कोई एक इंसान अगर आपके पास खड़ा रहता है तो उसकी जगह जिंदगी में बहुत खास हो जाती है। उसने शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना की हो, लेकिन उसने आपको अकेला महसूस नहीं होने दिया। और कई बार इंसान को सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि कोई उसके साथ खड़ा है।
4: और रीना, तुम्हें पता है, पुराने दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे महीनों बातें ना हो, लेकिन जब फोन पर बात शुरू होने लगती है ना, तो जैसे कल ही मिले थे। ना कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन, ना कोई हिसाब किताब, बस वही पुरानी हंसी, वही पुराने किस्से और वही बेफिक्री बातें। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारी यादों में वही के वही रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना दोस्त है जो आज, उसे एक छोटा सा मैसेज जरूर देना, यार याद आ रही थी। हो सकता है सामने वाले का पूरा दिन ही बन जाए। तो आप भी अपने दोस्त को मैसेज कीजिए ना, जिनसे आपने महीनों बात नहीं की है, शायद आपका मैसेज का वो इंतजार कर रहे हो और उनका पूरा दिन बन जाए। या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपके पास ही मैसेज कर दे, है ना दोस्तों। ये दोस्ती का रिश्ता ना बहुत खास होता है, चाहे आप दूर हो या आप नजदीक हो। तो इस दोस्ती के रिश्ते को ना हमेशा संभाल कर रखिए, और बीच बीच में वीकली मंथली जब आपको टाइम मिले तो जरूर टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से मिले जुले, उससे रिश्ते और ज्यादा खूबसूरत होते हैं।
3: हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। कभी वो माँ होती है, कभी पापा, कभी भाई बहन, कभी दादा दादी, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपकी बात ध्यान से सुनता है। उसकी खासियत ये नहीं कि हर समस्या का हल जानते हैं, उसकी खासियत ये है कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करते हैं। परिवार की यही छोटी सी खुशी हमें बाहर की बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है। इसीलिए अपने घर के उस खास इंसान को कभी कभी बता भी दिया कीजिए कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी इंसान खास हो ना, वो आपके लिए बेहद, आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
4: कभी कभी दोस्तों हमारी जिंदगी में ना ऐसा वक्त आता है जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन तभी कोई एक इंसान बोलता है, तू कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस ये चार पांच शब्द अंदर से कुछ बदल देते हैं, क्योंकि किसी का आप पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होता है। हो सकता है दुनिया आपकी कमी दिख रही हो, लेकिन वो इंसान आपकी पोटेंशियल दिख रहा होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपकी क्षमता पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है, तो समझ लीजिए आप बहुत लकी हैं। हाँ हाँ, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप ही को बोल रही हूँ, वो लकी पर्सन आप ही हैं।
3: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। और साथ ही साथ आजकल बहुत से रिश्तों में मतलब ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ खड़े रहते हैं। ना उन्हें बदले में कुछ चाहिए, ना कोई फायदा, बस इसीलिए साथ है क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। ऐसे लोग शायद ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जब जरूरत होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और सच कहे तो जिंदगी में ऐसे लोगों की कीमत किसी महंगे गिफ्ट से ज्यादा, कहीं ज्यादा होती है। और जब आपके पास ऐसे इंसान है तो मैं कहती हूँ उसको संजो कर रखिए, अपने पास से कभी दूर मत होने दीजिए। चाहे आप बात ना करें, लेकिन जब भी मिले तो आपको मिलकर ऐसा ना लगे कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं।
4: दोस्तों हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहते, वो हमें बदल भी देते हैं। कोई हमें कॉन्फिडेंस देना सिखाता है, कोई खुद के लिए खड़ा होना, कोई मेहनत करना, और कोई ऐसा समझाता है कि जिंदगी में हार के बाद भी उठना जरूरी है। हो सकता है वो इंसान आज आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसकी कही हुई कोई बात आज भी आपके साथ चल रही हो। ऐसे लोग हमारे सफर का हिस्सा भले ही कम समय के लिए बने हों, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। क्यों दोस्तों, होता है ना ऐसा? आपकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए।
3: मतलब बात तो वही है ना कि जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपके अंदर कोई कमी है तो उसको बताते हैं कि इस कमी को ठीक करो, तुम ऐसे करो तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन जो इंसान आपसे मतलब के लिए रिश्ता रखता है, मतलब के लिए दिखावे रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन काम गलत कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कभी इंटरफेयर नहीं करता वो आपके लाइफ में। लेकिन जो आपके सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा आपकी परवाह करते हैं और आपकी गलतियों को हमेशा बताते हैं। किसी खास इंसान की पहचान हमेशा बड़ी बड़ी यादों से नहीं होती, कभी उसकी याद किसी छोटे से काम से आ जाती है। कोई गाना सुनकर, कोई जगह देखकर, कोई चाय की खुशबू या फिर कोई पुराना डायलॉग सुनकर अचानक मन कहता है अरे ये तो वो कहा करता था, और चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। यही तो खास रिश्तों की खूबसूरती है। इंसान दूर हो सकता है लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में कभी ना कभी, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं।
4: सही समय पर सही इंसान का मिल जाना, साथ देना अपने आप में ब्लेसिंग्सफुल होता है एवरीवन। कभी कभी ना जिंदगी में कोई इंसान ऐसे समय पर आता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी एक बात, एक सलाह या एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए कितना बड़ा था। जिंदगी में हर इंसान हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर आकर ना हमें संभाल जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते की उम्र नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी किसी इंसान का कुछ समय के लिए आना भी जिंदगी के लिए, जिंदगी में बहुत मायने रखता है।
3: जो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है। आपने कभी नोटिस किया है, खास इंसान वही नहीं होता जो आपके लिए बड़े काम करे। कभी कभी वो इंसान खास इसलिए होता है क्योंकि उसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। आपको कौन सी चीज पसंद है, किस बात से आपको बुरा लगता है, आप परेशान होने पर चुप हो जाते हैं, ऐसी छोटी बातें याद रखना बताता है कि सामने वाला आपको ध्यान से सुनता है। और आज के बिजी समय में किसी को इतनी अटेंशन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है श्रोताओं। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, रेडियो किसी बिल्कुल नहीं घुमानी है, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें एंजॉय करते रहिए। आपके लाइफ में ना कोई पर्सन तो ऐसा जरूर होगा, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और अभी आपने ये हैपनिंग ट्रैक एंजॉय किया एंड अब हम बात करने वाले हंसी वाले इंसान की। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ना हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस की तरह होते हैं। इनके साथ 5 मिनट बैठो और मूड अपने आप ठीक होने लगता है। वो कोई जादू नहीं करते, बस अपनी बातें करके आपको हंसा देते हैं। कभी बेवकूफी वाली बात, कभी पुराने किस्से, और कभी ऐसे जोक कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे इंसान जिंदगी में ना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हर दिन सीरियस रहने के लिए नहीं बना है एवरीवन। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है ना जो आपको बिना किसी वजह के हंसा सकता है, तो उसे जरूर संभाल के रखिए। क्योंकि दोस्तों, तकलीफ देने वाले ना हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुशियां देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और अगर ऐसे पर्सन आपके पास है तो संभाल के रखो और खुश रहो।
1: दूर रहकर भी करीब, ये बहुत देखा जाता है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में ना हर कोई आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और हमेशा के लिए एक साथ रहते भी नहीं है। तो कुछ रिश्तों में दूरी सिर्फ जगह नहीं होती, दिल की नहीं। इंसान किसी दूसरे शहर में हो सकता है, रोज बात ना होती हो, लेकिन जरूरत पड़ते ही कनेक्शन वही महसूस होता है कि फोन कॉल एक मैसेज और लगता है जैसे दूरी खत्म हो गई। ऐसे रिश्ते हमें बताते हैं कि किसी के करीब रहने के लिए हमेशा उनके पास रहना जरूरी नहीं। अगर दिल में जगह है तो हजारों किलोमीटर की दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती है। और चाहे आप कितने भी दूर रहो, और जब कॉल आती है ना, तो भाई लगता ही नहीं है कि हम कब मिले हैं, यानी कि लगता है कि बस जस्ट अभी तो मिले हैं। और कैसे वही, यानी कि अनप्रोफेशनल वाली बातें हम करने लग जाते हैं, जैसे हम मिलते थे, बात करते थे। मतलब सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या बोले क्या ना बोले, मतलब जो दिल में आता है हम बोल देते हैं। तो वो होती है असली इंसानियत और असली दोस्ती।
0: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। उस वक्त अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तुम कर सकते हो, तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। क्योंकि कई बार हमें अपनी ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने वाला उसे पहचान लेता है। ऐसा इंसान सिर्फ दोस्त नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की वजह बन जाता है। और आपकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसे पर्सन हैं जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं हर दिन। वो हमें कभी कभी ऐसा होता है, माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं कि कुछ चीजें होती हैं लाइफ में कि हम हिम्मत हार जाते हैं, अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं जब कोई इंसान आए और वो हमें संभाल ले, हमें प्यार से दो शब्द कह दे कि आप कर सकते हो, विश्वास रखो खुद पर, तो एवरीवन यकीन मानिए, वो छोटी सी कही हुई बात ना इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है।
1: खास होने के लिए रिश्ते जरूरी नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत खूबसूरत है किसी इंसान का खास होना। हमेशा किसी रिश्ते के नाम पर डिपेंड नहीं रहता। जरूरी नहीं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई टीचर, कलीग, पड़ोसी, या कोई पुराना जान पहचान वाला आपकी जिंदगी में ऐसे जगह बना लेता है, मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं वो भी आपकी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेता है जिसे शब्दों में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता चाहे जो हो, अगर उस इंसान की मौजूदगी आपको बेहतर महसूस कराती है, तो वो इंसान आपके लिए बेहद खास होता है।
0: दोस्तों, आज के टाइम

0: में सच्चा अपना कौन है, इसका एक छोटा सा टेस्ट है। आप अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कंपैरिजन के, ना उन्हें जलन होती है। सच्चा अपना कौन है, इसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। आपकी अपनी कोई अचीवमेंट बताइए और सामने वाले की खुशी देखिए। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर खुश होते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, ना उन्हें जलन होती है, ना वो आपकी खुशी छोटी करने की कोशिश करते हैं। वो सच में कहते हैं, मुझे तो तुम पर गर्व है। ऐसे लोगों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है। आपकी खुशी में ना हर कोई खुशी होने वाला हर कोई इंसान नहीं होता है। वो पर्सन बहुत लकी होते हैं और वो पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपको खुश आपकी खुशियों में वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जब आप एक छोटी सी भी कोई अचीवमेंट अचीव करते हैं ना, तो वो प्राउडली उनका जो कहते हैं ना कि गर्व से उनका सर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और हर एक छोटी छोटी चीजों को वो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई उनकी मेहनत को आप प्लीज जाया मत होने दीजिएगा। आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करें और जो भी आपके ड्रीम है आप उनको पूरा करें।
1: इसको कहते हैं निस्वार्थ प्यार, क्योंकि माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो निस्वार्थ होता है। शायद आपको भी अपने जिंदगी का कोई ऐसा दिन याद हो जब सब कुछ ठीक नहीं था, मन परेशान था, आंखों में आंसू थे और किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन कोई एक इंसान था जिसने उस वक्त आपको अकेला नहीं छोड़ा। शायद उसने सिर्फ आपकी बात सुनी थी, शायद कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी काफी थी। जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स और ऐसे लोग कभी भूले नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हमें उस वक्त संभाला जब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे इंसान आपकी ताकत बनते हैं और मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ खड़े रहते हैं तो आपको भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ देना चाहिए।
0: अब दोस्तों, एक मैसेज की ताकत पता है ना, जब एक मैसेज आ जाता है तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। हमारे चेहरे पर कहां हमारा मूड कभी कभी सैड होता है, लेकिन जैसे ही एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। कभी कभी किसी खास इंसान का सिर्फ एक मैसेज पूरे दिन को बदल देता है। कैसे हो, खाना खाया, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, या बस एक सिंपल सा मैं हूं ना। शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि असली बात मैसेज की नहीं होती है, असल बात होती है किसी ने आपको याद किया है। और जिंदगी में याद किया जाना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। देखो, हम भी आपको याद करते हैं ना, तभी तो आपसे मुलाकात करने आते हैं एवरीडे।
1: और साथ ही साथ एक ऐसा पार्ट जब कोई आपकी कहानी का हिस्सा बनता है। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, इसमें बहुत सारे किरदार आते हैं, कुछ कुछ पन्ने तक रहते हैं, कुछ नई चैप्टर तक और कुछ पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हर किरदार की अपनी जगह होती है। कोई हमें हंसाता है, कोई सिखाता है, कोई संभालता है और कोई हमें मजबूत बनाकर चला जाता है। इसीलिए हर खास इंसान को उसकी जगह और उसके योगदान के लिए याद करना चाहिए हम। और कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी मौजूदगी में मन शांत हो जाता है और ना कोई प्रेशर, ना कोई जजमेंट, ना खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत रियल होते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपको खुद को बदल कर नहीं बल्कि खुद बनकर रहे कम्फर्ट मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए बेहद खास है। और श्रोताओं, हम मुझे लगता है कि अब म्यूजिकल में ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि बातों के साथ साथ गानों का तड़का लगता है तो और भी मजा आ जाता है। तो बस हम लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: ना ऐसे इंसान भी होते हैं जो हमें अकेला नहीं छोड़ते। मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज हमेशा सलाह नहीं होती, कभी कभी बस किसी का साथ चाहिए होता है। ऐसा कोई जो बोले चल मैं तेरे साथ हूँ ना, उसने आपकी परेशानी खत्म नहीं की लेकिन उसने आपका डर कम जरूर कर दिया। और यही किसी रिश्ते की असली ताकत होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने आपके कठिन समय में आपका हाथ नहीं छोड़ा तो शायद वो आपके जीवन के सबसे खास लोगों में से एक है।
1: और श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक याद आने वाला इंसान बहुत स्पेशल होता है। चाहे आप बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं और अचानक उसकी याद आती तो प्यारी से स्माइल आपके चेहरे पर आ जाती है और उस टाइम आपकी खुशी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल वाला होता है। दिन भर हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन दिन के किसी भी वक्त अचानक किसी एक इंसान का ख्याल आता है, कोई वजह भी नहीं होती, बस याद आ गया। यही बताता है कि वो इंसान हमारे मन में कहीं खास जगह बना चुका है। वो हो सकता है हम उसे रोज ना बताते हो लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी तस्वीर जरूर होती है, उसकी यादें जरूर होती है, जो हमेशा उसकी याद कहीं ना कहीं कोई भी मोमेंट हो आ ही जाती हैं।
0: हमारी लाइफ का, जिंदगी का टीचर, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ना हमारी टीचर इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी सिखाई। उन्होंने बताया कि लोगों को कैसे समझना है, मुश्किलों में कैसे खड़े रहना है और खुद की वैल्यू कैसे पहचाननी है। हो सकता है उस वक्त उनकी बातें समझ ना आई हूँ लेकिन सालों बाद वही बातें जिंदगी में काम आती हैं। ऐसे इंसान सिर्फ याद नहीं रहते, उनकी सीख हमारे साथ चलती रहती है। दोस्तों, हमारी कॉलेज की बात है, मेरी एक टीचर थी और वो मुझे हमेशा, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे को संस्कृत सब्जेक्ट मिला हुआ था और संस्कृत में मेरा इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था लेकिन वो मैम मेरे को जबरदस्ती संस्कृत पढ़ाती थी और हमेशा वो मेरे को संस्कृत पढ़ाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था, उस टाइम भी मेरे को लगता था कि मैम क्यों मुझे जबरदस्ती फोर्स करके पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे आज समझ आता है अगर वो मुझे उस टाइम पर ज्ञान नहीं देती, वो मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाती तो मैं लाइफ में शायद बहुत कुछ मिस कर जाती।
1: देखिए, पता है खुशी क्या होता है, हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है।
0: Exactly.
1: जो इंसान सामने वाला होता है वो देखकर हमें जज कर लेता है। इनफैक्ट जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारी मेहनत लगन देखकर वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा इस चीज में आगे है और तुम आगे एक दिन जरूर बढ़ोगे। वो इस चीज को हमेशा कहते भी हैं और कभी कभी आप परेशान होते हो तो वो संभालते भी हैं, क्योंकि एक गुरु ना निस्वार्थ होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बस यही चाहते हैं कि जो मेरे पढ़ाए बच्चे हैं वो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो।
0: कहते हैं ना रीना कि हीरे की कीमत जोहरी को ही पता होती है।
1: अरे वाह, कहाँ कहाँ से लेकर आती है लड़की ऐसी ऐसी लाइनें।
0: जिंदगी का अनुभव है।
1: ओह माय गॉड,
0: सीख रहे हैं अभी, पूरी जिंदगी सीखने के ही।
1: राइट,
0: जिंदगी का नाम ही है सीखना है। तो हर दिन सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ
1: और मुझे लगता है कि सीखना बहुत जरूरी है, हर रोज सीखिए। और अब हम बात कर लेते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि कभी समय मिले तो अपने खास लोगों को बताएंगे कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी बहुत बिजी है और कभी अक्सर आता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है या सुकून मिलता है तो आज ही उसे बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा गिफ्ट दे, बस इतना कह दीजिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
0: वो गाना है ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके,
1: हाँ,
0: मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार बनके।
1: सदा बहार बनके।
0: तो वही है, कुछ लाइफ में होते हैं ऐसे इंसान, हाँ, जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी लाइफ में सबसे अच्छा कौन है? हमारा रेडियो, जो हमारी लाइफ को एवरीडे खूबसूरत बनाता है। आप सबसे मिलने का, बात करने का मौका हमें मिलता है।
1: हाँ, मतलब हम देखा कितने भी परेशान हो लेकिन जब रेडियो पर आते हैं ना एकदम बिंदास हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो सारा
0: वो
1: टेंशन।
0: खुशी ना हम शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एवरीवन, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है ना, अमेजिंग, माइंड ग्लोइंग।
1: तो श्रोताओं हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती हैं। तो जी मैडम क्या कहना चाहती हैं?
0: तो दोस्तों आज की बात यहीं से आप तक पहुंचाते हैं। जिंदगी में ना भीड़ बहुत है, कॉन्टेक्ट की लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन दिल के बहुत करीब लोग शायद गिने चुने ही होते हैं। कोई ऐसा जो आपकी खुशी देखकर खुद खुश हो जाए, कोई जो आपके दुख में बिना बुलाए आ जाए, कोई जो आपकी चुप्पी समझ ले, या कोई जो बस इतना कह दे मैं हूँ ना। अब सवाल आपका है, आपकी जिंदगी में वो खास इंसान कौन है? नाम मत बताइए तो भी चलेगा, बस मन ही मन उसे याद कर लीजिए, और अगर मौका मिले तो उसे आज बता भी दीजिएगा कि वो आपके लिए कितना खास है। ठीक है, छुपाइए मत, बता दीजिएगा उनको कॉल करके। और शर्माने की भी बात नहीं है, जो है वो है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, एंड आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो आज दिल की बातें कह देना। और अब हम भी अब आपको कहना चाहेंगे बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ये खूबसूरत सा रिश्ता हमारे साथ बनाए रखिए, दिल से दिल का। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

दोस्तों जब हमें याद करेंगे तभी हम आपसे मिल जाएंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी और ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों मैं आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूँ बिंदास बोल। और एवरीवन, मुरादाबाद का मौसम ना कैसा है मैं बताती हूँ। कभी कभी ना मौसम भी हमसे बातें करने लगता है। आज मुरादाबाद में बारिश की बूंदें जैसे कह रही हैं, थोड़ा रुकिए, भागदौड़ से कुछ पल चुराइए और खुद के साथ वक्त बिताइए। तो आज का ये बारिश वाला मौसम है, चाय की प्याली हो और कुछ खूबसूरत यादें और बातें भी होंगी बिल्कुल बिंदास, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहाँ पर होंगी ढेर सारा फन, ढेर सारी एक्टिविटीज, मस्ती जो हम आपके लिए करने वाले हैं एंड आपके साथ करने वाले हैं। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो आप तक डिलीवर करनी है खुशी को। लेकिन हाँ, उसके लिए एवरीवन आपको भी मेरा साथ देना होगा। और साथ देने के लिए बहुत सिंपल सा आपको काम करना है, हमारे ऑफिशियल नंबर पर आपको अपना मैसेज पहुंचाना है आज के दोपहर। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और संडे का खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा दिन जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, और आज का जो मौसम है ना, वो बारिश जो है ना थमने का नाम ही नहीं ले रही है, बैक टू बैक वो जारी है। और कुछ हमारे जो लिस्टनर हैं वो अभी भीगते भागते घर आए हैं, तो कुछ अपने काम के लिए भीगते भागते जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर योरसेल्फ एंड एवरीवन। कुछ खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ कुछ प्यारी सी बातों के साथ। चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप, चुप,

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो।

0: महाराज संतरी एफ मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो हेलो हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89। खुशी है आपके साथ। और देखिए दोस्तों, बाहर के मौसम की अगर बात करें ना, अभी जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है मुरादाबाद का, वो 23 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, 30 डिग्री सेल्सियस वेदर है हमारे मुरादाबाद का टेम्परेचर। और दोस्तों, आज बिंदास पोल शो में हमने थीम रखी है, बारिश सिर्फ मौसम नहीं, यादों और इमोशन का भी मौसम है। बारिश और हमारी यादें, बारिश होती ही ना सबको सबसे पहले ना क्या याद आता है, बताओ बताओ। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है? गर्मा गर्म चाय पकौड़े या कोई खास इंसान? बारिश में घूमना पसंद है या फिर घर में बैठकर मौसम एंजॉय करना? वो बचपन की बारिश की कोई ऐसी मेमोरीज है जो आज भी आपको याद आती है तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है? बताइए एवरीवन। बारिश होते ही आपको सबसे पहले याद क्या आती है? आप अपनी यादें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं बिंदास पोल शो में, जहां पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं आरजे खुशी के साथ। और कुछ खूबसूरत गाने मैंने यहां पर चुने हैं आज की दोपहर। एंड आज और क्या कुछ स्पेशल चल रहा है बॉलीवुड में, वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर खुशी आपको आप तक पहुंचाने वाली है। तो आप बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और कुछ अमेजिंग ट्रैक आपके लिए, आप एंजॉय कीजिएगा आज की दोपहर। गर्मा गर्म चाय पीजिए, अदरक वाली, इलायची वाली, और इन गानों का भी लुफ्त उठाइए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास फोन, जहां पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं। संडे की दोपहर है और वक्त हुआ है 3:44। और दोस्तों, कहते हैं ना कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और उन्हें पूरा करने की कोशिश की भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आज की कहानी शायद आपको भी थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। बागपत के रहने वाले विजय कुमार शर्मा जी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। और पोस्ट के मुताबिक विजय कुमार शर्मा जी ने करीब 27 साल पहले सरकारी

तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपके दिल में भी कोई सपना है, कोई गोल है जिसे आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, तो सिर्फ इसलिए उसे मत छोड़ दीजिएगा कि देर हो गई है कभी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ना जिंदगी कहती है थोड़ा और सब्र रखिए। आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी बाकी है। आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और याद रखिए दोस्तों, उम्र नहीं आपका हौसला तय करता है कि सपना कितना बड़ा है। मैं लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के इस पर, आप कहीं मत जाइए। और हाँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस समय ऑन द वे, कार में सुन रहे हैं, घर में सुन रहे हैं या फिर वर्क प्लेस पर सुन रहे हैं, तो मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं। अभी मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस पर आप अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं। तो देर किस बात की है, अपना मैसेज पहुंचाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर मैं अगेन रिपीट करती हूँ, 9837896896। इस नंबर पर आप अपना मैसेज पहुंचाइएगा और सुनिएगा अभी ये खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दम लगाई के हर्ष शाह। बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है आयुष्मान खुराना जी की, और ये शानदार गाना मैं आपको सुनवाती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अब जरा बात हो जाए बॉलीवुड की, जहां आजकल एक खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर ना खूब चर्चा में है। बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा जी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, जिसमें वो खूबसूरत लाल साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी में नजर आ रही हैं। साड़ी का ग्रेस और चेहरे की प्यारी सी मुस्कान हो और ऊपर से ट्रेडिशनल लुक, बस फिर क्या था। सोशल मीडिया पर तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। और सच कहे ना दोस्तों, भारतीय परिधान की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है। सादगी में जो निखार है वो किसी और अंदाज में कहां, साड़ी का अपना ही जादू है जो हर अंदाज को खास बना देता है। और ऐसे ही ब्यूटीफुल नजर आ रही है सोनाक्षी सिन्हा जी। और हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी शामिल कर दी हूँ। हमें यहाँ पर मैसेज आया है नूर जी का, और ये मैसेज हमें करणपुर से पहुंचाते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आपको भी सर। और बताइए एवरीवन, क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ ठीक ठाक है ना। बस सब कुछ अच्छा ही चलना चाहिए और लाइफ में हैप्पीनेस आपको मिलती रहे, खुशियां मिलती रहे, खुशियां बांटती रहिए आप। जब खुशी बांटेंगे तो खुशियां मिलेंगी भी। बाकी अभी लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, और पूछूंगी एक मजेदार सवाल, उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। एंड सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन। मुस्कुराते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हो, तो बस ऐसे ही मुस्कुराहट बरकरार रखिए चेहरे पर।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए शाम के 4:13 हो गए हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान की सोच बदल जाए तो एक परिवार बदलता है, लेकिन एक इंसान की सोच अगर समाज बदल दे तो इतिहास बदल जाता है। और साथियों, आज 27 सितंबर है और आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान समाज सुधारक को जिन्होंने अपने विचारों और संघर्ष से समाज में नई रोशनी जगाई, राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के अग्रदूतों में गिना जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठाई और सती प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ महत्वपूर्ण संघर्ष किया। उन्होंने ब्रह्मा समाज के स्थापना भी की जिसका उद्देश्य समाज में सुधार और रूढ़ियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। विवन उस दौर में जब समाज में कई कुर्तियों के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था, तब एक इंसान ने बदलाव की शुरुआत करने का साहस किया और यही तो सीख है आज की तारीख से। बदलाव की शुरुआत हमेशा भीड़ से नहीं होती, कभी कभी एक आवाज ही काफी होती है। राजा राम मोहन राय जी को पुण्यतिथि पर उन्हें हम नमन करते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं।

उनके विचारों को याद करते हुए दोस्तों खुद से एक छोटा सा संकल्प, एक वादा जरूर करें, जहां कोई गलत चीज दिखाई दे वहां चुप रहने की बजाय सही बात के लिए आवाज उठाने की कोशिश जरूर करें। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। लौट कर आती हूँ कुछ खूबसूरत बातों के साथ और खूबसूरत गानों को आप एंजॉय कीजिएगा। एंड आप अपने संदेश भी मुझे पहुंचा सकते हैं आज की सुबह, आज की इवनिंग। एंड देखिए मॉर्निंग में भी मैं आई थी और मौसम इतना सुहाना है कि पता ही नहीं चल रहा है सुबह से शाम हो गई है ना। और आज संडे का दिन, आपने सोचा होगा बहुत कुछ लेकिन वैसा नहीं हो पाया है। बट अभी गाने इंजॉय करूँ।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 में आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और दोस्तों वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 4:31 और मुरादाबाद शहर में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखिए, स्पीड कम रखो एंड सामने वाले वाहन से सेफ डिस्टेंस बनाए रखिए। और जल भराव वाली सड़क पर बिना पानी की गहराई जाने वाहन आगे ना बढ़ाएं। और हाँ, बारिश में विजिबिलिटी कम हो तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि घर देर से पहुंचना बेहतर है लेकिन सुरक्षित पहुंचना सबसे जरूरी है। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सेफ ड्राइव करते रहिए एवरीवन। शाम को बनाइए खूबसूरत ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ। शो का नाम है बिंदास बोल, जहां पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं खुशी के साथ। लेकिन बातें करने के लिए आपको आज कॉल नहीं करना है एवरीवन, आज आपको मैसेज पहुंचाना है। एंड बहुत सारे मेरे पास बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज कॉलिंग वाला शो नहीं है, तो आप प्लीज कॉल ना करें। आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करते हैं, आपकी च्वाइस है आप कहाँ मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर या फिर टेक्स्ट मैसेज। अभी फिलहाल सुनो एक अमेजिंग ट्रैक, लौट कर मैं वापस आती हूँ।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अब हम आपसे पूछ लेते हैं एक सवाल जिसका भी सभी से था आपको इंतजार। एवरीवन, अब हम खेलते हैं बॉलीवुड क्यूज एंड उसमें हम आपसे पूछने वाले हैं। मैं एक डायलॉग प्ले करने वाली हूँ, आप मुझे बताएगा कि डायलॉग कौन से फिल्म का है। और एवरीवन, बहुत ही पॉपुलर फिल्म है एंड आपको उस मूवी का नाम बताना है और मैं डायलॉग यहाँ पर प्ले कर रही हूँ। आपको मूवी का नाम बताना है और अपने नाम के साथ सही जवाब हम तक पहुँचाना है। तो सुनवाते हैं ये पॉपुलर डायलॉग एंड पॉपुलर फिल्म से, गेस कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये डायलॉग है।
1: मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा चेक।

0: और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिले, पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिली।
1: बताइए विवरण, ये जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन से फिल्म का है और इस फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है। देखते हैं सबसे पहले किनका आता है सही जवाब। एंड जब तक आप सही जवाब पहुंचाते हैं तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ कुछ शानदार से ट्रैक। और ये फिल्म तो सभी ने देखी होगी है ना,

0: देखिए एवरीवन, मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, अभी मैं आपके साथ ही हूँ। और मैंने ना अभी एक डायलॉग प्ले किया था दोस्तों, आपने सुना है, और ये डायलॉग किस बॉलीवुड मूवी का है? चलते चलते जरा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए इस डायलॉग वाली फिल्म का क्या नाम है। देखते हैं हमारे कितने श्रोता बॉलीवुड के सच्चे फैन हैं। तो जरा डायलॉग एक बार हम फिर से प्ले कर देते हैं और सुनवा देते हैं आपको। दोस्तों बहुत ही पॉपुलर फिल्म है एंड डायलॉग भी बहुत ही प्यारा है, लाइनें बड़ी खूबसूरत सी हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
1: पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा चेक, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं, मैं आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूं, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिले, कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा चेगी, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं, मैं आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूं, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिले, पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत से डायलॉग है और ये फिल्म भी कमाल की है। और इसका सही जवाब हमें पहुंचाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें सही जवाब पहुँचाया है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी ने, और ये कहते हैं जय श्री राम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मूवी का नाम है मोहब्बतें, एग्जैक्टली राइट आंसर, एंड आपके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। ये जोरदार तालियां आपके लिए, आपको बहुत बहुत बधाइयां जी, आप बनते हैं हमारे शो के बिंदास बोल शो के लकी विनर, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। और लगता है कि मूवी की ना मतलब बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनके आप बहुत बड़े वाले फैन हैं, हाँ मूवी शो भी बहुत ज्यादा देखते हैं आप। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड इवनिंग खुशी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि संडे के दिन भी आप शो लेकर आए, एंड सच में अच्छा लग रहा है, आज भी बढ़िया बढ़िया सॉन्ग आपने प्ले किए, थैंक यू सो मच। और कहते हैं सर कि आपका अपना सा सीधा प्यारा अंदाज शो को और भी खूबसूरत बना देता है, थैंक यू सो मच। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ इटली से, एंड हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और आपने जवाब दिया है लेकिन आपका जवाब गलत हो गया है सर, मूवी का नाम है मोहब्बतें, और आपने जो आंसर दिया है ना वो आपने आंसर दिया है कभी खुशी कभी गम का, गलत हो गया है, बट कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट करना एंड जरूर आप हमारे शो के लकी विनर बनेंगे। तो दोस्तों अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, एंड मिलेंगे आपसे, सी यू सून, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, नई बातों के साथ मुलाकात होगी आपकी और हमारी, तब तक के लिए गाने एंजॉय कीजिएगा।

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेरे यानी आरजे आनंद के साथ, और आपका फेवरेट प्रोग्राम है जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। ये प्रोग्राम आप डेली सुनते हैं 12:30 बजे, जहां पर हम ढेर सारी नए नए एक्सपर्ट से बातें करते हैं, और आज का विषय बहुत खास है। और आपको बताए, हमारे साथ बीच बीच में आते रहते हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई कमाल के एक्सपर्ट, जो आपकी आंखों के लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं। और आज का जो विषय है बहुत ही खास है, क्योंकि आज है बहुत ही प्यारा दिन, आज 27 तारीख है, और आज जो है हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड रेटिना डे सेलिब्रेट किया जाता है। और रेटिना के बारे में ढेर सारी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रोहन कपूर जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
4: थैंक यू आनंद, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ।
3: सर, हमारे लिसनर्स आपको ढेर सारे सुन रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी तरफ से आपका वार्म वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। और आज का जैसे कि विषय मैंने बताया अपने श्रोताओं को, वर्ल्ड रेटिना डे 27 सितंबर को ये हर साल मनाया जाता है। सर, रेटिना क्या है, इसका मकसद क्या है मनाने का?
4: रेटिना का मतलब होता है आंखों का पर्दा।
3: ओके,
4: आंखों का पर्दा को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो जैसे कैमरा होता है उसकी फिल्म होती है, वैसे ही हमारे आंख का जो पर्दा है वो कैमरे की फिल्म की है।
3: ओके,
4: तो हमारे को जो भी हम देखते हैं वो उस पर्दे पे प्रोजेक्ट होता है, और हमारा ब्रेन उसको पढ़ता है। पर्दा बहुत जरूरी चीज है अगर हमारे को साफ देखना है, और एक हेल्दी पर्दा इसलिए जरूरी है बिकॉज तभी हम साफ देख पाएंगे।
3: तो सर, आपने बिल्कुल सही बताया, और मुझे लगता है ना, हम ज्यादातर आम लोगों को ये पता होता है कि आंखों में सिर्फ छोटी छोटी प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन उसके पीछे भी जैसे अभी आपने बताया कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, है ना, उसे हम जिसे रेटिना कहते हैं। ओके, तो अगर आम भाषा में बोले तो रेटिना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, आम भाषा में अगर लोगों को समझाएं थोड़ा सा? और
4: आम भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जैसे कैमरे का फिल्म होता है वैसे ही आंखों का पर्दा होता है। रेटिना को हिंदी में हम आंखों का पर्दा कहते हैं। कैमरा की अगर फिल्म हेल्दी है तभी कैमरा फोटो खींच पाता है, वैसे ही अगर
3: क्लैरिटी भी आ पाती है,
4: यस, तभी वो क्लैरिटी भी आ पाती है। इसलिए अगर हम पर्दे को स्वस्थ रखेंगे तो हमारी विजन बहुत क्लियर रहेगी।
3: वेरी नाइस। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया है आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। और डॉक्टर साहब, इसी बीच मेरा अगला सवाल होगा कि रेटिना की बीमारी कितनी आम है, क्या रेटिना से जुड़ी समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती हैं, या उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ जाता है?
4: रेटिना की बहुत सारी बीमारियां हैं और ये हर एज ग्रुप के पर्सन को इफेक्ट कर सकती है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का रीजन रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी होती है, जो प्रीटर्म बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हम थोड़ा मिडिल एज का पेशेंट देखें और उसको अगर शुगर या हाइपरटेंशन मतलब बीपी की बीमारी है, तो शुगर और बीपी की बीमारियां भी आंखों का पर्दा खराब करती हैं। तो पर्दा बहुत मल्टीपल एज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में इन्वॉल्व हो सकता है।
3: ओके,
4: और अच्छी बात यह है कि ये सब बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं और ट्रीटेबल हैं, ठीक भी करी जा सकती हैं और रोकी भी जा सकती हैं।
3: ओके, जैसे किसी भी बीमारी के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती संकेत जिसे लक्षण कहते हैं, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं सर?
4: ये थोड़ा बीमारी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी मतलब शुगर और बीपी की वजह से जो असर आता है, उसमें यूजुअली पेशेंट आके बोलेगा कि उसे धुंधला दिख रहा है या आंखों के आगे कुछ काले रंग के धब्बे से आए हुए हैं।
3: ओके,
4: प्रॉब्लम बस ये है कि ये दोनों बीमारियां ही जब ये सिम्टम्स शो करें, मतलब ये बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं और हमारे को उसे पहले ही डिटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो प्रीटर्म बेबीज में रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी जो आरओपी नाम की बीमारी है, उसके कोई लक्षण नहीं होते। बाहर से पेरेंट्स देख के नहीं पता लगा सकते कि बच्चे का पर्दा ठीक है या नहीं, वो एक चेकअप पे ही पता लगता है। तो हर पेशेंट को यूजुअली रूटीन चेकअप जरूर करवाना चाहिए।
3: ओके डॉक्टर साहब, इसी बीच में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, मतलब अगर अचानक किसी व्यक्ति की नजर कम होने लगे या उसे थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगे, उसे कितनी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में?
4: यूजुअली मैं बोलूंगा कि इसमें जल्द से जल्द आप जो भी नियर बाय फैसिलिटी अवेलेबल है उस पे पहुंचे, जिससे कि एटलीस्ट एक डायग्नोसिस बन पाए। धुंधलापन बहुत सारी बीमारियों में आता है, उसमें पर्दा भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, आगे काली पुतली भी हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा ग्रेव है, कितनी ज्यादा सीरियस है, वो पता तभी लगेगा हम जल्द से जल्द चेकअप कराएं। तो एज सून एज पॉसिबल नियर बाय फैसिलिटी पे जाया जाए और उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कराया जाए।
3: ओके डॉक्टर साहब, आज के समय में डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है, तो क्या इसका असर रेटिना पर पड़ता है?
4: डायबिटीज इस समय सबसे कॉमन बीमारी है,
3: बिल्कुल,
4: नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में,
3: पूरे वर्ल्ड में।
4: और डायबिटिक रेटिनोपैथी जो पर्दे पे असर डायबिटीज की वजह से आता है, वो उसकी भी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। शुगर की बीमारी इंसान के ब्रेन, किडनी और आंखें तीनों को खराब करती है, और इसीलिए हर शुगर से ग्रस्त पेशेंट को अपना पर्दे का चेकअप जरूर जल्द से जल्द कराना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्द शुरू हो जाए।
3: बहुत ही बढ़िया। सो डॉक्टर साहब के साथ बात कंटिन्यू रहेगी लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद आनंद के साथ और आज का विषय बहुत खास है और आज हम आपके साथ ढेर सारी बातें कर रहे हैं रेटिना पे और हमारे बीच में डॉक्टर रोहन कपूर जी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त। सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब डिस्कस कर रहा था इन सब बातों पे तो आपने ROP के बारे में बताया, तो बेसिकली ये क्या चीज है मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग में जानना है क्योंकि मैंने भी कभी ये सुना नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को आप इस विषय में बताएं।
1: ROP इस बीमारी को कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। अगर हम किसी को सिंपल भाषा में समझाएं तो बीमारी का मतलब है प्री मेच्योर बेबीज को रेटिनोपैथी होना, उनका पर्दा खराब होना। नेचुरली ये होता है कि किसी भी बच्चे का पर्दा 40 हफ्ते पे बनता है, लेकिन जो बच्चे प्री टर्म मतलब टाइम से पहले बर्थ हो जाती है उनका पर्दा पूरा बना नहीं होता। जब वो पर्दा पूरा बना नहीं होता तो वो पर्दा बीमार पड़ सकता है और उस बीमारी को ROP कहते हैं। ये प्रीटर्म बेबीज की रेटिना की बीमारी है।
0: ओके, आई होप लिसनर्स आपको समझ आ गया होगा कि ROP क्या है। अच्छा सर, क्या ROP की शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो कैसे मतलब पेरेंट्स को पता लगे, उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं?
1: सबसे बड़ी प्रॉब्लम ROP की बीमारी के साथ ये है कि उसके सिम्टम्स आप बाहर से देख के पकड़ नहीं सकते। पेरेंट्स सिर्फ बच्चे की आंख देख के बाहर से ये नहीं बता सकते कि बच्चे को ROP है या नहीं, और इसीलिए ROP बीमारी को पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर प्रीटर्म बेबी की रेटिना की स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए क्योंकि स्क्रीनिंग ही ऐसा एक मेथड है जिससे ROP है या नहीं ये पता लगाया जा सकता।
0: ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर रोहन जी, अगर ROP के समय रहते ही पहचान हो जाए तो क्या इसका इलाज संभव है और किस तरीके से किया जा सकता है ROP का?
1: ROP आता है अंडर प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, मतलब वो बीमारियां जो प्रिवेंट करी जा सकती हैं अगर टाइम पे डिटेक्ट हो जाए। तो डेफिनेटली अगर टाइम पे इसका डिटेक्शन हो, जो एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग के टाइम पे होता है, तो ये बीमारी से बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बट सबसे जरूरी है टाइम पे स्क्रीनिंग हो और अगर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। ट्रीटमेंट इसका बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स में होता है जिसमें इंजेक्शन, लेजर और सर्जरी, ये तीनों में से कुछ भी यूज करा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेज है बीमारी।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए मुझे, अगर ROP की समय पर जांच या इलाज ना हो पाए तो सिचुएशन में क्या खतरा मतलब हो सकता है?
1: अगर ROP ट्रीट नहीं करी गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है और यूजुअली ये बीमारी दोनों आंखों में होती है। तो इसलिए अगर बच्चे को ROP की बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे नहीं हुआ तो बच्चा दोनों आंखों से ब्लाइंड हो सकता है और एक स्टेज के बाद वो बीमारी ट्रीट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इसको टाइम पे डिटेक्ट करना और ट्रीट करना जरूरी है।
0: ओके, तो ROP की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है?
1: ROP की स्क्रीनिंग सबसे जरूरी है उन बेबीज में जिनका वजन मतलब बर्थ वेट 2 किलो से कम हो, या वो बेबीज जिनका बर्थ

0: 34 वीक से पहले हुआ।
1: okay.
0: अगर कोई बच्चा जिसका बर्थ से 2 kg से ज्यादा हो या 34 वीक्स से बाद पैदा हुआ हो लेकिन उसको आईसीयू में भर्ती रखना पड़ा हो, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिली हो, उसकी छाती में सिम्टम्स या इन्फेक्शन रहे हो, तो भी आरओपी की स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए।
1: ओके okay, ठीक है। सो लिसनर्स, देखिए बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, अगर आपका भी इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें एक मैसेज करेंगे। बहुत सिंपल, हमारा नंबर है 9837896896 पे आप हमें अपने क्वेश्चंस अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम डेफिनेटली सर के साथ बैठ के उसे डिस्कस करेंगे। आप हमें अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं, और बाकी ही ऐसे ही अभी जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी आपको मिलेंगे वापस।

0: वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं आनंद के साथ। और आज का विषय बहुत खास है दोस्तों, आज वर्ल्ड रिटिना डे है। हर साल ये बनाया जाता है 27 सितंबर को, और इसी पर आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम डॉक्टर रोहन कपूर जी से। हमारे साथ स्टूडियो में है सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से, और बीच बीच में तमाम सारे एक्सपर्ट आते हैं और आपकी आंखों के विषय में हम तमाम सारी बातें करते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ कॉमन बीमारीज हमें और आपको पता थी, लेकिन अब जब से सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हमारे साथ आ रहे हैं तब से बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो मुझे पता लगी और मेरे साथ साथ पूरे मुरादाबाद को पता लग रही है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के, थैंक यू सो मच। आपके एक्सपर्ट सच में बहुत रोशनी फैला रहे हैं। एंड अभी आगे बढ़ेंगे डॉक्टर रोहन कपूर जी, अभी हम आरओपी पे बात कर रहे थे आपके साथ। तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को तो ये चीज पता नहीं लग पाती होगी, बट आप कैसे उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं?
1: कुछ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होती है जो हर पीडियाट्रिशियन और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट फॉलो करता है आरओपी बच्चों के लिए। वो स्क्रीनिंग गाइडलाइन जो है वो है कि कोई भी बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 किलो से कम हो या जिसका बर्थ 34 वीक से पहले हो गया हो, ऐसे सब बच्चों को पीडियाट्रिशियन यूजुअली सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट रेफर करते हैं हमारे पास आरओपी स्क्रीनिंग के लिए। अगर कोई बच्चा जिसका बर्थ वेट 2 किलो से ज्यादा हो या उसका जेस्टेशन मतलब पैदा होने की एज 34 वीक से ज्यादा हो, लेकिन उसको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला हो, आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट चला हो, इन्फेक्शन हुए हो, उनको भी ये पीडियाट्रिशियन हमारे पे रेफर करते हैं फॉर आरओपी स्क्रीनिंग। जब हम आरओपी स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें हम बच्चे की आंख में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उनके पर्दे को देखा जाता है, देखने के लिए कि क्या उनका पर्दा पूरा बना है या नहीं, और अगर नहीं बना है तो क्या वो आरओपी की बीमारी से ग्रस्त है या नहीं, और अगर वो ग्रस्त होता है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये यूजुअली प्रोसीजर पेनलेस होता है, बच्चे को कोई पेन नहीं होता है, बट पूरे प्रोसीजर में 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है।
0: ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में आरओपी के मुख्य कारण क्या होते हैं, जैसे मतलब अगर आप इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहें हमारे लिसनर्स को।
1: सबसे मेन कारण तो प्रीमेच्योरिटी ही है। प्रीमेच्योरिटी के साथ लो बर्थ वेट, जिसका बर्थ वेट कम है वो एक मेजर कारण है। इसके अलावा जिन बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी ज्यादा मिलती है क्योंकि उनको जरूरत होती है, वो भी आरओपी को प्रमोट कर सकता है। ऑक्सीजन से ही जिंदगी है, ऑक्सीजन इसलिए दी जाती है जिससे कि बच्चे की लाइफ बनी रहे, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसमें से एक आरओपी है। इसके अलावा बहुत सारे शरीर के इन्फेक्शन, स्पेशली जो लंग को इन्वॉल्व करते हैं या जो इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों की, वो भी आरओपी को प्रमोट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का कम होना भी एक कारण देखा गया है, और इसलिए बच्चों का हीमोग्लोबिन 12 से यूजुअली ऊपर रखने का प्रमोशन किया जाता है। ये कुछ और रीजंस हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ।
0: ओके, सो डॉक्टर रोहन कपूर के साथ ढेर सारी बातचीत है और ये बातचीत जारी रहेगी। अभी हम मिलेंगे थोड़ी सी देर में, एक छोटा सा इसमें म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए बहुत जरूरी है, और बातचीत चल रही है बच्चों की, तो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चे वाला गाने मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पर छोटू सा गाना है, उसके बाद जल्दी से वापस आना है, तो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो, अभी लौट कर आते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। यहाँ पर आपकी काम की बातें होती हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ। और आज हमारे बीच में डॉक्टर रोहन कपूर जी स्टूडियो में मौजूद हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से। सर से आज हम आरओपी के बारे में ढेर सारी डिस्कशंस कर रहे थे। सर, इसी बीच में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने प्री मेच्योर बच्चों की बात करी, तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स वैसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इस केस में आप कैसे मतलब उनके पेरेंट्स को यू नो समझाते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं, क्या वो अलाउ कर देते हैं इस केस में? क्योंकि या फिर इतने सारे लोगों को देख के कहना कि पेरेंट्स पैनिक तो होते ही होंगे, डेफिनेटली उनमें हो जाती है भाई, पूछताछ भी करते होंगे, तो कैसे आप उनको मतलब यू नो ये करते हो पूरा मैनेज?
1: इसमें एक बहुत बड़ा रोल पीडियाट्रिशियन का है।
0: ओके।
1: हमारे मुरादाबाद के पीडियाट्रिशियंस और आसपास के एरिया के पीडियाट्रिशियंस बहुत वेल अवेयर है आरोपी के बारे में।
0: ऑलराइट।
1: तो बहुत बार वो ही पेरेंट्स को बता देते हैं कि आरोपी की स्क्रीनिंग जरूरी है और जरूर जाके करवाइए। जब पीडियाट्रिशियन बोलता है तो पेरेंट को समझ में आता है कि हाँ ये जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि फ्रेश वॉक इन, मतलब पेशेंट्स को कहीं आसपास से पता लगा कि ये बीमारी होती है और उनका बच्चा प्रीटर्म होता है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं बोलने कि ये बच्चा प्रीटर्म हुआ है, हमारे को पता लगा इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर जब उनको बताते हैं कि ये बीमारी क्या है, प्रिवेंटेबल है, नहीं ट्रीट करी तो इसमें ब्लाइंडनेस है, तो वो बच्चे की स्क्रीनिंग टाइम पे कराते हैं और अगर जरूरी होता है तो ट्रीटमेंट भी टाइम पे कराते हैं।
0: ओके, तो मतलब आपकी टीम वहां जाती है या फिर बच्चे को आप अपने हॉस्पिटल बुलाते हैं?
1: हमने एक बहुत वेल डेडिकेटेड टीम बना रखी है।
0: ओके।
1: जो हमारी आरओपी एक्सपर्ट टीम है। इस समय हम मुरादाबाद और उसके आसपास के 6 और डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बहजोई, संभल, ये सारे इन्वॉल्व हैं। ये हमारी एक टीम जो है एक स्पेशल फंडस कैमरा, एक रेटिना का इमेज लेने का डिवाइस होता है, वो कैरी करती है। और हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है बहुत सारे आईसीयू के साथ, बच्चों के आईसीयू के साथ, पीडियाट्रिशियंस के साथ। उन सब पीडियाट्रिशियंस के सेंटर पे हम जाते हैं, वहां पे हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किन बच्चों को आरओपी है, और अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनमें आरओपी होता है तो हम उनको अपने सेंटर बुलाते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। ऐसे भी केसेस जहां पे वो बच्चे बहुत सिक होते हैं, एडमिटेड होते हैं और वो रेफर नहीं हो पाते हैं, तो हम एक्चुअली में जा के भी उन आईसीयू में इन बच्चों को ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। इस टाइम पे हमारा एक्सपेंशन का प्लान है और हम चाहेंगे कि आसपास के और एरियाज हम कवर करें, जिससे कि हम इस आसपास के एरिया को और अपने शहर को आरओपी से एटलीस्ट रिलीफ दे पाए।
0: ओके, बहुत बढ़िया। सर, जैसे हर साल 27 सितंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वर्ल्ड रूटीना डे, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करने का दिन है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का दिवस है ये। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी, तो दोस्तों बहुत सारी बातें आज हमने करी है डॉक्टर रोहन कपूर से। और सर, आपका जो ये मिशन है, इसे देखने के बाद, सुनने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो बढ़िया और ग्रेटफुल आप कर रहे हैं। एंड चलते चलते तमाम मुरादाबादीज आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं आई नो इस टाइम पे, बहुत सारे लिसनर्स हमारे सुन ही रहे हैं, तो आप क्या एक मैसेज कन्वे करोगे पूरे मुरादाबाद के नाम हमारे स्टूडियो से लाइव?
1: आई थिंक हम इस मिशन को नाम दे चुके हैं 30 दिन रोशनी के।
0: अरे वाह,
1: जैसे कि ये पता लगे सबको कि हर बच्चे की स्क्रीनिंग उसके बर्थ के विद इन 30 डेज हो जानी चाहिए, स्पेशली जो बच्चा प्रीटर्म है और लो बर्थ वेट वाला है। ये स्क्रीनिंग के लिए हमारी टीम बहुत मेथड, बहुत ही मेहनत से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है और स्क्रीन कर रही है, और जहां भी हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसे आरओपी होता है, उसे हम अपने सेंटर पे ट्रीट कर रहे हैं। हमारे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में इस टाइम पे आरओपी के ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो हम यूज करके इस शहर को आरओपी से रिलीफ देना चाहते हैं। तो मैं बस ये बताना चाहूंगा सबको कि वो याद रखें कि बच्चों की रोशनी को हम बचा सकते हैं और हमें वो काम बच्चे के पैदा होने के विद इन 30 डेज शुरू कर देना चाहिए।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने दिया सर, और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी। हाँ जी, तो डॉक्टर रोहन कपूर जी हमारे स्टूडियो में हैं और जितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने जानकारियां दी, उतने खूबसूरत वो भी हैं। ऋतिक रोशन के कजन नजर आ रहे हैं मुझे, मैं इनको देख पा रहा हूँ। सर, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए हमारे मुरादाबादी, इसको ये कोई बर्शिंग नहीं है, एक्चुअली जो मुझे फील हुआ मैंने आपको बता दिया। लाइटों से भी सुंदर आपकी स्किन है, क्या है आपकी खूबसूरती का राज, पहले यही बता दो आप।
1: मैं मुरादाबाद का ही लड़का हूँ।
0: अरे वाह, सच में। वैसे मैं सबसे पूछ लेता हूँ ये आप कहाँ से हो, लेकिन आज आपसे नहीं पूछा, पता नहीं क्यों, फीलिंग ही नहीं आई अंदर से, शायद आप लोकलिटी से ही हो।
1: हाँ, मैं लोकलिटी हूँ। मैं मुरादाबाद का ही जन्मा हूँ 1994 में। यहीं का मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्कूलिंग के बाद जो है लुधियाना चला गया था। मैंने कृष्ण मेडिकल कॉलेज लुधियाना से MBBS करा, वहीं से मैंने उसके बाद MS करा, मास्टर्स करा। 10 ईयर्स लुधियाना में रहा मैं MBBS और MS करने के लिए। उसके बाद मैं LV प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद गया, वहाँ मैंने 3 साल काम करा, फेलोशिप करी, जिसमें मैंने रेटिना सर्जरीज में एक्सपर्टीज ली. और उसके बाद अब मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट वापस आया हूँ, अपने शहर वापस आया हूँ इस शहर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. जो मैंने सीखा, जो हमने गेन करा, अब वो टाइम है कि हम उससे लोगों का भला करें.
0: दैट्स वेरी ग्रेट. करंटली तो जहाँ वर्किंग है वहाँ के बारे में बताइए थोड़ा सा आप.
1: मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में वर्क करता हूँ. हमारे पास यहाँ पे रेटिना डिपार्टमेंट है जिसमें हम 3 डॉक्टर्स हैं. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सीएल गुप्ता में, जिसमें से एक मेजर डिपार्टमेंट रेटिना डिपार्टमेंट है. और इस समय पर्दे से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. हम चाहेंगे कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो आंखों से संबंधित, और अगर उसमें वो पर्दे से संबंधित है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और हम we'll be very happy to provide them with very good services.
0: That's very nice. Thank you so much. Lovely talking to you, sir. Thank you so much for coming. बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी. और लिसनर्स आप सिर्फ ये सुन नहीं सकते हैं, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं. मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन है वो आप देख सकते हैं सीएल गुप्ता का इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब चैनल है उनकी लिंक मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे शेयर करता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे भी. तो फटाफट हमें फॉलो कीजिए और वहाँ जाके सारे वीडियोज और जो भी कॉन्वर्सेशन वो आप देख सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा शायद वो ऋतिक रोशन के कजन तो नहीं है, वो आप देख सकते हो वीडियो में आके. सो प्लीज जल्दी से फॉलो कीजिए एफएम मुरादाबाद की. इंस्टा हैंडल है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से. और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ. फटाफट जाओ फॉलो करो और अभी के लिए ऐसे ही सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. डॉक्टर रोहन जी जाते जाते आप एक गाना तो बता दो अपनी पसंद का जो आप मुरादाबाद को डेडिकेट करना चाहते हो. इतनी सारी कॉन्वर्सेशन होगी, एक गाना आपका पसंद का. फाइनली बातों बातों में जो है अब हमें जाने का हमारा समय हो गया और डॉक्टर रोहन जी ने अपनी पसंद का गाना भी ढूंढ लिया है. वो उन्होंने मुझे बता दिया है चुपके से मेरे कान में कि भाई नहीं, मैं उनकी आवाज में. जी सर प्लीज बता दें आप.
1: इतनी बार ऋतिक रोशन का नाम आ गया है.
0: देखिए मुझे ऋतिक रोशन ने पैसे नहीं दिए थे बट फिर भी मैंने कर दिया. कोई बात नहीं, आप प्लीज बताएं गाना.
1: फिर तो ऋतिक रोशन का गाना ही बनता है. एंड आई थिंक लकी अली का गाना है एक पल का जीना.
0: ये बिल्कुल उन्हीं का गाना है और एक पल का जीना. और गाने में एक मीनिंग भी है, थॉट भी, और गाना भी बहुत अच्छा है. और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाना छोड़ के हम जा रहे हैं अपने लिसनर्स के लिए. सब डांस करेंगे इस गाने पे. वेल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत अच्छा लगा. एफएम मुरादाबाद आपको थैंक यू करता है. लवली मीटिंग यू सर. थैंक यू गाइस आपके लिए.

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और आज फिर से की वुमेन राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर वुमेन को पता होना बहुत जरूरी है। महिलाएं सिर्फ परिवार के जिम्मेदारी नहीं संभालती, बल्कि समाज और देश के निर्माण में भी उनकी उतनी ही बड़ी भूमिका है। लेकिन अपने अधिकारों की जानकारी होना उतनी ही जरूरी है जितना अपने सपना देखा हो। कानून महिलाओं को कई ऐसे अधिकार देता है जो उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का हक दिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे हक क्या महिलाओं को पता है उनके राइट्स के बारे में? तो इन्हीं राइट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ कनेक्ट हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा सर। तो हम इनसे ही विमेन राइट्स के बारे में जान लेते हैं, महिलाओं के अधिकार कौन से अधिकार हर महिला को जरूर पता होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानून की मदद कैसे ले सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी। वैसे आप काफी टाइम के बाद फिर से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जरा।
5: देखिए, मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके स्टूडियो में आने का, और जो आपका शो है लीगल टॉक, ये अच्छी अच्छी आप जो है लीगल जो है जानकारी हमारे ऑडियंस को, जो कम्युनिटी हमारे लिसनर्स हैं रेडियो के, उनको आप देते हो। लेकिन पिछले 2 वीक से मैं नहीं आ पा रहा था, कुछ थोड़ा सा कहीं मेरे को कुछ प्रायोरिटी के कुछ काम थे, तो उसके लिए मैं पहले तो अपने लिसनर से उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे नहीं जुड़ पाया। और जो है आज मैं आपके समक्ष दोबारा से आया हूँ, और मैं एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली आजकल जो हम देखते हैं लेडीज के साथ अक्सर बहुत क्राइम बढ़ गया है, और महिलाओं को जानकारी भी नहीं होती कि हमें किस तरीके से जो है अपने जो है हितों का ध्यान रखना है या लीगल जो उनके राइट्स हैं उसके बारे में। तो आज हम वुमेन्स राइट्स के ऊपर एक टॉपिक हमारा है, उसको लेकर चाहेंगे कि रीना हमसे उस विषय में बात करें।
1: जी बिल्कुल सर, मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ कि सर जब भी मौका मिले तो आए, और सर को जैसे मौका मिलता है वो आ जाते हैं हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, आप सभी के साथ बातें करने के लिए। क्योंकि देखिए, अक्सर हमें अच्छी अगर गाइडनेस का पता होगा, किस चीज के बारे में पता होगा, तभी हम डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, महिलाओं के लिए सबसे जरूरी कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं?
5: देखिए, महिलाओं के लिए जो ज्यादातर आपने सुना ही होगा कि आजकल जो घटनाएं होती है उनके साथ में घर में मारपीट है, या शादी के बाद जो है डॉरी से रिलेटेड है, या जो है उनको संपत्ति में हिस्सा है, भरण पोषण है, मेंटेनेंस है। तो बेसिकली महिलाओं को घरेलू हिंसा में से सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण, स्त्री धन संपत्ति भरण पोषण, कार्यस्थल पर जहाँ पे आप वो वर्क कर रही है वहाँ पे हैरेसमेंट की बहुत घटनाएं सुनने में आती है, और साइबर अपराधों से संबंधित जो भी उनके राइट्स हैं उनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए।
1: साथ ही साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा क्या है?
5: देखिए, जब एक महिला घर में रहती है तो उसके साथ कभी ऐसा होता है कि घर में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मारपीट होती है, तो केवल घरेलू हिंसा जो होती है केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अगर उसके साथ जो है कोई जो है मौखिक या उसको इमोशनल भी किसी तरीके का, या कोई फाइनेंशियल उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या कोई फिजिकल भी कोई उसको जो है मोलेस्टेशन कुछ अगर उसको हर्ट कर रहा है, या उसके इमोशंस को, उसको फीलिंग्स को, तो वो भी एक घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है।
1: क्या केवल मारपीट को ही घरेलू हिंसा माना जाता है सर?
5: नहीं देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, मारपीट कोई घरेलू हिंसा में नहीं गिन सकते। अगर लगातार जो है घर में किसी महिला को अपमानित किया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, आर्थिक रूप से उसे नियंत्रित करना या अन्य किसी प्रकार का व्यवहार भी परिस्थितियों के अनुसार कानूनी संरक्षण का आधार बन सकता है, तो ये सारी परिस्थितियां भी घरेलू हिंसा के दायरे में आती।
1: मानसिक प्रताड़ना होने पर महिला क्या कर सकती है?
5: देखिए, अगर किसी महिला को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो सबसे पहले तो ये कि उसको घटनाओं को क्रम में रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि कौन सी घटना किस दिन हुई। फिर अगर उसको एविडेंस कुछ मिल जाता है, उसको एविडेंस को सुरक्षित रखे वो, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार जो ऐसे पुलिस है या प्रोटेक्शन ऑफिसर है या महिला हेल्पलाइन है या न्यायालय से वो हेल्प मांग सकती है। अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है या महिला को लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुला सकती है।
1: और सर, जिसके पास फोन ना हो, उसे घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए, तो फिर कैसे कर सकते?
5: भाई देखिए, आपको अपने जो अड़ोसी पड़ोसी है उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप जो है पुलिस को सूचित करवाइए, तभी आपको हेल्प मिल पाएगी।
1: और कभी कभी ऐसा भी होता है ना सर, घर में ही धमकी दे दिया जाता है।
5: देखिए, आजकल ये जो घटनाएं ये बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, है ना। घर में परिवार में जो आपसी मनमुटाव की वजह से महिलाओं के साथ जो एक शोषण की वारदात जो हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे महिला को भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। या ऐसा कोई उसको अपना कोई नंबर उसको ऐसा एक नोट करके रखना चाहिए, जैसे अपना कोई घर का नंबर है या किसी फ्रेंड का नंबर है, पुलिस के नंबर पे आप तुरंत 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई कानूनी मदद मांगते हैं, तो हमारे जो जुडिशरी में जो महिला को वुमेन्स राइट्स जो उसको प्राप्त हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस तुरंत उस केसेस में हेल्प करती है।
1: आर्थिक प्रताड़ना क्या होता है सर?
5: देखिए, आर्थिक का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। जैसे कोई फाइनेंशियल अगर कोई आपको किसी तरीके से, उदाहरण के लिए अगर महिला की आय या उससे अधिक आर्थिक संसाधनों पे कोई अनुचित उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, या उसको जरूरी खर्चा कोई, जैसे भाई हस्बैंड की शादी होती है तो उसका दायित्व बनता है कि वो घर पे जो अपनी पत्नी का बच्चों का पालन पोषण करे, अगर उसको वो खर्चा नहीं दे रहा है या उसको रहने में खाने को पहनने को कपड़े नहीं दे रहा है, तो ये भी एक तरीके से आर्थिक रूप से जो एक निर्भर है उसके ऊपर महिला जो है अपने हस्बैंड के अपने पति के ऊपर, तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना का शोषण के रूप में ऐसे माना जा सकता है। तो ये भी एक आर्थिक प्रताड़ना होती है, तो इसे आर्थिक एब्यूज भी कह सकते हैं हम लोग।
1: सर, जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात होना, इस क्वेश्चन पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दहेज की मांग होने पर महिला क्या करे, क्योंकि ऐसा बहुत से घरों में देखा भी जाता है अभी भी।
5: देखिए, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। और अगर दहेज की कोई मांग करी जा रही है, प्रताड़ना करी जा रही है दहेज से रिलेटेड, तो आप पहले तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, परिस्थितियों के अनुसार पुलिस में शिकायत करिए, या उपलब्ध जो भी आपके पास कानूनी जो आपके पास राइट्स हैं उसको आप जो है फॉलो करिए। और जो है सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलूंगा कि दहेज ना ले ना दे, क्योंकि दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमारे समाज को दहेज मुक्त समाज बनाना है, आप बिल्कुल एक आदर्श विवाह करिए जिसमें जो है दहेज का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, बस यही मैं समझाना चाहूंगा।
1: क्या अभी भी है ऐसा सर कि जहाँ पे दहेज ना दिया जाता हो?
5: देखिए, अभी भी प्रचलन है, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली केसेस आते हैं, दहेज का आरोप तो देखिए लगता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हो जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, इस वजह से भी मोस्टली केसेस आते हैं कि लोग दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे लीगल राइट्स एक महिला को भी मिले हुए हैं, तो उसमें एक छोटी छोटी बात का जो एक कहते हैं कि बतंगड़ बन जाता है, छोटी छोटी जो बातों का बड़ा रूप हो जाता है। और उसमें क्या होता है, कानून जैसे महिला को अधिकार मिले हुए, तो महिला उस अधिकारों के तहत वो अपने पति और परिवार वालों पे दहेज का केस दर्ज करा देती है। लेकिन अगर हम कई केसेस जैसे हमारे पास आते हैं, अगर हम उसमें काउंसलिंग भी करते हैं, पहले हम कोशिश यही करते हैं कि घर बस जाए, क्योंकि देखिए घर जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, टूटने को 2 मिनट में आप तोड़ सकते हो। मेरे पास भी कई केसेस ऐसे आते हैं, तो हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं दोनों पक्षों की, हस्बैंड की भी करते हैं और वाइफ की भी उसके करते हैं, लड़की पक्ष की भी करते हैं। तो उसमें जो मुद्दे असल में निकल के आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे मोबाइल की वजह से लोगों में झगड़े आजकल बढ़ गए हैं। फिर जो है सबसे बड़ी चीज है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, ठीक है। फिर कहीं जगह हमें आर्थिक तंगी को लेके भी मुद्दे मिले हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन असल वजह कुछ और होती है। और उसको एक क्योंकि लीगल राइट मिला हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि जो लड़की होती है या महिला पक्ष होता है, वो जो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाना शुरू कर देता है। तो मैं यही बोलूंगा कि कानून अगर आपको दिया गया है, आपके हित के लिए दिया गया है, हितों की रक्षा के लिए दिया गया है, उस कानून को आप कवच बना के उसका मिसयूज ना करें, एटलीस्ट कम से कम।
1: बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है,
5: बहुत मिसयूज हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दहेज कानून बना हुआ है, इसको एक लीगल टेररिज्म की भी संज्ञा दे दी है। मतलब एक वर्ड लीगल टेररिज्म तक यूज करा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप सोच सकते हैं कि घर टूटने का कारण कुछ और होता है और उसको आजकल मुकदमों की इतनी बाढ़ आई पड़ी है, असल वजह जो कुछ और होती है, लेकिन वो उसको एक, क्योंकि कानूनों का ऐसा मिसयूज भी कई बार हमें देखने को मिला है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई भी बात है, अगर आपका रिश्ता बच सकता है तो आप कम से कम उसको काउंसलिंग के थ्रू या थोड़ा अपने परिवार जनों के थ्रू बैठ के उसको मैटर को रिजॉल्व करिए। जो आपको कानून दिए गए हैं वो वास्तव में पीड़ित लोगों के लिए दिए गए हैं, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि कुछ लोग सिर्फ इस चीज को मिसयूज करके सामने वाले पक्ष पे दबाव बनाने का काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
1: क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर चीज पक्ष लड़कियों की तरफ है, महिलाओं के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि जो पक्ष है उनकी तरफ, तो उसमें जो लड़के हैं तो उनकी भी मुझे लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए सर।
5: बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, कई बार हमने देखा है कि अगर आपको कानून दिए हैं एक पीड़ित के लिए दिए, जब कानून बने थे तो उस टाइम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, सब चीजें

0: लेकिन आज की डेट में महिला बहुत स्वावलंबी हो गई है, सेल्फ डिपेंड हो गई है।
1: जी
0: ठीक है, लेकिन अगर आपको कानून एक दिए गए हैं तो कानून वास्तव में एक पीड़ित के लिए दिया गया, आप उसको कम से कम उस जो आपको राइट दिया गया उसका मिसयूज ना करें, मैं यही बोलूंगा। और जो है पुरुष के लिए तो देखिए कानून हमारे जो है इतना मेंटेनेंस वगैरह का पुरुष के लिए भी अब थोड़ा सा जुडिशरी में हो गया कि अगर महिला कमा रही है और पुरुष अगर असक्षम है, हैंडीकैप्ड है, नहीं कमा पा रहा, तो वो भी अपनी वाइफ से क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस।
1: ओके,
0: तो फिलहाल ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि देखिए असल वजह कुछ और होती है और लीगल जो टर्म्स में अगर हम जो कानून बने हुए हैं अगर उसको हम देखेंगे तो आजकल लोग बहुत मिसयूज करने लग गए हैं।
1: करेक्ट, ये तो है सर।
0: तो कई बार जो है परिवार टूटने का कारण ये भी होता है, हो सकता है आपका परिवार बच जाए, लेकिन आप सबसे पहले असल चीज जो असल वजह है उसको आप जानिए। हाँ, आपको अगर कानून दिए गए हैं, आपको सरकार ने या जुडिशरी ने आपके लिए कोई कानून दिए हैं, तो आप उसका एटलीस्ट मिसयूज ना करें। और अगर वास्तव में आप पीड़ित हैं तो आपको जरूर कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, स्त्री धन क्या होता है?
0: देखिए, जब एक लड़की शादी होके परिवार में दूसरे परिवार में जाती है तो उसको जो उपहार उसकी माँ की तरफ से, उसके मायके वालों की तरफ से, या जो उसको ससुराल की तरफ से जो भी उसे गिफ्ट ज्वेलरी जो भी दी जाती है उसको हम स्त्री धन बोलते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। तो महिला की शादी से पहले, शादी के बाद में मिले जितने भी उपहार हैं, आभूषण है, संपत्ति है, उन सबको हम स्त्री धन बोलते हैं और उसका स्वामित्व जो है महिला को, अधिकार उसको मिल जाता है, ये उसी का होता है ये।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये राइट है उसका। अगर उसको गिफ्ट दिए गए हैं उसके परिवार की तरफ से या ससुराल की तरफ से, तो वो उसका राइट है, वो उसका है, वो स्त्री धन बोलते हैं।
1: मतलब वो बोल सकती है कि मेरा है।
0: हाँ, मेरा है नहीं, है ही उसका।
1: ओके,
0: ये अधिकार है।
1: ओके सर, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा, स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो क्या कर सकते हैं उसने?
0: देखिए, अगर स्त्री धन वापस नहीं किया जा रहा है तो पहले आप गहनों और सामान की सूची, बिल, फोटो, बैंक रिकॉर्ड और अन एविडेंस जितने भी सुरक्षित रखें वो सारा रिकॉर्ड लेके आप एक कानूनी नोटिस दीजिए या पुलिस में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या न्यायालय के माध्यम से आप जो है मुकदमा भी पंजीकृत करा।
1: सर आपने पुलिस की ही नाम ली है तो मेरा अगला क्वेश्चन भी यही है, पुलिस फायर दर्ज ना करे तो क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको पुलिस के उच्च अधिकारी है, सबसे पहले आपको चौकी को सूचित करना चाहिए, चौकी इंचार्ज अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आप एसएचओ को, थाने को संपर्क करें, थाने अगर थाना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई नहीं करता तो आप उससे नेक्स्ट सीओ जो सर्किल ऑफिसर है उस जोन का वो आप संपर्क करें, अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप एसपी सिटी या एसएसपी के माध्यम से भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या महिला अकेले पुलिस स्टेशन जा सकती है?
0: जी बिल्कुल जा सकती है, महिला स्वयं शिकायत दे सकती है, जरूरत पड़ने पे वह परिवार के किसी सदस्य, अधिवक्ता या सहायता संगठन की भी मदद ले सकती है, ये उसका अधिकार है।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है?
0: जी बिल्कुल मांग सकती है, कानून में निर्धारित परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है, जो भी अमाउंट है और जो भी उसका राइट है, मामलों के तथ्यों को, दोनों पक्षों को की आर्थिक स्थिति को सुनने के बाद और उसको देखने के बाद जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय जो ऑर्डर देगा दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा।
1: सर हमारा अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस तय करते समय क्या देखा जा सकता है?
0: देखिए मेंटेनेंस तय करते समय दोनों की जो है जीवन स्तर देखा जाता है, उनकी दोनों की इनकम देखी जाती है, उनकी परिस्थितियां देखी जाती है और एक जजमेंट 2020 में या 21 में शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दी थी, रजनीश वर्सेस नेहा, एक गाइडलाइंस एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि दोनों पक्षों की इनकम देखी जाएगी, उसके आधार पे दोनों पक्षों को अपना बैंक का 3 साल का ITR, ठीक है, उनके बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब देनी होगी, उसको दोनों पक्षों को देखने के बाद, दोनों पक्षों की इनकम प्रूफ देखने के बाद ही कोर्ट संज्ञान लेके उसका डिसाइड करेगा कि कितनी मेंटेनेंस देनी है या नहीं देनी है, वो दोनों पक्षों की इनकम देख के ही होता है। क्योंकि अधिकतर हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं, जैसे हम अगर हम मेंटेनेंस का केस देखते हैं कि हस्बैंड की आमदनी तो कम है और जो है पत्नी क्लेम कर रही है जो है लाखों में
1: जी,
0: तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया पिटीशन में, आपने कुछ भी मांग लिया वो कोर्ट से मिल जाएगा आपको। कोर्ट दोनों पक्षों का एविडेंस देख के, उसका आधार देख के, उसका जो क्या बेस है उसका, उसका इनकम प्रूफ देख के ही आगे डिसीजन लेती है। कई बार हमने ये भी देखा है, ऐसे भी केसेस आते हैं कि पत्नी की बहुत अच्छी जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है,
1: जी जी जी,
0: ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में आके बिल्कुल जो है क्लीन हैंड दिखा देगी अपने आप को और मेंटेनेंस मांगती है, तो ये गलत है, ये ये कोर्ट का कानून का खोल उड़ाने वाली बात होती है। अगर कोर्ट के संज्ञान में आ गया तो कोर्ट आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती है। इसलिए आपको कोई भी झूठा एफिडेविट कोर्ट में फाइल नहीं करना चाहिए। आपकी जो इनकम है आपको वही शो करनी चाहिए। और अगर आप इस तरीके से कोर्ट में अनक्लीन हैंड दिखा के अपने आप को जो है प्रेजेंट करेंगे तो ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, मैंने महिलाओं के केस में देखा है, अगर उनका कोई आपसी पारिवारिक विवाद हो जाता है हस्बैंड से तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अधिवक्ता के माध्यम से जो है वो कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि भाई हमारे इतने खर्चे हैं, ये हमें दिलाया जाए, वो दिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बिना चीजों को संज्ञान लिए या बिना चीजों को देखे ऐसे डिक्लेयर कर देता है। तो उस चीजों से भी बचना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी जुडिशरी जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। और खास तौर पर न्यायालय में ये जो मैट्रिमोनियल केसेस है, पारिवारिक विवाद है, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको जो हमारा न्यायालय भी है वो बहुत गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे लोग क्या करते हैं, वो केसेस एफआईआर लिखा देते हैं, दहेज की लिखा दी, मेंटेनेंस की लिखा दी। फिर लड़के वाले पक्ष की तरफ से भी कई बार क्रॉस एफआईआर भी हमने देखने को मिली है। तो न्यायालयों पे एक बहुत ज्यादा केसेस का भार है। तो निश्चित तौर पे अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि हर केस को मॉनिटर करके, और स्पेशली जो है मैट्रिमोनियल केसेस को बहुत कमतर से जांच हो रही है उसमें।
1: सर, अभी आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी है, जिस महिला की गवर्नमेंट जॉब होती है, तो मेरा इसी पे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए उस महिला का पति ही पढ़ा रहा है उसको, फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो बहुत से आपने केसेस देखे भी होंगे और आते भी है,
0: सोशल मीडिया पे भी आया था,
1: हाँ, कि तलाक दे देती है फिर बाद में, तो इसके लिए भी कार्रवाई की जाती है?
0: देखिए, तलाक तो देखिए दोनों पक्षों का आपस का एक म्यूचुअल रिकनसाइल का मैटर है। अगर उनको लगता है कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो आप म्यूचुअली भी अलग हो सकते हो। कोर्ट अगर आपके साथ क्रुएल्टी हुई है तो आप कोर्ट में सिद्ध करो, प्रूफ करो कि भाई मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो है वही गवर्नमेंट जॉब है महिला की और हस्बैंड ने उसको पढ़ाया है और गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो देखिए कोर्ट को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि आपने जो है गवर्नमेंट जॉब उसकी लग गई और आप किसने पढ़ाया और क्या। कोर्ट बेसिकली जो आपने प्रेयर करी है, जो आपने रिक्वेस्ट करी है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष, उस प्रेयर के अकॉर्डिंग वो कोर्ट, उसका डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है कि वो देखती है कि सपोज करिए किसी लेडी ने अपने पति से 2 लाख रुपए की मेंटेनेंस मांगी भरण पोषण के लिए, खर्चे के लिए, अब वो खुद ही 2 लाख रुपए महीने की सैलरी उठा रही है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो ऐसे नहीं मिलता है।
1: अच्छा, नहीं मिलता है,
0: ऐसे नहीं मिलता है। वो कोर्ट प्रॉपर उसको एविडेंस देखेगी, ठीक है, फिर वो खुद भी जॉब कर रही है वो, तो कोर्ट सारी बातों को देखती है। और अगर वो ऐसे केसेस में अगर वो झूठा शपथ पत्र महिला देती है तो उसके विरुद्ध भी कोर्ट संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई जुडिशरी में कोई आपको रिलीफ दिया गया है या कोई आपको फेवर के लिए कोई लॉ दिया गया तो आप उसका मिसयूज ना करें एटलीस्ट।
1: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, तलाक के बाद महिला के क्या अधिकार हो सकते हैं?
0: देखिए, परिस्थिति को अनुसार जो है मेंटेनेंस है, एलिमनी है, बच्चों की कस्टडी है, स्त्री धन है और अन्य वैधानिक राहतों के लिए वो आवेदन कर सकती है। और जो है तलाक के बाद भी अगर देखिए आपकी तलाक की पिटीशन में अगर ये सारी चीजें मेंशन है कि भी दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग रहेंगे और तलाक विवाह विच्छेद होता है और भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और वन टाइम अगर आपका सेटल्ड हुआ है तो देखिए आपका राइट सब वही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: एलिमनी अगर आपने वन टाइम उससे ले ली। लेकिन अगर तलाक आपका हुआ है और उसके बाद भी आपने मेंटेनेंस की मांग की हुई है तो आपका राइट है, जब तक आपकी सेकंड मैरिज नहीं हो जाती या आप कहीं सेटल नहीं होती तो आपका राइट है, आप जो है अपने पति से आप मेंटेनेंस ले सकते।
1: सर, दोनों की अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो तब भी महिला बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे खर्चे तुम उठाओगे तलाक के बाद?
0: देखिए मैंने आपको क्या बताया, आप कोई भी प्रेयर करते हो तो उसके साथ में आपको एविडेंस कोर्ट उससे मंगाती है, आपको बैंक स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपको मेंटेनेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
1: सर, अगला क्वेश्चन है, क्या माँ बच्चे की कस्टडी मांग सकती है?
0: हाँ, बिल्कुल मांग सकती है कस्टडी। कस्टडी का निर्णय केवल माँ या पिता के आधार पर नहीं होता, जो न्यायालय का प्रमुख जो विचार होता है वो बच्चे का वेलफेयर होता है, कि बच्चे का वेलफेयर होना चाहिए और मामले की परिस्थितियों को देख के कोर्ट जो है उसकी कस्टडी मदर या फादर किसी को भी दे सकती है।
1: ओके, बच्चे की कस्टडी में क्या महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, बच्चे की जब कस्टडी मांगी जाती है तो जो कोर्ट देखती है सबसे पहले बच्चे की उम्र देखती है, उसकी जरूरतें देखती है, क्या उसकी नीड्स है, ठीक है, फिर उसकी एजुकेशन है, उसकी सुरक्षा है, उसकी देखभाल है, ओवरऑल जितने भी वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है या जो भी फैक्टर्स है उसको देख के ही कोर्ट आगे अपना डिसीजन दे।
1: क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिलता है?
0: देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत जो कॉपरेंसी प्रॉपर्टी में बेटी को बेटे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, और हालांकि संपत्ति की जो प्रकृति है या जो पुराने जैसे ट्रांसफर जैसे केसेस होते हैं, तथ्य होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ बेटी का और बेटे का बराबर का अधिकार हो।
1: शादी के बाद बेटी का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार खत्म हो सकता है?
0: देखिए, केवल शादी हो जाने से बेटी का वैधानिक संपत्ति अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि संपत्ति किस प्रकार की है और कौन से कानून अधिकार उस पर लागू होते हैं।
1: महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो क्या किया जा सकता है?
0: देखिए, अगर उसको महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको संपत्ति के डॉक्यूमेंट और टाइटल की स्थिति देखनी होगी, उसको क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आप लीगल नोटिस दे सकते हैं, पार्टीशन सूट डाल सकते हैं, या और जो कोई लीगल रेमेडी आपको मिली हुई आप उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकते हैं।
1: विधवा महिला के संपत्ति संबंधी अधिकार क्या है सर?
0: देखिए, विधवा महिला के अधिकार से संबंधित जो है पर्सनल लॉ जो भी होते हैं और संपत्ति की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उत्तराधिकार में अगर उसका हिस्सा है तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स देखकर ही जो भी एक कानूनी स्थिति है वो हम बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे ही सारी चीजें चलती हैं।
1: क्या महिला अपनी संपत्ति की बिल बना सकती है?
0: हाँ, समानता सक्षम व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में कोई भी बिल बना सकता है। उचित तरीके से अगर आप बिल तैयार और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो जरूरी होता है, तो कोई भी आदमी अपनी संपत्ति की बिल बना सकता है।
1: कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न पर क्या कानून है?
0: देखिए, अगर वर्क आपका प्लेस है वहाँ पे अगर हैरेसमेंट का कोई केस आता है तो पॉश एक्ट 2013 अगर बनाया गया है, उसमें अगर कार्यस्थल पे आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप उसके तहत जो है आप जो है शिकायत कर सकते हैं।
1: हमारा अगला क्वेश्चन है सर, POSH का क्या मतलब?
0: हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। POSH जो पॉश एक्ट है उसका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये वर्क प्लेस पे ही किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये कानून उसी के तहत बनाया गया। इसका उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पे महिलाओं को सुरक्षित रखना और उनकी शिकायत को प्रक्रिया को समझ के और एक्शन लेना।
1: ऑफिस में इंटरनल कमेटी नहीं है तो क्या करें?
0: देखिए, संस्था के जो संस्था का जो आकार है ये कह सकते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वॉल्यूम है और जो लागू कानून की रिक्वायरमेंट है, जो भी कानून है उसके अनुसार अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी नहीं है तो उसके लिए आपको एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मतलब पूरा एक आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और संबंधित लोकल कमेटी या सक्षम जो भी अधिकारी के समक्ष उस शिकायत डेस्क एक आपको कंप्लेन डेस्क बनानी पड़ेगी। तो ये जरूरी है ये
1: सर। और ऑफिस की बातें हो रही है तो एक और क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस में अश्लील मैसेज या अनवांटेड एडवांस आए तो क्या करें?
0: देखिए, कई बार में हमने देखा है कि भाई ऑफिस में ही वर्क प्लेस ऐसा होता है, वहाँ लड़के लड़कियां भी काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है मजाक करते हुए वल्गर मैसेज भेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ईमेल है उसको सुरक्षित रखिए, डिलीट करने के बजाय उसको एविडेंस प्रिजर्व करें और जो भी कंप्लेंट मैकेनिज्म है उसका उपयोग करते हुए आप जो उसने भी आपको हैरेस करने की कोशिश करी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें।
1: सर, कई बार व्हाट्सएप पे भी इस तरीके के मैसेज आते हैं
0: जी,
1: तो उस समय क्या करना चाहिए?
0: देखिए, संदेशों को, स्क्रीनशॉट्स को, जो नंबर है, जो चैट डिटेल्स है उसको आप सुरक्षित रखें और जो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो पुलिस को या साइबर क्राइम मैकेनिज्म में आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, निश्चित तौर पे एक्शन होगा।
1: महिला की फोटो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर डाले तो उस समय हम क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपने, बहुत सारे आजकल केसेस आ रहे हैं, आपने सुना हुआ एक वर्ड डीप फेक।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो डीप फेक क्या होता है, लोग क्या करते हैं आपकी फोटो को मिसयूज करके उसका वल्गर कंटेंट बना के और आपको डिफेम करते हैं, आपको जो है बदनाम करते हैं सोशल मीडिया पे। तो परिस्थिति और फोटो की प्रकृति जो है उसके आधार पर अगर प्राइवेसी और क्रिमिनल और साइबर लॉस लागू होते हैं उस पर, तो आप उस एविडेंस को सुरक्षित रखिए और तुरंत कंप्लेंट करिए, तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होगा।
1: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर स्टॉकिंग क्या है?
0: देखिए, किसी व्यक्ति को अगर अनवांटेड आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहे हो बार बार, ठीक है, उसको मॉनिटर कर रहे हो बार बार उसको, या उसको हैरेसमेंट के माध्यम से आप उसको परेशान कर रहे हो, तो ये साइबर स्टॉकिंग में आता है और ये एक तरीके का क्राइम माना जाता है।
1: निजी फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी मिले तो क्या करें, क्योंकि इसकी धमकी बहुत दी जाती है सर।
0: आजकल देखिए बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बहुत साइबर जितने भी क्राइम्स होते हैं कि वो क्या करते हैं आपकी फोटो, निजी फोटो जो हैक कर लेंगे, फिर उसको एडिट करके कुछ उसको ऐसा कंटेंट बना देंगे कि वो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको किसी भी थ्रेट में नहीं आना है, ठीक है। जो पहले कोई भी पैसे ना दे, ना किसी धमकी के दबाव में आए, कोई भी नया कंटेंट ना भेजें, स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल नंबर, मैसेज जितने भी सुरक्षित रखें, और तत्काल उसकी सूचना साइबर क्राइम में या पुलिस कंप्लेंट तुरंत करें।
1: अगर कोई फोन पर धमकी दे रहा हो तो सर?
0: देखिए फोन पर अगर धमकी दे रहा है तो आप पहले कॉल डिटेल पूरी उसकी सुरक्षित रखिए, मैसेज सुरक्षित रखिए, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखिए, और खतरे की गंभीरता के अनुसार पुलिस को तत्काल सूचित।
1: सर एक जो मैसेज आप महिलाओं तक पहुंचाना चाहे, प्यारा सा संदेश जो आप विमेन को देना चाहें?
0: देखिए मैं बस आपसे, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी कानून आपको दिए गए उसके प्रति सजग रहें, और जो है आप खुद भी कानून का पालन करें, है ना। अगर आपके लिए कोई कानून दिए गए हैं तो वास्तव में पीड़ित के लिए हैं, आप पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए कानून है, उसको आप सजग रह के आप उसका जो है हेल्प मांग सकती हैं, लेकिन कानून का मिसयूज ना करें, बस मैं यही बोलूंगा मैं। और क्योंकि देखिए जो सरकार आपके लिए कानून बनाती है, जुडिशरी बनाती है, पीड़ित के लिए बनाती है, लेकिन हम लोग जैसे कोर्ट में देखते हैं मोस्टली जो है छोटी छोटी बातों पे लोग जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में FIR करा देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो है वास्तविक जो जड़ झगड़े की वो जानना चाहिए, है ना। एक जो है हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में छोटी छोटी बातों पे जो आजकल मैं देखता हूँ कि तुरंत दहेज की FIR हो जाती है,
1: जी जी।
0: फिर लड़के पक्ष भी मारपीट की FIR लिखा देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें रिश्तों में कटुता बढ़ती है। अगर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जहाँ बैठ के आप समस्या को सुलझा सकते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल, ये तो सही कहा सर आपने, क्योंकि कोई भी समस्या है अगर हम सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे तो मिल ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए श्रोताओं, हम लेते हैं यहाँ से एक जाने की इजाजत और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी से। आई होप कि जितने भी विमेन्स हमें सुन रही हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला है, क्योंकि आपको राइट्स दिया गया है तो उसका सही तरीके से यूटिलाइज करिए, गलत तरीके से यूटिलाइज मत करिए। और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से, जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला की दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब दूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाहिर सी बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती होगी की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ अधिकारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो इतने भक्ति अब शायद माइंड में रहा होगा, अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से निशानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े सी कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई की किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं। जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है। और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या किस रात सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचंद पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचंद, पेड़ा, कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर।

0: इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
0: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
0: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आज का महिला मंच बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपनी मेहनत से सिर्फ खेल की दुनिया में ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों बेटियों के दिलों में अपनी जगह, अपनी खास जगह बनाई है। एक ऐसी लड़की जिसने छोटी सी उम्र में बैडमिंटन का रैकेट थामा और फिर उस रैकेट को अपनी पहचान बना लिया। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पीवी सिंधु जी की। लेकिन आज हम सिर्फ उनके मेडल नहीं गिनवाएंगे, हम जानेंगे उनकी शुरुआत, उनका स्ट्रगल, उनकी ट्रेनिंग, उनके परिवार का साथ, उनकी जीत और उनकी हार और वो सफर जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल कार्यक्रम और मेरे साथ में यहाँ पर रीना जी भी हैं। हेलो रीना, कैसे हैं आप बताइए इस चिलचिलाती धूप में?
4: मत पूछो।
3: क्यों ना पूछें?
4: गर्मी बहुत है।
3: हाँ यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, तभी ये पानी की बोतल अपने साथ लेकर घूम रही हो तुम। हाँ,
4: अरे पता है क्या, मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है ना तो सर में दर्द होता है,
3: वीकनेस फील होती है।
4: तो वही हालत हो रही है मेरी अभी फिलहाल तो।
3: अच्छा, और ये पानी में आपने क्या क्या डाला है? लेमन है, इसमें पुदीना भी शो कर रहा है। हाँ हाँ हाँ,
4: पुदीना नहीं है।
3: और फिर क्या है ये?
4: ये मेरा सीक्रेट है कुछ।
3: क्या सीक्रेट है भैया, क्या क्या है ये, कौन सा राज छुपा के रखा है इस बॉटल में आपने?
4: अरे इसमें मैंने पुदीने के साथ धनिया की पत्ती डाली हुई है।
3: ओ, पुदीना, धनिया,
4: वेट कम होता है वो,
3: एंड लेमन इस लड़की ने वाटर में डाला हुआ है और ये ड्रिंक ये लेती है, तभी मैं बोलूं कि इसका फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है।
4: हाय,
3: अब समझ में आया मुझे रीजन।
4: पीवी सिंधु का जन्म यानी कि 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। उनके माता पिता भी खेल की दुनिया से जुड़े रहे। उनके पिता पीवी रमना जी और माँ पीवी विजया दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे, तो कह सकते हैं कि सिंधु के घर में खेल का माहौल पहले से ही मौजूद था। लेकिन दोस्तों, परिवार का खेल से जुड़ा होना एक अलग बात है और खुद अपने लिए कोई खेल चुनकर उसमें पहचान बनाना बिल्कुल अलग है। सिंधु जी ने वॉलीबॉल नहीं बल्कि बैडमिंटन को चुना और शायद यही से उनकी कहानी हमें पहली सीख देती है। परिवार आपको हौसला दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ कदम आपको खुद बढ़ाना पड़ता है।
3: एग्जैक्टली रीना, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आज क्या बात है, मैंने सुबह आपको देखा था अपने घर की छत से, आप सुबह सुबह ग्राउंड में बैडमिंटन खेल रही थी।
4: मैं सुबह सुबह तुम्हें दिख कैसे गई बताओ जरा?
3: अरे मत पूछिए,
4: चीखी आंखें हैं तुम्हारी।
3: मेरी नजरें ना सिर्फ तुम पर ही रहती हैं। और वो साथ में कौन लड़की थी जो तुम्हारे साथ खेल रही थी? बड़ा अच्छा खेल रही थी यार तुम दोनों।
4: नहीं, बैडमिंटन मेरे को बहुत पसंद है।
3: पसंद तो है, लेकिन मैंने पूछा है कि साथ में वो लड़की कौन थी, तुमने मुझे नहीं बुलाया और दूसरी लड़की को बुलाया। हाँ बताओ कौन थी वो?
4: मैं इसको बोलती हूँ आने के लिए, लेकिन ये पता क्या बोलती है, हाँ मैं आ जाऊंगी, फिर कहती है नींद बहुत प्यारी है। फिर ये आई नहीं, मैंने कहा चलो किसी और को पकड़ लेते, गली मोहल्ले में लड़कियां थी, मैंने कहा चलो खेल लेते इन्हीं के साथ।
3: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, सुबह सुबह खेलने से हेल्थ भी अच्छी होती है हमारी भी बन। अब जरा सोचिए दोस्तों, 8 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं, मस्ती करते हैं, स्कूल जाते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते हैं। लेकिन सिंधु जी ने लगभग 8 साल की उम्र में बैडमिंटन की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने शुरुआत महबूब अली के मार्गदर्शन में की। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादा बहुत बड़ा था। और दोस्तों, जिंदगी में भी यही बात बहुत मायने रखती है। आज आप कहाँ खड़े हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला अचानक नहीं मिलता, उसकी शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। एक छोटी सी इच्छा, एक छोटा सा फैसला और फिर रोज की मेहनत, सिंधु जी की कहानी भी ऐसी ही एक छोटी शुरुआत से आगे बढ़ी।
4: दोस्तों, सिंधु की कहानी का वो हिस्सा जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए वह रोज लगभग 56 किलोमीटर का सफर तय करती थी। अब सोचिए, इतना लंबा सफर, फिर भी ट्रेनिंग, फिर पढ़ाई और उसके बाद घर वापस आना, कितनी थकान होती होगी। लेकिन जब किसी इंसान को अपने सपने पर भरोसा होता है ना, तो रास्ते की मुश्किलें उसे रोकने के बजाय मजबूत बनाती हैं। आज हम छोटी सी परेशानी देखकर कई बार अपना प्लान बदल देते हैं, या यूं कहूं कि हॉपलेस हो जाते हैं और खुद मन में एक मनगढ़ंत बातें अपना लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरा काम अपनाता हूं। लेकिन सिंधु जी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर सपना दिल से जुड़ा है तो रास्ते की दूरी आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि मंजिल बड़ी हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। और काम कोई भी हो, बस आप डट कर काम करिए। कहते हैं, अगर आपने धूप में चलना सीख लिया तो छांव आपका हमेशा इंतजार कर।
3: 55-56 किलोमीटर का रोज का सफर, जैसे रीना जी ने बताया दोस्तों, सिर्फ एक दूरी नहीं थी दोस्तों, ये सिंधु जी के डिसिप्लिन, उनकी लगन और उनकी मेहनत का हिस्सा था। आज हम कितनी बार कहते हैं, समय नहीं मिल रहा, बहुत थक गई हूं, कल से शुरू करूंगी, लेकिन सिंधु जी की कहानी हमें एक बात समझाती है, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है। और शायद यही होता है असली डिसिप्लिन। मन हो या ना हो, थकान हो या ना हो, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए रोज एक कदम आगे बढ़ना। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई बड़ा सपना है तो खुद से पूछिए, क्योंकि मैं उसके लिए रोज थोड़ा सा भी समय निकाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी सपना देखते हैं ना, और उसे जब हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमारे कोई बहाना नहीं चलता है। उस टाइम पे बस हमारे मन में लगन होती है कुछ कर दिखाने की। तो हम एवरी डे नया स्टेप लेते हैं, धीरे धीरे आगे मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है कि असली सफलता तभी मिलती है जब इंसान स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहता है।
4: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि कोई भी काम करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, आपको कामयाबी

0: जरूर मिलती है। और फिर सिंधु की बैडमिंटन जर्नी आगे बढ़ी और वह पुलेला गोपी चंद्र बैडमिंटन एकेडमी से जुड़ी। यहाँ उनकी ट्रेनिंग और ज्यादा प्रोफेशनल हुई। और फिर खेलना नहीं था, अब मुकाबले की तैयारी करनी थी। फिटनेस, प्रैक्टिस, टेक्निक और लगातार खुद को बेहतर बनाना। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता है। टैलेंट के साथ ट्रेनिंग, सही मार्गदर्शन और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। और सिंधु ने इसी मेहनत को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाया और छोटी उम्र से शुरू हुआ सफर अब धीरे धीरे बड़े मुकाबले की तरफ बढ़ रहा था।
1: अब हम भी बढ़ लेते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने,
1: क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा लाइफ है ना, म्यूजिकल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, तभी जीवन में आनंद आता है। तो चलिए सुनते हैं एक शानदार सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बहुत ही शानदार गाना अभी आपने सुना। एवरीवन, आप सभी का वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला मंच और आज हम बात कर रहे हैं पीवी सिंधु जी की, डिसिप्लिन की ताकत। दोस्तों, सिंधु जी की कहानी में अगर एक शब्द बार बार दिखाई देता है ना, तो वो है डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता, कभी मन करता है मेहनत करने का, कभी बिल्कुल नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी काम करने के लिए तैयार करता है जब आपका मन ना कर रहा हो। यही बात सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, हम सबके ऊपर भी लागू होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या अपना बिजनेस कर रहे हैं, या घर संभाल रही हैं, तो रोज की छोटी छोटी कोशिश ही आगे जाकर बड़ा परिणाम देती है। सिंधु जी की कहानी हमें बताती है एवरीवन, एक दिन की मेहनत आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन लगातार मेहनत आपकी पहचान बन सकती है।
1: और साथ ही साथ इसकी शुरुआत भी होती है फैमिली का साथ।
0: एग्जैक्टली,
1: किसी भी लड़की के सपने में परिवार का साथ बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। सिंधु के माता पिता ने भी उनकी बैडमिंटन जर्नी में उनका साथ दिया। सोचिए, अब उनकी बेटी छोटी हो और वो कहे कि मुझे खेल में आगे बढ़ना है, तो उनके लिए सिर्फ रैकेट खरीदना ही काफी नहीं होता, उनके साथ समय देना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी हार में उसे संभालना पड़ता है और जीत में जमीन से जुड़े रहना सिखाना पड़ता है। अगर आपकी बेटी कोई सपना देखती है, तो क्या आप उसके सपने को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कभी कभी एक परिवार का भरोसा ही किसी लड़की की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: बिल्कुल रीना, देखिए, जब परिवार साथ होता है ना, तो लड़की को एक अलग ही हौसला मिल जाता है। और वो आजकल आपको, आप तो पता ही है, आपको भी पता है, और बेटियां हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जमाना साथ दे या ना दे, लेकिन परिवार साथ होता है ना, तो लड़की हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं बेटियों के सपनों की। दोस्तों, आज महिला मंच में एक बात दिल से कहना चाहूंगी, हर बेटी का सपना जरूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सरकारी नौकरी ही हो। किसी का सपना खिलाड़ी बनना हो सकता है, किसी का सिंगर, किसी का आर्ट्स, और किसी का बिजनेस करना, और किसी का अपना छोटा सा काम शुरू करना। सफलता का रास्ता हर लड़की के लिए अलग हो सकता है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि उसे अपने सपनों को समझने और उसके लिए मेहनत करने का मौका मिले। सिंधु जी ने भी वही किया, उन्होंने अपना रास्ता चुना, उस रास्ते पर मेहनत की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। इसीलिए बेटियों को सिर्फ सपने देखने की नहीं, सपनों के लिए मेहनत करने की भी हिम्मत दीजिए।
1: कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, धीरे धीरे रंग दिखता है उसका। आप ये सोचेंगे कि आज मैं ये काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे परिणाम उसका कल ही मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी लगन बताती है कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ उस काम को फोकस होकर करते हैं। और फिर सिंधु जी की मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। कम उम्र में ही उन्होंने अलग अलग जूनियर प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। यहाँ से उनकी पहचान सिर्फ एक उभरती हुई खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में बनने लगी जिसमें आगे जाकर देश के लिए कुछ बड़ा करने की क्षमता थी। लेकिन दोस्तों, शुरुआती सफर के बाद भी उनका सफर आसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आपका रास्ता ऊपर जाता है, वैसे वैसे मुकाबला भी कठिन हो जाता है। और यही जिंदगी का नियम है, पहली सफलता के बाद असली चुनौती आपका इंतजार कर रही होती है। इसीलिए सिंधु की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी है। और फिर वो दौर आया 2016 रियो ओलंपिक। पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स बैडमिंटन में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। सोचिए, एक भारतीय महिला खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक पर खड़ी है और उसके साथ देश के लिए जीता हुआ मेडल है। ये सिर्फ सिंधु की जीत नहीं थी, ये उन तमाम लड़कियों के लिए भी एक खूबसूरत संदेश था जो खेल में अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उस मेडल के पीछे सिर्फ एक शानदार मैच नहीं था, उसके पीछे थी सालों की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, त्याग और मेहनत। तभी तो आपको परिणाम भी आपके आगे होता है।
0: जब हम किसी खिलाड़ी को मेडल के साथ देखते हैं, तो हमें सिर्फ जीत दिखाई देती है, है ना।
1: लेकिन
0: हमें वो सुबह दिखाई नहीं देती जब उसे जल्दी उठकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो थकान दिखाई नहीं देती, वो हार दिखाई नहीं देती, वो दिन दिखाई नहीं देता जब शायद मन भी टूटा होगा, लेकिन फिर भी खिलाड़ी अगली सुबह कोर्ट पर वापस आते हैं। यही फर्क होता है दोस्तों, सक्सेस सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि बार बार कोशिश करते रहने का नाम भी है। सिंधु जी के मेडल को अगर हम सिर्फ एक मेडल समझेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, उस मेडल के पीछे एक पूरी जिंदगी की मेहनत है। हार का सामना, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, हार। जी हाँ दोस्तों, कई बार खिलाड़ी हर मैच नहीं जीतता, हर टूर्नामेंट में मेडल नहीं मिलता, हर कोशिश का रिजल्ट हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हार का मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। हार कई बार हमें बताती है कि हमें कहाँ और मेहनत करनी है। सिंधु जी की जर्नी भी जीत और हार दोनों से होकर गुजरी है और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सबके दिलों को छूती है, क्योंकि असली जर्नी में सिर्फ जीत ही नहीं होती, गिरना भी होता है और फिर उठना भी होता है।
1: और फिर उनकी सफर शुरू होती है 2018। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स का सिल्वर मेडल जीता और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रही। एशियन गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, यानी रियो ओलंपिक के बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत को रुकने नहीं दिया और यही बात बहुत खास है। कई बार पहली बड़ी सफलता मिलने के बाद इंसान सोचता है अब तो मैंने कर लिया, लेकिन असली चैलेंज होता है उस सफलता के बाद भी खुद को उसी मेहनत और फोकस के साथ आगे बढ़ जाना। सिंधु जी ने यही किया। अक्सर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आपको एक जीत के बाद अपनी मेहनत को वहीं नहीं रोक देना चाहिए, बल्कि आप चाहते हैं कि परिणाम और भी अच्छा रहे तो आपको उसके लिए मेहनत तो डेली ही करनी पड़ेगी। फिर वो आया साल 2019, वर्ल्ड चैंपियन। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा पड़ाव था, क्योंकि वह अब सिर्फ ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं थी बल्कि दुनिया के चैंपियन भी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक बात ध्यान देने वाली है, रियो का सिल्वर उन्होंने एक दिन में ही नहीं लिया था और 2019 का गोल्ड भी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं था। हर जीत के पीछे सालों की प्रैक्टिस होती है, इसीलिए अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी कम मत समझिए, कोशिश करिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक महिला जब अपने करियर में आगे बढ़ती है तो कई बार उससे जुड़े सवाल भी बढ़ जाते हैं, करियर कब तक, परिवार कब, शादी कब, इतनी मेहनत क्यों, ये सब सवाल उठने लग जाते हैं। लेकिन क्या एक महिला के सपनों को भी अपनी कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती? हर महिला के जिंदगी का रास्ता अलग है। किसी के लिए करियर सबसे जरूरी हो सकता है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए दोनों के बीच की संतुलन और किसी के लिए कोई बिल्कुल अलग सपना। महत्वपूर्ण ये है कि महिला को अपने जीवन के फैसलों में अपनी आवाज सुनाई दे। सिंधु की कहानी भी हमें यही याद दिलाती है कि महिला को अपने पहचान बनाने का पूरा हक है। और हक के साथ हम कहेंगे कि म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार गाने के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: एवरीवन नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक की। अब आते हैं साल 2021 पर, जब टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ। पीवी सिंधु जी ने महिला सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीन की है किंग जियाओ को हराया और इस जीत के साथ सिंधु दो अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रियो में सिल्वर, टोक्यो में ब्रॉन्ज, दो ओलंपिक मेडल और भारत की खेल इतिहास में एक खास जगह। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये उस लगातार मेहनत की कहानी है जिसने उन्हें एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक तक मजबूत बनाए रखा। दोस्तों एक ओलंपिक मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन दो अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीतना, ये लगातार अच्छे प्रदर्शन, तैयारी और मानसिक मजबूती की कहानी भी है। रियो में सिल्वर जीतने के बाद सिंधु जी के ऊपर उम्मीदों का दबाव भी था, लोग उनसे फिर मेडल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद के बीच टोक्यो में फिर पोडियम तक पहुंचकर दिखाया कि सफलता सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, कभी कभी असली चुनौती होती है। एक बार सफल होने के बाद खुद को फिर से साबित करना, और सिंधु जी ने ये कर दिखाया।
1: वो तभी कर दिखाया जब उनका मेहनत उनके साथ और वो मेहनत करती रही। अब हम बात करते हैं सक्सेस की आदत। दोस्तों सिंधु जी की जर्नी को देखकर एक बात समझ आती है, सक्सेस कोई जादू नहीं है, सक्सेस कोई छोटी आदत का नतीजा नहीं होता। समय पर उठना, ट्रेनिंग करना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, हार से सीखना और अपने लक्ष्य से जुड़े रहना। हम अक्सर बड़ी सफलता देखकर कहते हैं वाह कितना टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के पीछे जो रोज का डिसिप्लिन है उसे भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ मोटिवेशन मत खोजिए, अपनी अच्छी आदतों को मजबूत रखिए। क्योंकि सिंधु की कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए, हम सबका सपना ओलंपिक मेडल जीतना नहीं होता। किसी महिला का सपना हो सकता है अपनी पूरी पढ़ाई करना, किसी का सपना अपना छोटा बिजनेस शुरू करना, किसी का सपना नौकरी में आगे बढ़ना, किसी का सपना फिर से गाना सीखना, किसी का सपना अपने लिए थोड़ा समय निकालना। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने लिए कितना मायने रखता है ये जरूरी है। और अगर कोई सपना अभी भी आपके दिल में है तो शायद उसे एक बार फिर से मौका देने का उसको वक्त दीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सपना है तो सिर्फ इसलिए उसे छोड़ मत दीजिए कि रास्ता मुश्किल है। मुश्किल रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता, कभी कभी वही रास्ता हमें मजबूत बनाता है। पीवी सिंधु ने भी छोटी उम्र में शुरुआत की, रोज सफर किया, ट्रेनिंग की, हार का सामना किया, फिर जीत हासिल की और धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन गई। इसीलिए बेटियों से सिर्फ ये मत कहिए कि तुम क्या बनोगी, कभी उनसे ये भी पूछिए तुम क्या करना चाहती हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा।
0: कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ये कैंचियां तुम्हें नहीं काट सकती क्योंकि तुम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। आज के महिला मंच में हमने पीवी सिंधु जी की कहानी की जरिए एक पूरी जर्नी को महसूस किया। एक छोटी बच्ची से शुरुआत, बैडमिंटन से प्यार, 56 किलोमीटर का सफर, कड़ी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, हार और जीत, रियो का सिल्वर, 2019 का वर्ल्ड चैंपियन खिताब और टोक्यो का ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ उनके मेडल नहीं है, उनकी कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक संदेश है। सपना देखना मत छोड़िए, मेहनत करना मत छोड़िए और मुश्किलों की वजह से खुद पर भरोसा करना मत छोड़िए। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं महिला मंच एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज का ये खास सफर समर्पित है उस महिला और हर उस छोटी बेटी को जिसके दिल में कोई सपना है। बस एक बात याद रखिए, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, पहला कदम आज भी उठाया जा सकता है। कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, पहला कदम आज भी उठाया जा सकता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। अपना ख्याल रखिए और आप अपने सपनों की ओर भी बढ़ते रहिए। नमस्कार।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा, खाऊंगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। बट वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इनवाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
5: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
4: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
5: बहुत अमेजिंग,
4: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
5: डिफरेंट एरा।
4: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
5: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, अ न्यू थिंग, समथिंग न्यू थिंग इज।
4: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
5: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
4: हाँ जी
5: वो अक्यूट में आता है।
4: ओके।
5: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है जो कि 12 हफ्ते, तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
4: ओके।
5: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं वो हम करते हैं।
4: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
5: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल। तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, बी 12 डेफिशिएंसी होना। तो इन सारी अब आते हैं, इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द, ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइट बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा, जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है, तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है, थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
4: ओके मैम, ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
5: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन हो गया है, तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं, वो देने के बाद में हम आते हैं जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है, कैनाल डायमीटर, उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा, ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया, आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी, आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता, वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
4: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
5: बिल्कुल भी नहीं है
4: ये आपने बहुत अच्छा में दूर किया है।
5: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं, आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा, तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं, जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं, तो ये इसका इलाज है।
4: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
5: बिल्कुल,
4: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है, तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
5: बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
4: जी,
5: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई वो सर मेरे दिमाग पे आया, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको, क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं, ब्रेन में क्या हो रहा है ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
4: जी जी
5: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
4: ओके
5: ऐसे
4: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
5: डेफिनेटली,
4: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
5: बिल्कुल, क्या होता है कि हम हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, जेन अल्फा है,
4: बीटा है,
5: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है,
4: correct.
5: तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली।

0: पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलेंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है।
1: प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है, पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुँच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बार लाल किले से खेलों के लिए प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आने वाले त्योहारों को लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाएंगे। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट सहित कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों की लागत लगभग 214 करोड़ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, सीवेज और ड्रेनेज से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।
2: बादली विधानसभा में भी लगभग 160 करोड़ के काम चल रहे हैं। रिठाला में हमारे 328 करोड़ के काम संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं। 609 करोड़ के काम मात्र मुंडका में चल रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के चुनाव आयोग और देश के चुनावी प्रक्रिया पर आरोपों का खंडन किया है। राजधानी में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मंशा जनता को गुमराह करना और देश में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोगों का ध्यान देश और दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों और विपक्ष की अपनी नाकामियों से हटकर अनावश्यक विवादों की ओर चला जाए।
4: देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। आज वो लोग बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था?
0: मुख्यमंत्री ने फॉर्म 6 पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल फॉर्म में बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया से संबंधित घोषणा को अलग से जोड़ा गया है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट BLA को चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों BLO के साथ समन्वय कर पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करने के निर्देश दिए। श्री मल्होत्रा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसलों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह तथ्यों के आधार पर चर्चा चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने आज 501 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। महापौर प्रवेश वाही ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कर्मचारियों के वर्षों के परिश्रम और सेवा को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर ने बताया कि इससे पहले निगम ने 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं के लिए जागरूक करता रहेगा।
5: अशोक जी का

0: जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी सनातन संस्कृति के प्रखर संवाहक, हिंदू समाज के संगठन और जागरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें नमन किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे।
2: कृषि और किसान कल्याण विभाग रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर विमर्श करेंगे। पहले दिन आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, स्थिरता और जलवायु अनुकूल कृषि तथा डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा होगी। दूसरे दिन क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त प्रमुख सीखों और पहले दिन की चर्चाओं के परिणामों पर विमर्श होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
1: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। इससे पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं के मामले में नीति जारी करने, दावों का निपटारा, निगरानी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सकेगी। पोर्टल पर जानकारी हिंदी और अंग्रेजी के साथ 11 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। इससे पशुपालकों को उनकी अपनी भाषाओं में जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 560 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया। मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए पुलिस थानों में विशेष टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने द्वारका जिला मॉनिटरिंग सेल के साथ मिलकर लगातार काम किया। पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए तकनीकी जांच, फील्ड वेरिफिकेशन और अन्य राज्यों के पुलिस के साथ समन्वय किया। वहीं द्वारका जिला पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 2000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने आज कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के अंतर्गत जिला स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा उन्हें नशा और अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना था। इस प्रतियोगिता में महिला कबड्डी टीम ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान मनजीत छिल्लर ने खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा कर प्रेरित किया। साथ ही प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता बद्रा ने महिलाओं 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पदक तालिका में चीन 118 स्वर्ण समेत 204 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि पर्यटन अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विविधता में एकता का प्रतीक भारत और पधारो म्हारे देश की भावना से परिपूर्ण राजस्थान आज विश्वभर के पर्यटकों की पहली पसंद है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं के इस पहल को जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते। भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
4: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
6: हर लेन देन अब है आसान।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है। किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है।
4: बिल्कुल मैम।
3: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर, ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का। और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
4: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
3: बीच में भी हम देखते हैं,
4: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट। तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है।
3: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
4: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है। मैम
3: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे। माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीक से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं। माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया। पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
4: बिल्कुल, डॉक्टर निदा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निदा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं, तो क्या ये करना चाहिए या फिर
3: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना दर्द चला गया,
4: काम पे
3: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी, वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है।
4: करेक्ट।
3: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है।
4: ठीक है।
3: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
4: तो मतलब ऐसे
3: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना, कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे, और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
4: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज दर्द को लेके, हम काफी सारे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेनुइनली?
3: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
4: ऑलराइट,
3: ठीक है।
4: अच्छा,
3: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
4: ओके,
3: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है, तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
4: ओके,
3: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
4: ओके,
3: हॉट फर्मेंटेशन,
4: मतलब कोई और फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
3: बिल्कुल नहीं है।
4: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
3: बिल्कुल,
4: है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
3: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं,
4: बीमारी को ढूंढते हैं। एग्जैक्टली,
3: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो हॉलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
4: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
3: बिल्कुल,
4: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है? मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है।
3: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
4: ठीक है,
3: ठीक है, ठीक है। और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
4: ओके,
3: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
4: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
3: बिल्कुल है,
4: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
3: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
4: ठीक है,
3: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
4: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली? क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
3: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन, आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
4: ठीक है
3: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि 3 महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
4: ठीक है,
3: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
4: ठीक है, ओके मैम। मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
3: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें
4: जी।
3: अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा।
4: बिल्कुल,
3: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ।
4: बिल्कुल
3: ऐसा ही है
4: मैम, एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
3: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
4: बिल्कुल मैम सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है वो पूरा मोबाइल में घुसा होता है,
3: बिल्कुल।
4: तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
3: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है, ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं या फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
4: बिल्कुल,
3: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
4: फोन,
3: हाँ, अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता। या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो चॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है।
4: बिल्कुल,
3: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है।
4: ओके,
3: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
4: ओके, सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं।
3: बिल्कुल, दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
4: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
3: AI
4: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
3: नहीं, सर दर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा।
4: बिल्कुल,
3: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन, आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क

0: करे, मैं यही बोलूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत। मैम थैंक यू,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच। और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
4: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
3: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान, एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahisewa.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज की शाम और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हो भाई?
6: बढ़िया, एक नंबर।
5: क्या बात है, एक नंबर तो आप हो ही, नो डाउट यार। और अजीम जब भी आते हैं कुछ कुछ स्पेशल लेकर आता है, एंड आई एम श्योर आज की शाम भी कुछ खूबसूरत चीजें लेकर आएगा हमारे दोस्तों के लिए। तो अजीम, ये बताओ रेडियो पे आके कैसे लग रहे हैं अब जब आए हो?
6: मजा आ रहा है।
5: क्या बात है, बहुत
6: ही डरी रहूं, लेकिन बढ़िया, मजा आ रहा है।
5: वेरी नाइस यार, लेकिन डरना मत भाई। देखो, जो मेरे साथ बैठते हैं उन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी देता हूँ। पता नहीं चलता है कि कब हमने इंटरव्यू करके एंड भी कर दिया,
6: ये तो
5: है ना। एंड आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा
6: बहुत ज्यादा।
5: तो यार, आज की शाम जो है हम कुछ बेहतरीन सा सुनना चाहेंगे अपने दोस्तों के नाम, अपने लिसनर्स के नाम। आप क्या सुनाना चाहोगे?
6: स्टार्टिंग में तारीफ की करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वीक जो सुनाया था वो सूर्य स्टार्टिंग की सैडनेस।
5: मुझे लगता है कि यार, तारीफ अगर हो जाए तो फिर मजा आ जाए। हाँ, चार चांद बन जाए। हाँ, है ना, चार चांद तो लग जाएंगे।
6: करो ना अपने महबूब की किस तरीके से।
5: हाँ, क्या बात है, महबूब की तारीफ, वाह।
6: पता है मुझे, पहले कुछ था पर अब अहमक हूँ मैं,
5: वाह।
6: पर तू नहीं, तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो? तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम। सिफाते हुस्न से बहरावार हो तुम।
5: क्या बात है, वेरी नाइस है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। गाइस, ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अभी इसके साथ करनी है, आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए आरजी आनंद के साथ। एक से गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं मोहम्मद अजीम के साथ। अजीम, वेलकम बैक है वंस अगेन FM मुरादाबाद के स्टूडियो में मेरे भाई। अब बताओ, अब क्या सुना रहे हो? अभी तो तुमने तारीफ कर दी, बहुत मजा आया तुम्हारी तारीफ सुन के, मुझे भी और मेरे लिसनर्स को भी, आई एम श्योर उनको भी अच्छा ही लगा होगा। तो अब जरा कुछ बेहतरीन सुना दो यार।
6: हाँ, क्यों नहीं, उसके बाद आप एक पोएट्री है अपनी महफिल में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी महफिल में उसके अफसाने बयां करना चाहते हैं, तो उसपे लिखी थी, मुसलसल चलता रहेगा एक आदिम सफर।
5: वाह,
6: मुसलसल चलता रहेगा एक आदिम सफर, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे। मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, और एतबार करना, और एतबार करना, हमारी महफिल में तुम्हारे ही अफसाने बयां होंगे।
5: उर्दू इतनी गजब की है तुम्हारी, इतनी धाकड़ आपने बोला है, मतलब मजा आ गया, बेहतरीन। कोई हिंदी वाली भी सुना दे यार।
6: हाँ हाँ, बहुत हैं।
5: हाँ, तो कुछ बढ़िया से सुना दे। आज अजीम जो है अपनी डायरियों के पन्नों की आवाज आपको सुना रहे, तो छका छक पलट रहा है वो, और उसमें से कुछ बेहतरीन ताजा ताजा फ्रेश कॉन्टेंट आपको दे रहा है। हाँ अजीम,
6: एक शायरी है, अब मोहब्बत से कह रहे हैं कि दगा उसने की थी, तो उस पर लिखी थी, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं।
5: वाह,
6: मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
5: याद करो,
6: दगा करते हम भी तुम्हारी तरह तो क्या कह पाते, तभी हम शायर हैं। मोहब्बत तुम भी करो किसी से और वो करे किसी और से, बैठो तुम भी किसी महफिल में हमारी तरह और सुनाओ अपनी शायरी और कहो, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं, मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
5: क्या बात है यार, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अच्छा असीम, एक बात बताओ, ये जो शेर व शायरी है ये कहाँ से निकलती है? कुछ लोग कहते हैं गजलों से शायरी बनी है, कुछ लोग कहते हैं टूटे दिल से शायरी बनी है, तुम्हारा क्या मानना है?
6: शायरी अपने आप आती है।
5: अच्छा, गजलों से भी मैंने सुना है कुछ निकलती है।
6: ये जितने भी, जैसा आपने उन्हें सुना होगा, नुसरत फतेह अली खान,
5: नुसरत साहब को, उनके गानों में
6: उनकी कुछ नहीं होता, मतलब जहां तक मुझे पता है, मैं माफी चाहता हूँ अगर कुछ बोल रहा हूँ गलत, तो वो भी एक पोएट से ही पोएट्री सारी लिखी जाती है, शायरी लिखी जाती है, वो भी उसे बस पढ़ते हैं,
5: उनका तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का,
6: वो भी पोएट की ही कुछ लिखा हुआ होता है जो वो पढ़ते हैं।
5: ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, जो नज्म होती है उसमें और शेर व शायरी में कितना डिफरेंस होता है?
6: बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत।
5: ओके ओके ओके, तुम्हें कोई नज्म याद है?
6: नहीं फिलहाल तो मेरे को।
5: ओके ओके ओके, मतलब अभी तुम सिर्फ शायरो शायरी और पोइट्रीज में तुम ज्यादा रहते हो एक्टिव। कोई पोइट्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
6: हाँ है, ये उस पे है जैसे कि मैंने लिखी थी, मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या। मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या, ना बीड़ी ना सिगरेट ना नशा शराब का है। ना बीड़ी ना सिगरेट ना नशा शराब का है, मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है। मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है, और वैसे भी उसकी आंखें किसी शराब से कम थोड़ी हैं। हमें शराब ही कहो मगर शराब का नहीं, उसकी आंख का कहो ना।
5: क्या बात है, क्या बात है अजीम, वेरी वेरी वंडरफुल यार। ऐसी अजीम की शेरो शायरी आप तक पहुंचती रहेंगी। एक काम करेंगे, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्दी से लौट कर आए। यार अजीम, बहुत अच्छी शेरो शायरी कर रहे हो, बहुत अच्छी पोइट्री कर रहे हो, लेकिन मेरे एक दिल की ख्वाहिश है उस पर कुछ सुना दो। तो जैसे आपको पता है ना, आजकल लोग बड़ी धोखेबाजी करते हैं, है ना, दिल लगी बहुत करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग। प्यार करते तो है लेकिन बाद में पता चलता है वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम पास था, है ना, अट्रैक्शन था। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, सामने वाले ने आपसे दिल से मोहब्बत कर ली है लेकिन जब उसे पता चल रहा है कि नहीं ये तो टाइम पास था, ये तो उसके साथ में एक शातिर वाला गेम हो गया है ना, एक शतरंज वाली चाल हो गई, तो इसपे आप क्या कहना चाहोगे।
6: है एक शायरी उस पे है कि जैसे आपको टाइपिंग करते भी होता है ना, चैट पे धोखा देता होता है एक तरीके से, उसपे मैंने शायरी लिखी थी। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही बेचैन क्यों हो, मैं बताता हूँ तुझे वजह तुम हो। तू पूछ तो सही मैं कैसे हूँ तुम्हारी बेचैनी की वजह, मैं बताता हूँ तुझे। तेरा बात ना करना खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे, खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे।
5: क्या बात है, वेरी नाइस है, बहुत ही बढ़िया। अजीम तुम बहुत सारे ओपन माइक्स में जाते हो, बहुत सारे जो पोएट्री शोज होते हैं वहां जाते हो, तो कभी कोई ऐसा तुम्हारे साथ सीन हुआ है जो तुम्हारे दिल की बहुत अच्छी पोएट्री या शायरी रही और तुम वहां गए माइक पे तुम भूल गए हो, ऐसा हुआ है कभी?
6: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम एक बार हो चुका था।
5: हुआ था वैसे,
6: नोएडा शो में गया था।
5: अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हो वैसे वो ओपन माइक्स पे?
6: जहाँ जो बुला ले आप, खासकर ओपन माइक्स आपके पास आए हैं।
5: हाँ नहीं, मतलब तो आप मुरादाबाद में ओपन माइक्स में ढूंढते हो या आसपास के लोकेशंस में भी जाते हो? बरेली वगैरह
6: हाँ, जा सकता हूँ मैं।
5: अच्छा हाँ। मतलब जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ आदमी पहुंच ही जाता है, मेन बात तो ये है। तो फैमिली वगैरह का क्या सपोर्ट रहता है, उनको पता है कि तुम्हारा ये अंदर से एक वाइब है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा पैशन है?
6: हाँ पता है उन्हें, फर्स्ट शो में तो मैंने भाई से ही पैसे लिए थे जाने के खर्चे के लिए, बट इतना वो नहीं है कि उन्हें लगता है कि पैसा ही आए तभी ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, मुझे 3 साल से कर रहा हूँ मैं भी, बट मुझे बीएससी भी करनी थी साथ साथ, क्योंकि उसमें बैक आती उस चीज से कर रहा हूँ, बस ये भी एक पैशन है कर रहा हूँ।
5: वेरी नाइस। तो अच्छा, इसमें फ्यूचर बनाने का प्लान कर रहे हो आगे?
6: हाँ सोच तो रहा हूँ कि इसमें निकल जाऊँ तो ज्यादा।
5: क्या स्कोप है वैसे यार?
6: हाँ
5: क्या स्कोप है इसमें, फ्यूचर क्या रहता है
6: इसमें? एक तरीके से देखा जाए तो आदमी कामयाब मरने के बाद ही है, क्योंकि शायर की शायरी मरने के बाद ज्यादा फेमस होती है।
5: क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। लेकिन ये चीज हम चाहेंगे कि तुम जो कामयाबी है ना वो ऐसी हासिल करो जैसे अखिल भैया ने एंट्री मार के करी है अभी, इसीलिए तो उनको हवा हवाई कहते हैं हम। वे आगे बढ़ेंगे, वो बीच में कभी भी आ जाते हैं, और जब जो बिन बुलाए नहीं आते हैं, जिनको इस रिस्पेक्ट के इज्जत के साथ बुलाए जाते हैं वो हवा हवाई होते हैं। और अभी आए हैं तो एक दो शायरी इनसे भी सुनेंगे, मगर इनको थोड़ा वक्त देंगे, अभी लैपटॉप निकालेंगे और अपने दिल के जज्बात उस पर सर्च करेंगे, फिर आपके सामने उनको पेश करेंगे। लेकिन हेलो भाई तो सुन लेते हैं। हाय अखिल भाई, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, कैसे हो आनंद?
5: बिल्कुल बढ़िया। आपने जो ये धक्का मार के गेट खोला है ना, इसकी बेइज्जती हुई आज, एक बार नॉक नॉक तो कर ही लेते यार।
2: आजकल ना बिना धक्का मारे कोई काम नहीं होते, ये सच्चाई है।
5: जो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, 3 बार ताली ठोके, वही वाला मैंने इनके लिए कर दिया है। खैर अखिल भाई, ये अजीम जी हैं और ये अमरोहा से बिलोंग करते हैं, और इनके आसपास में कोई एरिया पड़ता है जहाँ से ये है पर्टिकुलर?
2: जोया।
5: हाँ जोया के आसपास में ही है शायद, एक और इसके आगे भी कुछ है इनका एरिया, और ये बहुत अच्छा पोएट्री वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया लिखते हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं।
2: कब से आपको पोएट्री का शौक है?
6: ये तो मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ,
5: मैं वही इससे पूछ रहा था
6: अभी। हाँ पर्टिकुलर टाइम से लिखना चलो, बहुत टाइम से लिखना चालू करता, पढ़ता था चीजों को, देखता था, अपने आप आती थी, बट लिखना जो स्टार्ट करा वो लाइब्रेरी जाने वक्त से लिख रहा, मतलब लगभग 3 साल हो गए लिखना तब से स्टार्ट करा, जब दोस्तों को सुनाई चीजें, उन्होंने अच्छा कहा कि हाँ सही लिख रहा है तू जा, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, लिखना चाहिए, और तो मैंने और अच्छी चीजें लिखी, टाइम दिया इसे भी थोड़ा, तो मुझे पसंद आया।
5: अच्छा आप अखिल भाई के सामने क्या सुनाना चाहोगे, कोई बढ़िया सी अपने दिल की, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, कोई शायरी या पोएट्री?
6: हाँ है ना, किसी की तस्वीर होती है ना कि उसकी तस्वीर, तो उस पे शायरी लिखी थी। कुछ बीते लम्हे कुछ बीते बातें याद करता हूँ, कुछ बीते लम्हे कुछ बीती बातें याद करता हूँ, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, पर मैं आज भी तेरी तस्वीर तकता हूँ और घुट घुट के मरता हूँ, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, मैं उसे आज भी अपने दिल में रखता हूँ।
5: वेरी नाइस है अखिल भाई, क्या कहना चाहोगे आप ये बताइए।
2: मैं अपने पर्स में एक तस्वीर ढूंढ रहा था,
5: हाँ वो तस्वीर मेरे पर्स में गलती से आ गई, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो अभी अखिल भाई आप भी कुछ सुनाओगे ऐसी अच्छी सी चटपटी शायरी?
2: क्या क्या चाहते हो आप, मेरे से कुछ सुनना चाहते हो?
5: हाँ हाँ, बस ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें थोड़ी सी हंसी आ जाए आपसे, मुझे यही एक्सपेक्ट है। मतलब अच्छी बात है, एक माहौल बना हुआ है, मतलब पूरा शायराना माहौल बन रहा है। और अजीम बहुत अच्छी अच्छी शेर व शायरी करता है, इतना बढ़िया लिखता है, इसकी राइटिंग देखो, मुझे लगता है इसे तो बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। हमारे गौरव से नहीं बोला अभी इसको ये बात?
2: नहीं नहीं, बॉलीवुड में जाएंगे, जरूर जाएंगे, और मुरादाबाद का नाम भी जो है हमारा एक बार फिर से बॉलीवुड में फिर चमकेगा। और कमाल की बात यह है कि आप जहाँ से, ये अमरोहा से हैं, तो कमल अमरोही,
5: अरे वाह क्या बात है,
2: तो उनके उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडियो बनाया था, तो बहुत ही, आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा।
5: तो ऐसे बहुत सारे जाने माने नाम हैं जो अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और हम मुरादाबाद की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बात अलग है। और हमें ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे लगे अपने शहर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है,
2: क्यों
5: नहीं, क्यों ना ऐसा हो कि मुंबई की सेलिब्रिटीज को मुरादाबाद में इंटरव्यू क्यों बुलाया जाए,
2: क्यों नहीं, आपने तो बुलाया भी है, आपने तो इंस्टाग्राम पे करा भी है,
5: ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके इरादे मजबूत हो तो, क्यों,
2: बिल्कुल सही।
5: खैर, हमारा जो सेशन है वो इरादों और पॉजिटिविटी से भरा नहीं, आज दिल की शेर शायरी से भरा हुआ है, तो कुछ कहना चाहोगे?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मैंने आपकी कंडीशन सुनी तो उसमें आप कह रहे थे कुछ फनी सा हो जाए, तो उस पे सुना दूं?
5: अरे बिल्कुल यार, बस इतना फनी हो कि हम लोगों को हंसी आए, बाहर वालों को ना आए। खैर,
6: उस पे तो रखा था मैंने भी फूल अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लॉकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, रखा था फूल मैंने भी अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लॉकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, तुम एक बार हाँ तो करो, तुम एक बार हाँ तो करो, अपनी महफिल में पौवा बंटवा दूंगा मैं तुम्हारे नाम का।
5: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं फिलहाल पानी बंटवाना चाहता हूँ, गर्मियाँ बहुत ज्यादा हैं, तो आप पानी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और एक गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस हैं। वेलकम बैक, ही वंस अगेन अखिल जी हैं, साथ में मोहम्मद अजीम हमारे साथ ढेर सारी बातें कर रहे हैं, और मैं हूँ आपके साथ आरजी आनंद। पिछली बार जब अजीम आए थे तो उसने बहुत अच्छी अच्छी आपको पोएट्री सुनाई, कहानियां, कहानी तो नहीं सुनाता ये, आई थिंक इसका जोनर है, आई डोंट नो है भाई तेरा जोनर, हाँ ये पोएट्रीज करता है, बहुत ही बढ़िया। तो अब जो है यार, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अभी हम बात कर रहे थे फनी वाली, अब थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं, जिनके दिल टूट जाते हैं उनके बारे में बात करना जरूरी है, उस पर क्या कहना चाहोगे, टूटे आशिकों के लिए कहना चाहोगे? अखिल जैसे लोग बिल्कुल टूटे आशिक नहीं होते, ना ही मैं हूँ, तो आप हम दोनों को छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं।
6: हाँ, एक है लेकिन टूटे आशिक नहीं, लेकिन अपनी मोहब्बत को आप सबसे नायाब बताना चाहते हैं ना?
5: हाँ बिल्कुल,
6: आपकी मोहब्बत सबसे नायाब है, उस पर लिखी थी मैंने, किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली, किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली, किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो, किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो, यूं तो लाख हंसी हैं जहां में यारो, यूं तो लाख हंसी हैं जहां में यारो, पर वो सबसे हंसी और सबसे नायाब है वो, सबसे नायाब है वो।
5: क्या बात है, अखिल जी ने अपना जो है पिटारा तैयार कर लिया है कुछ सुनाने का, तो इनके पिटारे को ध्यान में रखते हुए माइक में इनकी और जो है लगाना
2: चाहूंगा। मैं अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा,
5: तो श्रोता मेरे भी हैं,
2: कि जो भी मेरी आवाज निकल रही है दिल से, जो भी शायरी निकल रही है
5: जी जी,
2: वो सब आनंद की दिल की भी है, जो आनंद अपने से कहना चाह रहा था,
5: कहना चाह रहा है कि मैंने लिख के इनको फॉरवर्ड कर दिया कि भैया ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, जूते पड़ेंगे तो सर आपका होगा मेरा नहीं, मेन बात ये है।
2: अब आनंद जी भी जो है हर सीजन वेट करते हैं कि कब मेरा सीजन जो है होगा पूरा,
5: मतलब कहना क्या चाहते हो, सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इट्स नॉट कपिल शर्मा शो, वो सीजन 5 सीजन 2 नहीं चल रहा है ये। हाँ, फिलहाल यहाँ पर शेरों
2: तुम्हारी, तुम्हारी मुस्कान का असर कुछ ऐसा होता है,
5: वाह,
2: दिल का हर कोना रोशन सा होता है,
5: गजब,
2: यू तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, यू तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, पर तुम्हारा साथ जिंदगी से भी प्यारा होता है।
5: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ये
2: इंस्टेंट शायरी कहते हैं ना इसे,
5: इंस्टेंट शायरी ये होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर में 5 किलो आलू ना बांट दूं फ्री में गली के मोहल्ले में,
2: 5 किलो तुम 5 गिलास नहीं पिला पा रहे हो पानी लोगों को,
5: क्या बात कर रहे हो, मैं 5 बॉटल पानी पिला चुका हूँ, 5 गेस्ट आए थे सुबह से मेरे ऑफिस में, कोई था नहीं आज,
2: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो गर्मी में आनंद, बहुत अच्छा,
5: थैंक यू सो मच, बस आपको नहीं पिलाया, अभी थोड़ी देर बाद आपको भी सर्विस देंगे पानी की, आप चिंता ना करें। वेल आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, पानी लाते रहिए और पानी पीते रहिए, क्यों अखिल भैया, अब ये माइक जो है उस लड़की की तरफ भी करते हैं जो एक बड़ी देर से हमारी तरफ बैठी है और हम लोगों को घूर रही है, हमारे बीच में प्राची भी है, आज की जो शाम है महफिलों से सजी हुई है। प्राची क्या करते हो तुम, अपने बारे में बताओ?
7: मैं पोइट्री करती हूँ कभी कभी, और मैं एक पोइट्री है, एक शायरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी से सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है।

0: दिल में समा जाने के लिए, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की हजार खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
1: क्या बात है, वेरी नाइस प्राची, मजा आ गया तुम्हारी शायरी सुन के। और तुमने इसमें एक बात बोली थी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं
0: खुद से सवाल हमारा,
1: क्या बात है। और
0: मतलब वी माइट बी रॉन्ग,
1: हाँ,
0: पर स्टिल मतलब एक हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम गलत हो, पर अभी तक जितने एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट कि खुद से एक सवाल हमारा कि क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की हजार खूबी भी दिखी वो फिर भी नहीं हमारा।
1: नहीं, वो क्या लाइन बोली थी, दुनिया देखी हमारी, स्टार्टिंग में कुछ बोला था ना?
0: एक बार मैं दोबारा से कहना चाहूंगी,
1: हाँ, हाँ।
0: लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की हजार खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
1: क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और राजमा चावल है हम सभी का प्यारा, बहुत ही बढ़िया, इसे भी बहुत अच्छा बोला
2: आपने पूरी शायरी को गुड़गुड़ कर डाला।
1: ये नहीं था यार, मेरा फेवरेट है तो मैंने बोल दिया, लेकिन प्राची टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा बोला। और ये जो इन्होंने बीच में शब्दों का इस्तेमाल किया गुड़ और साथ में जो मिक्स किया है वो पता नहीं इनको क्यों पसंद आया, आई डोंट नो। खैर आगे बढ़ते हैं। अजीम भाई तुम्हें कैसा लगा इस माहौल में आके, मजा आया? अब यार जाने का समय हो गया है और कुछ खाने पीने का भी समय हो रहा है गाइज, क्योंकि रात हो रही है तो डिनर भी करना है समय से। अखिल भाई तो बैठे रहेंगे आपके साथ, अभी आपकी फरमाइशी गाने भी बजाएंगे।
2: नहीं नहीं, मेरा आनंद तुम्हारे दिल से एक और आवाज निकलने वाली है।
1: हाँ हाँ, प्लीज मैं अपने दिल को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, आप अपने दिल के बटन ऑन कीजिए, बोलिए सर।
2: इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
1: वाह जी वाह,
2: इश्क वो है जो दिल से निभाया जाए,
1: वेरी नाइस।
2: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं,
1: हाँ।
2: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं, पर अपना वो है जो हर हाल में साथ निभाए।
1: क्या बात है, हम साथ निभाना साथियां निभाएंगे सर, टेंशन मत लो, आज रात को 9 बजे मैं टीवी पे देखूंगा हम साथ निभाए। हम साथ साथ है, देखिए आपने?
2: हाँ देखी है।
1: हाँ तो बस वही है, हम साथ ही है यार।
2: तो एक आनंद एक बात भी पूछना चाह रहा था मैं ये पूछना चाह रहा था कि असल में एक शायर को कब लगता है कि वो शायर बन गया?
1: इससे जोक से बात, अखिल भाई आपने जो बोला ना एक शायर को कब लगता है
2: शायर, हाँ।
1: एक शायर बन गया है, मुझे
2: तो ये बात हम पूछना चाहेंगे
1: अजीम से,
2: अजीम साहब से पूछेंगे कि वैसे
1: आपको आपको क्या लगता है, मैं ये आपका जो सवाल है वो आपके ऊपर ही मैं रिपीट मारता हूँ, आप बताओ मुझे।
2: मेरे हिसाब से पहले अजीम साहब से बात करते हैं, फिर मैं भी अपना विचार रखूंगा, अपना विचार रख दूंगा तो फिर
1: आइडिया मिल जाएगा ना मोहम्मद अजीम जब बोले। अजीम क्या लगता है भाई?
3: मुझे लगता है वो जब लिखना चालू कर दे, अपनी कलम उठा ले
1: और जो दिल से उसकी फीलिंग आए, जो दिल से
3: लगे कि चार आदमी को सुनाने के बाद लग रहा है कि हाँ वो अच्छी तारीफ कर रहे हैं,
1: हाँ हाँ।
3: तो वो शायर बन चुका है,
1: क्या बात,
3: बस उसे अपने आप।
1: और मुझे ऐसा लगता है अखिल भाई कि जब जब आपकी इमोशन आपकी बातों में आने लग जाएं, आपकी कलम में वो एक्चुअल में फीलिंग आने लगे, जो जो सामने वाले को रिलेटेबल फील करा दे, तो फिर आप शायर बन गए। क्योंकि आपकी शायरी से किसी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बात बोली जा रही है, मतलब ये मेरा जिक्र हो रहा है, तो आप शायर बन गए। प्राची कुछ कहना चाह रही है, ये भी शायर बनेगी आज, मुझे पक्का यकीन है। हाँ प्राची,
0: नहीं जैसे अभी आपने पूछा कि कब एक शायर को लगता है कि वो शायर बन गया है, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी से, मुझे तो अपने साथ ऐसे ही लगा था, पता नहीं मैं शायर हूँ या नहीं,
1: नहीं तो नहीं है, बोलती रह आगे
0: कि जब हम मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको हम उसको हम फ्रेम कर पा रहे हैं, मतलब जो भी हमने देखा है, हाँ उसको फ्रेम कर पा रहे
2: हैं,
0: उसको मतलब लिख पा रहे हैं, तो तब हमें लग जाता है कि हाँ कुछ हमने अच्छा लिखा है।
1: क्या बात है, मैं भी ऐसे लिखना शुरू करूंगा, शायद सबको लग जाए मैं अच्छा आरजी हूँ। माइक भैया की तरफ करो, आप जरा भैया से पूछते हैं। हाँ जी भैया, आपका सवाल मुबारक हो आपको, आप बताओ आप।
2: मेरा जो थॉट है वो यही, हाँ, है कि जब आपके जो जहन में चल रहा है, जो आपके
1: जी
2: जो सपनों में चल रहा है, एक्चुअली क्या है शायरी में वो चीजें जो आप ना रियलाइज करते हैं, मतलब आपके पास होती नहीं है मगर आप उसे एक इमेजिन करते हैं।
1: एब्सोल्युटली।
2: तो जब वो इमेजिनेशन आपके साथ आपकी कलम पे उतरना चालू हो जाए और वो उस तरीके से उतरे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये तो मैंने भी इमेजिनेशन किया था, या ये ऐसा कुछ है कि इन्होंने, हाँ जो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर कहते ना कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है, ख्यालों में आती है आपके, मगर वो चीजें आपको भी पता है वो पूरी नहीं होती है। तो जब आपके हाथ में कलम है और आपने उन ख्यालों को अपने साथ उसमें लिखा है और जब दूसरों को दूसरों तक वो बात पहुंचाई है, तब जाके लगता है कहीं ना कहीं शायर ये बंदा
3: शायर है,
1: शायर है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चा है तू मेरा, समझ रहा हूँ मैं। वो डायलॉग मेरे को अखिल भाई ने दिया था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अखिल भाई, बहुत अच्छी बात है। और मुझे इस बात से यकीन हो गया कि शादी के बाद हर कोई शायर बन जाता है, मैं इस बात को मान सकता हूँ। अजीम एक घर का, एक घर वाला शायर जो होता है, जैसे अखिल भाई एक घर के अच्छे शायर है, वो कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं हमेशा जब हमारे स्टेशन में आते हैं। तो आप बताओ, आपने तो मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को, कोई अच्छी अपनी शायरी के माध्यम से कोई थॉट, कोई बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप?
3: मेरे पास फिलहाल तो कोई ऐसी शायरी है नहीं, बट
1: अपने दिल की फीलिंग्स कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई थॉट कहना चाह रहे हो?
3: बहरहाल मुझे सच बस बताऊं तो मुझे अच्छा बहुत लगा यहाँ,
1: अच्छा मजा आया,
3: आनंद भाई से मिला, टीम से मिला, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि मेरी शायरी आप लोगों को इतनी पसंद आए कि आप मुझे बार बार बुलाएं, रिक्वेस्ट करें आनंद भाई के कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे बुलाएं।
2: बताएं मैं श्रोताओं की इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहाँ पे आप मिल सकते हैं आसानी से?
1: ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, मैं इनका एक अच्छा सा फोटो शेयर करता हूँ, बढ़िया सा अच्छे से कर्ली वालों वाला, तो इनको लोग तुरंत लाइक करेंगे और फॉलो भी करेंगे। वेल अब लेंगे आपसे जाने की इजाजत, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे आप FM मुरादाबाद पे डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं, और हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, गाइस बजाते रहिए
2: और गुनगुनाते
1: रहिए। बाय बाय।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
7: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
6: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली एलएनजी चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है।

0: है, आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढ़ोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
4: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर

0: की छलांग 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. Yeah, machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैम्पेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening.
7: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
8: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
7: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
9: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
10: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
9: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
10: अरे नहीं,
11: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
10: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
9: अच्छा।
10: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
12: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
13: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार मुरादाबाद, कैसे हैं आप? होंगे तो बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि बारिश जो है ना, वो 2 दिन से भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी इधर भागे आ रहे हैं, कभी उधर भागे आ रहे हैं, मगर भीगते भागते ही पहुंच रहे हैं। कहीं भी सूखे नहीं पहुंच रहे हैं साहब। तो हो जाता है ये कभी कभी। कुछ ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, जो पूरे टाइम सूखे रह जाए। भीगने का अलग ही मज़ा है, अपना अलग ही चार्म है, क्योंकि भाई साहब तभी तो ये मौसम और ये बरसात का आनंद लिया जा सकता है। कोई नहीं, अभी बरसात के साथ साथ थोड़ा सा दिन भर की जो थकान आपके चेहरे पर जो दिखाई दे रही है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है साहब, क्योंकि शुरू हो चुका है वही वक्त, वही आनंद और वही मस्ती के साथ। और हाँ, एक और आवाज़ थोड़ी देर में आपको सुनने भी को भी मिलेगी भाई साहब। फिर बताइएगा, जो 2 लोग मस्ती करने वाले हैं आपके साथ, आज पूरे दिन की थकान उतार देंगे। तो मैं हूँ आपका अपना अखिल, और आप सुन रहे हैं इस समय दिल से दिल तक अखिल संग, और आपकी फरमाइश का समय समय चल रहा है। कॉलर्स हमारे पास कॉल आ रही हैं, और लेते हैं अभी एक प्यारी सी कॉल।
1: हेलो
0: हेलो, दिल
1: नमस्कार
0: से
1: मैम।
0: दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार सर। सर
0: नमस्कार जी, क्या हो रहा है?
1: आपकी याद आ रही थी, चाय पी रहे थे, मैंने कहा कुछ
0: चाय पूरी पी है? नहीं
1: इंसान
0: पी
1: होना
0: है
1: चाहिए। थोड़ा मैं
0: आपने?
1: आज पूरी नहीं पी, सर आधा कप रह गया अभी आपके हिस्से का।
0: हमारे हिस्से का कप रह गया चाय का।
1: जी सर आइए, आप मौसम अच्छा हो रहा है ना सर, यहाँ
0: जरूर
1: पे
0: जरूर।
1: आना।
0: तो 2 दिन से छत पे तो सो नहीं पा रहे होंगे आप।
1: नहीं सर बुरे हाल हो गए 2 दिन में सर, जितने ही धान है दोनों पास सभी डूबे पड़े हैं यार,
0: सभी, अरे
1: क्या नुकसान
0: पानी
1: होगा
0: बहुत
1: किसानों को
0: है,
1: भी।
0: सब सब कुछ आसपास, गांव के गांव और इधर शहर में भी अच्छा खासा, इतना मतलब कहते हैं ना, कहीं भी पैर रखो तो वो अंदर ही जा रहा है।
1: पानी पानी
0: बिल्कुल एकदम पानी पानी हो रहा है।
1: सर,
0: और
1: बहुत बारिश
0: बताइए।
1: हो गई ना, 24 घंटे हो गए लग रहा है मुझे।
0: हाँ, 24 घंटे हो रही है बारिश। तो इशरत जी, आज क्या कोई बात ऐसी दिल की जो कहना चाहेंगे, या कोई सिर्फ गाने सुनना चाहेंगे?
1: कह देंगे वो गाना भी है सर, मूवी का नाम है आदत, गाने के बोले जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना आपने चुना। ये तो मौसम के हिसाब से ही सुन लिया आपने।
1: सर अच्छा गाना, मैं काफी दिनों सोच रहा सुनने की, आज सुनते हैं। खुशी जी कहाँ सर आज?
0: खुशी जी जरा, आज कह रहे हैं ना, बारिश इतनी हो गई है कि खुशी जी भी जरा इतना कह रहे हैं कि
1: आराम
0: भैया
1: करेंगे
0: आज की
1: अभी।
0: छुट्टी मिल जाए। हाँ
1: बहुत
0: जी,
1: अच्छा
0: और बताइए, ये
1: अभी
0: चुस्की, जो
1: मुझे
0: चुस्की ले रहे हैं चाय की, कोई चुस्की के साथ कोई कहानी या कोई शायरी भी तो सुनाइए।
1: सर ऑनलाइन हो गया, लाइव हो गया यार, मजे
0: हाँ, आप इस
1: आ रहे
0: समय
1: हैं।
0: लाइव हैं,
1: सर
0: हो जाता है कभी
1: ऑनलाइन
0: कभी,
1: मौसम
0: कभी कभी लाइव
1: मेरा
0: में ऐसा हो
1: पहला
0: जाता
1: काम
0: है,
1: है यार,
0: कभी कभी लाइव में हो जाता है
1: यहाँ ऑनलाइन हो जाता है सर ये। और
0: ऐसा। तो
1: सब
0: कोई
1: बढ़िया
0: कोई
1: सर?
0: सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो चलिए आपका एक गाना सुनाते हैं, ठीक है ना?
1: हाँ सर सुना दो ना
0: आप
1: सर,
0: इस
1: ये वाला
0: गाने
1: गाना
0: के
1: आपने
0: साथ
1: जो
0: आनंद
1: प्ले
0: लीजिए,
1: किया
0: और
1: था ना,
0: फिर
1: आप ना सर आज धोखा कर दिया आपने साथ में यार मेरे।
0: आपने, मैंने धोखा कर दिया आपके साथ।
1: जी सर फोन
0: चलिए
1: नहीं ले
0: कोई,
1: लिया ना, मैं सोचा वो ले रहा हूँ।
0: चलिए चलिए चलिए, कोई नहीं कोई नहीं। अब आप इस चुस्की के साथ आनंद लीजिए, और मिलते हैं आपसे।
1: थैंक यू सर,
0: ओके,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी। तो दोस्तों, हमारे साथ ईश्वर जी, जो कह रहे हैं 2 दिन से बारिश में भीग रहा हूँ और इस समय सिर्फ चाय का आनंद ले रहा हूँ। तो हाँ, चाय का आनंद वो अकेले क्यों लें, आप भी लीजिए चाय का आनंद। तब तक इस गाने को भी एंजॉय कीजिए, और इतना बढ़िया गाना है, आदत आदत इसके बोल हैं, अब तो आदत सी हो गई है, और मूवी का नाम है कलयुग। तो ज़रूर इसका आनंद लीजिए, और मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: लापता लेडीज का ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया, इतना बढ़िया गाना। और ये चल किसकी पसंद पे रहा था मुझे नहीं पता, श्रोताओं को लग रहा हो कभी खुशी कभी अखिल कभी आनंद, ये हो गया रहा है शो में। तो भैया देखो, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको इतने सारे स्टार एक साथ सुनने को मिल जाए, ऑफकोर्स यार हम भी तो स्टार ही है। क्यों अखिल जी, कैसे हाल चाल है ये बताओ। अखिल भाई आपका माइक ऑन कर रहा हूँ मैं, मैंने आपका 2 नंबर की जगह 3 नंबर का ऑन कर दिया है, अब बोलो आप।
1: अब बिल्कुल सही ऑन किया, नहीं किया पहले।
0: अब एकदम करेक्ट आ रही है आपकी आवाज, बताओ।
1: मैं ये कह रहा था आजकल जो स्टार्स भी है ना, वो भी बादलों में छुपे हुए हैं।
0: हाँ ये बात तो है यार, बिल्कुल मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा।
1: इतने भीगे भीगे से क्यों लग रहे हो? मतलब
0: यार मैं ना अभी जस्ट मैं स्टेशन से आ रहा हूँ और अभी भी बारिश जो है भीनी भानी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जोरों की हो रही है, बट ये हो रही है। और इस 2-3 दिन की बारिश ने जो है माहौल ऐसा कर दिया है कि हर तरफ जल भराव है। इवन मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, कल जो है मुरादाबाद के बच्चों की फिर छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। कल 28 सितंबर भी कक्षा 1 से लेकर 12 जो बच्चे हैं कक्षा 12 तक के बच्चों की ऑफ रहने वाली है। तो मैंने सोचा यार लगे हाथ ये मैं बता देता हूँ, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे
1: सुन रहा है ना शो, उसके तो मजे आ गए। पेरेंट्स भी ये सोचेंगे यार चलो मुझे भी
0: अभी पता लग गया हमें, है ना। तो वैसे तो सोशल मीडिया पे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर ही दिया था, बट फिर भी मैंने सोचा जब लाइव ऑन ईयर आने का मौका मिला है तो आपको इस चीज से फटाफट रूबरू करा दें कि कल जो बच्चे हैं उनकी कल भी छुट्टी रहने वाली है। अब जो है दो दिन तो उन्होंने एंजॉय कर लिया, कल का दिन भी एंजॉय करेंगे। मंडे
1: किसी ने सोच लिया होगा यार
0: सुबह मंडे आएगा,
1: कुछ कुछ बच्चे चले जाते हैं,
0: कुछ कुछ लोगों को लग रहा है यार कल अच्छा हो मंडे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, थैंक गॉड बच्चों को छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी आराम से जो है चिल करना, कल मंडे का दिन बड़ी मतलब जो है मैं कह सकता हूँ मुश्किलों से मिलता है मंडे का ऑफ।
1: तो कल बच्चों से ही कहते हैं ना ब्रेकफास्ट पूरी बना दे।
0: अगर कोई बच्चे हमें सुन रहे हैं जो कल स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनको कैसा लग रहा है ये न्यूज सुन के मुझे जरा ये बताना कॉल करके। और बाकी मेरा नाम आनंद है, आपके बीच में हम मुखातिब होने के लिए आ गए। मैं यहाँ पर अभी 10 बजे तक आपके साथ हूँ कंपनी देने के लिए, अखिल भैया हमारे साथ हैं। और अगर आपके आसपास में जल भराव बहुत ज्यादा हो गया तो भैया जरा खास ख्याल रखिए, मैं खुद पानी में छपा छप करके आया हूँ अभी मुझे पता है। यार एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि कुछ लोग जो गाड़ी पे जा रहे हैं ना उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई पैदल भी जा रहा है, वो अपनी गाड़ी को इतनी मतलब अगर रफ्तार उनकी
1: वो लोग भी
0: तो 60 की घुमा रहे हैं,
1: वो बहुत संभल के जा रहे हैं आनंद।
0: पता नहीं मुझे तो अभी नहीं लगा भाई, मैं जब आ रहा था
1: कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस है कि यार यहाँ गड्ढा नहीं है, मगर अब जब पानी आ जाता है ना तो वो लोग भूल जाते हैं कि अरे यार यहाँ पे गड्ढा, तो यहाँ गड्ढा कैसे आ गया।
0: अरे तो मतलब मेरा सी कहने का ये कि आप सभी को पता है यार बारिश हो रही है, हर जगह वाटर लॉगिंग
1: तो
0: हो गई है, आराम से चलाएं। और जो पैदल व्यक्ति निकल रहा है ना मेरे जैसे, जो बेचारे थोड़े से पैदल वॉक करने के लिए निकल, उनका भी ख्याल रखो। हाँ, यार
1: आम,
0: आम, हाँ हाँ ठीक है, तो उनका भी जरा ख्याल रखो। और बाकी ये बारिश जो है कल भी बताई जा रही है कि कल भी बारिश जो है रहने वाली है, बाकी कल सूर्य देवता निकलेंगे या नहीं तो कल ही पता लगेगा, है ना। लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सेफ रखें और आप भी सुरक्षा में ही रहें तो ज्यादा बेहतर। और आसपास के लोगों को भी जो है सही चीजें फॉरवर्ड करें। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ी सी चीज होती है उसे इतना बड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी ज्यादा होती है फिर, तो इसीलिए सही चीजों को जो है प्लीज फॉलो करें। और बाकी रेडियो को जरूर फॉलो करते रहें क्योंकि रेडियो पे हमेशा जेन्युइन और अच्छी चीज ही आपको बताई जाएगी
1: और अच्छे गाने सुनाए जाएंगे।
0: अरे वाह, गाने की क्या बात कर दी अखिल भाई आपने, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, मैं सोच रहा हूँ यार बड़ी लेक्चरबाजी होगी, तो हमने सिर्फ काम की बात थी जो आप तक पहुंचाई। अगर आप कहीं गाड़ी में हैं और आप कहीं जा रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है तो वो गाड़ी के आगे क्या होता है इसे साफ करते हैं आपको बताओ। हाँ वो वाइपर वो जरूर आप करते रहें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अखिल भाई को आपको हंसाने के लिए मैं बोल रहा था, खैर पता है मुझे। हेलो जी कैसे हैं आप?
2: गुड इवनिंग आनंद सर।
0: गुड इवनिंग मेरे भाई, क्या बात है आप पहचान गए जी, बताएं अपने बारे में थोड़ा सा।
2: अरे आपको कैसे ना पहचानेंगे, रातों दिन सुन
0: रातों दिन कि यार मैं रात में नहीं आता मेरे भाई, मैं तो आज ही आया हूँ, बहुत कमी से आ पाता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग वाले शोज में सुनते हो तो फिर वो अलग बात है।
2: रिकॉर्डिंग में सुन ले, इंस्टाग्राम पे सुन ले।
0: इंस्टाग्राम पे भी सुन लेते हो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने हमें वहाँ भी नहीं छोड़ रखा है।
2: इंस्टाग्राम पे डबल डबल आईडी पे फॉलो कर रखा आपकी, डबल एफएम पे एफएम आईडी को भी आरजे आनंद वाली आईडी है उसे भी फॉलो कर रखा है।
1: क्या बात
0: भाई, ये पक्के वाले लिस्टर है, एक अवार्ड इनके नाम रखवा लो।
1: आज इन्होंने तुम्हारे शादी का कार्ड अपने यहाँ कंफर्म कर दिया,
0: कह सकते हो यार। मैं तो बुलाऊंगा भी उनको जो मेरा सोशल मीडिया फॉलो करेंगे, मैं तो नई रूल्स मतलब निकालूंगा, मैं मेरे दिमाग में है कुछ ऐसा।
1: मुझे पता चल गया इसका मतलब 4-5 हजार जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं इसमें वो सभी आने वाले हैं।
0: नहीं सब तो नहीं आएंगे यार, फिलहाल जब शादी होगी तो जब जरूर बुलाएंगे। एनीवेज बैक टू पॉइंट, बताइए जी कहाँ से हैं आप भाई?
2: हम शेरपुर माफी से सारी मंसारी बात कर रहे हैं सर
0: जी। बताइए आपके यहाँ पर कैसा मौसम है भाई, ये बताओ।
2: 3 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है सर, अभी हल्की फुल्की रुक गई है।
0: हाँ फिलहाल
1: ये 3 दिन से नहाए नहीं है।
0: नहीं यार बारिश में तो सभी नहा रहे हैं। अच्छा सालिम साहब ये बताओ, पानी तो नहीं भर रहा आसपास में कहीं गली मोहल्लों में?
2: पानी नहीं भर रहा है।
0: आज हम यही चाहेंगे कि थोड़ी सी इस पे भी बात हो क्योंकि इससे बड़े लोग परेशान हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं और मुरादाबाद से कुछ ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं जो होनी नहीं चाहिए, उस पर भी थोड़ा जिक्र करेंगे। लेकिन आप बताओ भाईजान कैसा लग रहा है रेडियो सुन के?
2: रेडियो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि दो दो प्रेजेंटर एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हम भी चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा माहौल और मौका दोनों मिल जाना चाहिए लिसनर्स को। जब ये दस्तूर है मौका भी है तो हमने सोचा हम भी लगे हाथ चले जाते हैं। और बताओ खाना पीना हुआ आपका?
2: खाना खा लिया, रात हम भी मुरादाबाद गए थे।
0: अरे वाह,
2: दोस्त की दिन तारीख हुई थी रात मुरादाबाद में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको आना चाहिए था हमारे रेडियो स्टेशन मिलने।
2: बहुत टाइम हो गया सर, 1:30 बजे अपने घर आए थे।
0: ओहो ओहो, मतलब काफी लेट नाइट पहुंचे, मतलब
1: तो आप आनंद के घर पे जा सकते हैं।
0: हाँ कोई बात नहीं यार, अपने अपने अपनी है यार सब। तो सालिन साहब एक बात बताओ, अगली बार जब आओगे तो जरूर आइयो स्टेशन हमारे, है ना?
2: जी आज जरूर आऊंगा, जरूर
0: जी। आज आज कौन सा गाना सुनोगे, चलो ये बताओ आप।
2: सर सुनोगे ख्वाब बनकर ही चले आओ के कुछ रात कटे।
0: ख्वाब बनकर ही चले आओ कि कुछ रात कटे।
1: इनकी रातें तीन दिन से बारिश हो रही है, इनकी रातें नहीं कट रही हैं।
2: सर मूवी शायद एल्बम सॉन्ग है सर, विजित नारायण के बाद में।
0: अच्छा अच्छा,
1: तीन दिन से बारिश के चक्कर में इनकी रातें नहीं कट रही हैं।
0: कोई बात नहीं। अच्छा सालिम एक बात बताओ, आजकल जैसे बारिश भी हो रही है, लोग काफी परेशान है मुरादाबाद में, तो काफी इस चीज का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कुछ कहना चाहोगे लोगों से जो गाड़ी वगैरह चला रहे हैं?
2: सर हम यही कहना चाहेंगे, गाड़ी वाले पैदल वालों का ख्याल रखें, और पैदल वाले भी
1: गाड़ी वालों को
2: ताकि जो हम मौसम बदल रहा है ठंड में नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात इन्होंने सही कही है। अखिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपका गाना निकल चुका है, इस गाने को सुनो और अपनी रेडियो के साथ ऐसे बैठे रहो।
1: चलने से पहले एक बस ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पैदल वाले गाड़ी वालों को कैसे ध्यान रखा जाए?
0: हाँ ये बताओ,
2: मतलब पैदल वाले इस चीज के ध्यान रखे, छाता लेके निकले बिना जरूरत बाहर ना निकले।
0: सही बात है बिल्कुल यार, मैं भी बिना जरूरत के बाहर नहीं निकला हूँ, शो करना था इसलिए निकला हूँ, छाता लेकर ही आया हूँ भाई।
2: और गाड़ी वाले ख्याल रखे क्योंकि बहुत से गड्ढे होते हैं ना।
0: हाँ हाँ,
2: तो वो गाड़ी वाले वो तेज निकालते हैं, तो वो अपने आप तो अंदर होते हैं। हाँ। जो दूसरा खड़ा होता है चल रहा होता है तो उसकी छीटा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: गाड़ी वालों को भी तब पता चलता है गड्ढे में गई है गाड़ी।
0: करेक्ट सालिन, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा, अच्छी अच्छी बातें करते हो आप, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस गाने को एंजॉय करो।
2: आप सच्ची बात है,
0: अरे सर कैसी बात, अरे थैंक यू मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा इस तारीफ के लिए, मैं क्या दूं, एक गाना ही दे सकता हूँ आज की शाम आपको, एंजॉय करो आप।
2: चलिए
0: थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बातें हम तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, इस माहौल को और खूबसूरत बना सकते हैं। अखिल भाई कैसे, जरा नंबर बताओ अपनी जोशीली आवाज में।
1: मेरे को तो ना अपना ही नंबर जो है आजकल।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है, अब अपना करो प्रचार।
1: 9837896
0: एक बार मैंने भी अपने नंबर के 6 बोल दिए थे, 4 बचे थे, मैंने कहा चलो बच गया। फिर वो मैंने क्योंकि सिमिलैरिटी बहुत है हमारे नंबरों में ना, बहुत, जैसे 8998 तो वो थोड़ा सा सिमिलर है। एनीवेज चलो कोई नहीं, अभी अपना नंबर नहीं बताएंगे हम, टेंशन ना लो आप लोग,
1: सबको नंबर पता है।
0: आप हमें कॉल कर सकते हैं 9837896896, और मुरादाबाद में अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपके आसपास में कहीं पानी जमा है, हैवी वाटर लॉगिंग है, तो भी आप हमें कॉल करके बताएं, हो सकता है आपका मैसेज कुछ ही ऐसे इंसान तक पहुंच जाए और आपके आसपास की वो चीज़ सॉल्व हो जाए। बहुत लोग परेशान हैं, तो अगर आपके आसपास कोई भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है, तो आप हमें डेफिनेटली बता सकते हैं। रेडियो देखो यार, गाने नहीं बजाता, आपकी आवाज़ भी बनता है, तो आप बिल्कुल अपना आवाज यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं, तो हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अखिल भाई ये गाना सुनते हैं फिर मिलते हैं, है ना?
1: पक्का।
0: 9:25 हो रहे हैं, एड ब्रेक का टाइम तो नहीं है भैया?
1: एक ब्रेक लगा दो यार, एड तो है।
0: है, चलो एक छोटा सा एड ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं हम ये गाने के साथ।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: बेहद ही खूबसूरत ट्रैक। अरे ये जो गाना था उदित नारायण साहब की आवाज़ में, और कुछ गाने ऐसे होते हैं अखिल भाई जिनको सुन के सच में बहुत आनंद आता है, और कुछ गाने इतने प्यारे हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ये भी गाना था,
1: रुका नहीं आता हूँ।
0: हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनको मैं अब सुनता हूँ, जब हमारे लिसनर्स हमें कॉल करके कहते हैं भाई ये वाला गाना चला दो, तो ऐसे तमाम गाने जो हमने सुने भी नहीं है अभी उदित साहब के, ऐसे तमाम सारे गाने। एनीवेज अखिल भाई आपसे बात करूंगा मैं, प्रोग्राम तो चल ही रहा है। दोस्तों आप भी हमें फोन कर सकते हैं गीत आपके नाम से, मैं 9837896896 में कोई गाना सुनना चाहते हैं या कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो
1: व्हाट्सएप भी कर सकते हो
0: और अपना कॉल भी कर सकते हो। तो अभी मैं जब तक आप कॉल कर रहे हैं तब तक हम अखिल भाई से जरा बतिया लेते हैं थोड़ा सा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके आसपास का क्या मतलब उधर कैसा है, मतलब उधर से आप आ रहे हो अभी तो उधर वाटर लॉगिंग तो नहीं है कहाँ कहाँ?
1: बहुत जगह वाटर लॉगिंग है,
0: एमडीए में भी है ये चीज, जल भराव काफी जगह हो गया है ना,
1: काफी जगह है। और कुछ जगह तो ऐसा है कि कहीं कहीं थोड़ी सी पुलिया जो है ना ऊपर की तरफ हो गई है और सड़क नीचे की तरफ हो गई है।
0: अच्छा,
1: तो पानी इस लेवल तक पहुंच गया कि पुलिया तक वो पहुंच गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये नहीं पता कि जहाँ उतरेंगे जिस साइड उतरेंगे वहाँ ज्यादा गहराई है या गड्ढा है या कैसा। तो भैया अब तो यही है कि आप अपनी हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट बढ़िया से चमका के रखें या स्कूटर की हेडलाइट बिल्कुल चमका के रखें, बहुत ही सावधानी से जहाँ भी जा रहे हैं आप तो बहुत सावधानी से जाएं।
0: और बाकी देखिए आपको लगातार अलर्ट के मैसेज भी मिल रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ है तो आपके पास अलर्ट मैसेज आ जाएगा। दूसरी बात यह है क्योंकि अचानक से मौसम ने जो है अंगड़ाई ले ली है, परिवर्तन हुआ है सडन, तो ऐसा नहीं है कि ये मौसम जो बदल रहा है ये बीमारियां नहीं लाएगा, ठीक है?
1: ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात,
0: ये डेफिनेटली बीमारियां भी लेकर आएगा।

0: जी अखिल भाई, तो वही मैं एक्चुअली आपसे डिस्कस कर रहा था थोड़ा सा, है ना। और बाकी तो ये है कि छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन ये जो मौसम ने अभी अचानक से परिवर्तन किया है, आप देखो ना, अभी दो दिन पहले लोग जो है ऐसे घूम रहे थे शॉर्ट्स में, अब जो है लोग रजाई कंबल सब निकाल चुके। मैंने खुद देखो ये क्या पहन के रखा हुआ है, सर्दियों वाला। पता नहीं आप कैसे बैठे हुए यार, आई डोंट नो। मेरे को तो भाई सुबह उठा तो मतलब ठंडी ठंडी, पंखे भी बंद है, अपन की एसी बंद है।
1: एसी चला दो।
0: अच्छा एसी चलाता हूँ, मुझे लग रहा है आपको मैं वहां भेजता हूँ जहाँ इस टाइम पे ठंड हो रही होगी। कहाँ हो रही है मुझे भी नहीं पता है, मैं गूगल करके आता हूँ कौन सी कंट्री है जहाँ इस टाइम ठंड हो रही है।
1: कोई सी भी कंट्री ले लो, यूरोप में इस समय सब जगह ठंड है।
0: नहीं मैं आपको वहां भेजूंगा ना जहाँ गर्मी है यार, जहाँ गर्मी होगी। मैं आपको वहां भेज दूंगा। खैर एनीवेज, जैसे जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। हेलो, कैसी हैं आप? नमस्ते। देखिए आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है सुशीला जी, मैं आपका नाम सुन चुका हूँ, तो प्लीज अपने रेडियो से थोड़ी दूरी बनाकर आप प्लीज बात करें ताकि हम आपको सुन पाए अच्छे से। हेलो,
2: ये रेडियो की आवाज आ रही है भैया आपको?
0: हाँ रेडियो से थोड़ा दूरी बना लीजिएगा आप, ठीक है? आप बताइए कैसी है। नमस्ते, स्वागत है आपका एफ ए मुरादाबाद में।
2: जी आपका रोजाना सुनते हैं रेडियो, अच्छा लगता है गाने, आपकी आवाज बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या करती हैं आप,
0: क्या करती हैं आप ये बताइए सुशीला जी।
2: सिलाई करती हूँ, हाउस वाइफ।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सुशीला जी, जो मतलब मुझे पर्सनली लगता है, मैंने देखा है अपनी मम्मी को दादी को, तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो होता है वो एक होम मेकर का होता है, जो घर संभालती है। मतलब ऐसा ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं घर में सिर्फ खाना ही तो बनाना है, दो काम ही तो करना है, बट जो जिम्मेदारी महिलाओं
2: खाना ही बनाना है, सिलाई भी करती हूं,
0: वही वही, और फिर जिम्मेदारी भी एक एक चीज को संभाल के रखना, तो ये चीज भी मतलब हैंड्स ऑफ। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स का काम सिर्फ थोड़ा सा ही काम है, बहुत चीजें होती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली।
1: बरसात हो गई तो सिलाई का काम थोड़ा और मुश्किल बढ़ गया होगा।
0: ये अखिल जी आपसे कह रहे हैं कि बरसात हुई तो सिलाई का काम बढ़ा है या घटा है?
2: ना ना, अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, शादी आ रही है, तो शादी के कपड़े हैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, तो आप मतलब बुटीक चलाती हैं या फिर घर से ही आप काम करती हैं सुशीला जी?
2: ना घर पे सिलती हूँ मैं।
0: अच्छा घर पे सिलती हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास अखिल भाई टैलेंट होता है, हुनर होता है, तो वो कहीं से भी जीत सकता है।
1: बिल्कुल
0: है ना।
2: लेकिन बारिश हो रही है ना, तो बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, घर पे छुट्टी चल लेंगे ना।
0: ओए होए, मैंने अभी तो बताया कल भी बच्चों की छुट्टी है। अच्छा ये बताइए सुशीला जी, इस वक्त आप कहाँ से हमें फोन कर रही है, कहाँ रहती हैं आप मुरादाबाद में?
2: इस समय पागबाड़े मुरादाबाद।
0: अच्छा पागबाड़े मुरादाबाद, तो उधर तो कहीं पानी वानी की समस्या नहीं हो रही है?
2: पानी वानी की समस्या नहीं है पागबाड़े की तरफ।
0: अच्छा अच्छा, मतलब रोड सही है उधर?
2: मतलब थोड़े।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है? सही है, भगवान जी जो टंकी बंद करना भूल गए।
0: अच्छा अच्छा, रोड थोड़े खराब है। ओके ओके।

0: चलिए कोई नहीं, तो बस इस बारिश में जरा ख्याल रखिए, चाय पकौड़ों के साथ साथ बाहर का भी ख्याल रखना है। अभी तक बनाए हैं या नहीं चाय पकौड़े आपने?
1: चाय पकौड़े तो कल बनाए थे
0: लेकिन हमें नहीं बुलाए, थोड़ी गलत बात है।
1: एक बार आपका नंबर आज ही नहीं आया, जो आपने बोला था ना ये मेरा नंबर है, हाँ हाँ बात करें।
0: अच्छा वाह, आपने मेरा नंबर ले लिया, अब अगली बार चाय पकौड़े बनाओ तो कॉल जरूर कर देना मुझे।
1: ठीक, आ जाओगे ना वैसे आप?
0: अरे अरे मैम क्यों नहीं आएंगे, आप बुलाएंगी तो देखिए हम तो जरूर चले आएंगे, आप बुलाइए तो सही। अखिल भाई तो इंतजार में बैठे हैं, पूरा पूरा थैला पैक करके बैठे होते हैं, अखिल भाई बस कोई बुला दे वो तुरंत स्कूटी लेके चल देते हैं।
1: अच्छा ना, मेरे हस्बैंड बुला लेंगे आपको।
0: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं भैया जी, क्या करते हैं भाई साहब?
1: वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बलप्रदा।
0: अच्छा बलप्रदा है, हाँ
1: हाँ।
0: अच्छा अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुशीला जी बहुत अच्छा लगा, तमाम लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं इस वक्त, बहुत सारी महिलाएं भी सुन रही हैं, तो कुछ कहना चाहेंगी? जैसे इस समय में बारिश का मौसम है,
2: गाना गुनगुनाना चाहेंगी?
0: गाना तो सुनेंगी,
1: बारिश में भीगना क्योंकि ये वाली बारिश नुकसान दे रही है ना।
0: हाँ वही वही, वायरल एक तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं।
2: ये आनंद तो अपने साथ टॉवल लेके भी अपने साथ चलता है कहीं, बाबा
0: नहीं, मैं टॉवल टोपा शोपा सब लेके चलता हूँ। देखिए सुशीला जी पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, है ना?
1: वाली
0: नहीं छाता तो लेके जा। अच्छा ये बताओ आप छाता नहीं लेके जा सकते इस टाइम?
1: छाता लेके जा सकते हैं,
0: और वो छाता हवा में उड़ जाता है इसलिए टोपा रखना पड़ता है मेरे को,
2: छाते में भी छेद है।
1: अच्छा
0: अच्छा मैम आप कौन सा गाना सुनेंगी सुशीला जी?
1: गाना,
0: हाँ यहाँ गाना भी सुनना होता है।
1: हाँ, गाना भी सुनना होता है।
0: हाँ, इसीलिए ना, मतलब आपने एकदम से बोला ना गाना तो मुझे लगा शायद समझ में नहीं आया शायद। कोई गाना आपको जो पसंद हो? अच्छा एक्स वाई जेड ही सुनाता हूँ मैं आपको, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, वो हम साथ साथ है राइट। अच्छा सुशीला जी आप ही बताइए कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं हमारे रेडियो स्टेशन से, आप कब कब रेडियो सुनती हैं? अच्छा बहुत बढ़िया, तो आपको कितना समय मिल जाता है रेडियो सुनने का?
2: सुनती
0: है
2: आप आनंद के प्रोग्राम?
1: लेकिन सुनते इसी समय है, वही 8 बजे से 10 बजे।
0: हाँ हाँ वो हमारा अपना आता है ना एक स्टेशन। अच्छा ठीक है, मतलब सुबह में दोपहर में आप नहीं सुन पाती हैं ऐसा?
1: ना ना,
0: तो आप
1: टाइम में मिलता था।
0: अच्छा अच्छा ओके ओके, तो आज पहली बार कॉल किया है या पहले कर चुके हैं ये प्रोग्राम में?
1: ना ना पहली बार किया भैया आपको।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, तो कैसा लगा आपको सुशीला जी बातचीत करके?
1: अच्छा लगा बहुत।
0: अब आप ये सोचिए ये आपकी जो आवाज है सिर्फ आप अपने घर में नहीं सुन रही हैं, लाखों लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ आपकी आवाज पहुँच रही है। हाँ बहुत दूर दूर आपकी आवाज जा रही है। चलिए अरे वो किसी और को फोन
1: करो।
0: अच्छा करा दीजिए, चलिए उनसे भी कर लेते हैं। मैम रेडियो से थोड़ा दूरी बना लें प्लीज।
3: हेलो
0: जी नमस्कार भैया, कैसे हैं?
3: नमस्कार भैया,
0: क्या नाम है सर आपका, शुभ नाम?
3: मेरा नाम कुलवीर सैनी।
0: अच्छा कुलवीर सैनी, तो आपने फोन लगा के मैडम को पकड़ा दिया सर? हाँ
3: नहीं नहीं मैंने नहीं पकड़ाया, वो खुद ही फोन मिलाया था।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, तो चलिए सर अच्छी बात है ना, आपको तो फिर मेहनत करनी
2: तो
0: नहीं पड़ी।
2: आप तो आनंद जी एकदम गेम गेम कर देते हैं।
0: कैसा लगा सर आपको?
3: पहली बार मिलाया नंबर।
0: बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है सर आपको बातचीत करके?
3: बस बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है,
3: आपको गाना सुनते रहते हैं, आपके गाने चलते रहते हैं, सुनते रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आज आज कौन सा गाना सुनवा दें इसी बात पर?
3: गाना कौन सा गाया मैडम बताएंगी हमारी, कौन सा बता दी
0: मैडम ने तो बता दिया है, फिर हम वही चलाते हैं सर।
3: कौन सा बताओ?
2: ABCD
0: ABCD, उन्होंने तो बोला एक्स वाई जेड कोई सा भी चला दो। कल बच्चों की छुट्टी है तो आराम से उठना है सर। है ना,
3: कौन सुनना चाह रहे मैडम बताओ?
0: अच्छा वो मैडम हम पूछ रहे हैं भाभी जी से कि बताओ मैडम कौन सा सुनोगे आप?
2: आज पता है आनंद कितना स्पेशल डे, आज डॉटर्स डे भी।
0: हाँ डॉटर्स डे भी, अरे की बात करते हो, तो एक काम करते हैं अपनी तरफ से चला देते हैं कुलवीर जी आज आज की इस महफिल।
1: ये वाला गाना लगाओ, ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे प्यार से, मैं पति के लिए
0: मेरे लिए। हाय हाय क्या बात है, नजर ना लगे, हम यहाँ से ढेर सारी दुआएं भेज रहे हैं आपके लिए। चलिए इस गाने को बजाते हैं, क्या है गाने के बोल क्या है एक बार आप जरा बताइए सुशीला जी।
1: ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले,
0: ये जीवन जितनी बार मिले हर बार
2: मुझे तेरा प्यार मिले।
0: अरे मैं उनसे सुनना चाह रहा था, आपने क्यों गा दिया? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है सुशीला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप ऐसे ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, है ना? और बच्चों को कल कर और झेल लीजिए, परसों तो स्कूल खुली जाएंगे, चिंता ना करें आप। चलिए बाय बाय, नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। सुशीला जी हमारे साथ जुड़ी थी पागवाड़ा से, ढेर सारी बातचीत इनसे हो गई है और इनकी पसंद का एक गाना हम सुनवाते हैं।
2: अगर आपको भी अपने डॉटर्स डे पे अपनी गुड़िया को या
0: हाँ हाँ
2: आपको अपनी डॉटर को विश करना है तो जरूर हमें कॉल करें 9837896896 और करें खूब सारी बातें। हाँ भैया आनंद,
0: मैं गाना निकाल रहा हूँ, आप बातें करो मेरे लिसनर से।
2: मैं तो बातें कर ही रहा हूँ, मगर तुम जो है एकदम आज खो कैसे गए थे बात करते करते,
0: मुझे अच्छा लगा। तो गाइज एक काम करते हैं, आप लोग भी हमें फोन करिए, जैसे भैया ने नंबर बताया और मैम ने कहा था आपका नंबर आज मिला है, तो ये मेरे स्टूडियो का नंबर है। एंड अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 9837896896 इस नंबर पर आप कॉल लगाएं हमें। कोई गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कुछ अगर आप बात रखना चाहते हैं, मौसम से जुड़ी कोई बात शेयर करना चाहते हैं, इस मौसम में अपना ध्यान कैसे रखें, जो भी आपको लगता है व्हाटएवर, आप हमें फोन करके हमारे साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। और फिलहाल एक गाना मैम की रिक्वेस्ट का हम निकाल रहे हैं, और अखिल भाई ने जिक्र किया है आज डॉटर डे भी है, तो हम इस पे भी बात करेंगे, अभी लौट कर आ रहे हैं।

0: यार रेडियो से ना मेरा ऐसा नाता है, रेडियो दिस इज माय सेकंड होम। अखिल भाई मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ चीजों से हमें इतना प्यार होता है वहाँ के ना, हमें बड़ा सुकून मिलता है ना। वैसे ये रेडियो स्टेशन है, यहाँ पे रात के 10 बजने को आ गए, बट ऐसा लग रहा है अभी तो शुरुआत हुई है। मतलब अभी तो बस एक दो कॉलेज की बात हुई, ऐसा लग रहा है अभी और करनी है। बट क्या करें, अखिल भाई को भी घर जाना है और मुझे भी अपने घर की रोजी रोटी का ख्याल रखना है, मतलब घर पे खाना पीना खाना है। तो आज वैसे भी मेरा बहुत ऑक्यूपाइड था पूरा दिन, मैंने इवेंट्स किया, मैं पूरा दिन खड़ा ही रहा भाई, 6 घंटे होस्टिंग करी मैंने। तो आज जो मजेदार मतलब माहौल बना
1: तुम्हारे लिए और एफएम के लिए, एक मैं बात बोलूंगा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: तुम सामने रहो या दूर रहो,
0: हाँ जी
1: बस दिल के करीब रहना।
0: जी जी,
1: बातें कम हो तो कोई बात नहीं,
0: हाँ
1: बस यूं ही मेरे नसीब में रहना।
0: आहा, नसीब में तो सिर्फ एक ही लेडी है, वो है हमारी प्यारी भाभी जी, और मैं चाहता हूँ वो हमेशा आपके नसीब में सातों जन्म तक बनी रहे। अगर वो सुन रही है तो ये मैं भाभी इसमें आपको ऐड करना चाहता हूँ, ये भली भाई ने हमारे लिए बोली और आपका तहे दिल से शुक्रिया। और एक दिन मुझे पक्का यकीन है कि आप बहुत बड़े शायर जरूर बन जाओगे, क्योंकि आजकल आपके अंदर से जो ये शायरी बाहर आ रही है ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे आ रही है। मैं समझ सकता हूँ अखिल भाई, हर किसी के अंदर एक शायर छुपा होता है, वो बात अलग है कि वो बताता नहीं है, और आपका जो शायराना अंदाज है वो हमें पता लग चुका है।
1: बहुत सही कह रहे हो तुम आनंद, बहुत सही। तो खिंचाई करने के लिए कोई नहीं मिलता ना तुमने।
0: यार मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूँ, देखो इतनी रात को सिट्टी बुट्टी सब कटा दी, यार आप कैसी बातें कर रहे हो यार। फिलहाल कुछ एड ब्रेक का टाइम है, वापस आ रहे हैं, आप लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं, मुझे पता है फोन लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहे, तो आप लगाते रहो यार, 10 बजे तक हम आपके पास हैं। और वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब मैं रेडियो पे फोन लगाता था तो बड़ा गुस्सा आता था, कभी कभी तो लगता था यार ये जा रहे हैं मेरा फोन नहीं लग रहा, और लास्ट टाइम ही कॉल लग जाती थी। तो आप लोग को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ट्राई करते रहो, थोड़ी देर के अभी हम हैं, हम आपका फोन उठाएंगे, बस आप दिल से लगाओ, क्योंकि कनेक्शन जो है ना वो दिल से दिल तक वाला है। जब हम दिल से फोन लगाएंगे तो आपके उस दिल का बटन हमारे दिल तक पहुंचेगा और हम दबा के उठा लेंगे।
1: और उस बटन की शुरुआत होती है 9 नंबर से।
0: 9 नंबर से, व्हाट इज दिस 9 नंबर?
1: 9837896। ओह माय गॉड,
0: मुझे लगा 10 नंबर से 9 नंबर पे कब आ गए। वो राघव चड्ढा ने आज कुछ और अनाउंसमेंट किया, आप कुछ और ही बताने लगे हो यार। मतलब चलो ठीक है, अभी एड ब्रेक।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: Hey, you're tuned into FM Muradaba 89.6 FM.
5: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: कराए ना नया बिस्किट आप सिर्फ 10 रुपए में, तो वो उसका हम नाम नहीं प्रमोट करेंगे भाई क्योंकि उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो वो मैंने भैया को खिला के मन खुश कर दिया। और अगर आप यहाँ बैठे हो इतनी रात को तो कम से कम मेरा फर्ज बनता है मैं आपको कुछ चाय ना तो बिस्किट तो करा ही सकता हूँ,
1: चाय नहीं तो बिस्किट तो करा ही सकता हूँ।
0: आपका मोमेंटो जब हम कहीं इवेंट में जाते हैं तो हमें एक वो मिलता है ना मोमेंटो टोकिंग लव, तो वो मैंने सोचा आपका कर दो।
1: बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा।
0: और मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट टाइम आपकी गाड़ी में बैठा तो आपने कहा बेटा सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि मैं हर बार भूल जाता हूँ ये आई डोंट नो कैसे, मतलब यहाँ इतना बोलते हैं लगा के चलो, जब खुद की बारी आती है तो भूल जाते हैं, फिर वो आपका मॉनिटर बोलता है पी पी जो भी है वो अलार्म, फिर मुझे याद आता है हाँ यार लगाना पड़ेगा अभी।
1: सीट अलार्म बोल जाता है।
0: क्या बोलते हैं उसको?
1: उसे सीट बेल्ट अलार्म।
0: एक दिन मैं बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा फिर मैं आपको ही बताऊंगा। अरे वाह, नहीं भैया मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, आगे बढ़ते हैं। हेलो कैसे हैं सर आप? भैया रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर लीजिए, देखिए आप रेडियो पे अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो लाइव मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, तो आप जो भी हमें कॉल कर रहे हैं रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दें या रेडियो से थोड़ी दूरी बना लें ताकि हम आपको अच्छे से सुन पाएं और आप भी अपनी बात को स्पष्ट तरीके से हम तक रख पाएं। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आप सर रेडियो की आवाज़ कम कर लीजिए प्लीज़, रेडियो से थोड़ा दूरी बना लें सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम शासन का लाल यादव है, लाइन पार्क प्रकाश गली नंबर 2 से बोल रहा हूँ, और अखिल सर को और आनंद सर को मेरा ढेरों नमस्कार और यादव परिवार की तरफ से।
0: यादव परिवार को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: आपकी गली में पानी भरा नहीं भरा है?
0: अरे आप क्या चाहते हो, नहीं भरा है तो भरवा दोगे आप? ये तो गलत बात है। शंकर लाल जी ये पूछ रहे हैं आपकी गली मोहल्ले में पानी की समस्या तो नहीं हो रही है, पानी तो नहीं भरा है इस बारिश?
2: साफ हमारी गली में तो पानी जरा बारिश होती है भर जाता है गली में, तो साफ हमारा फुल गली हो जाती है।
0: ओए होए, मतलब तो अभी तो पिछले 2-3 दिन से काफी तेज बारिश है, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा बारिश में पानी भर गया होगा फिर।
2: जी जी जी, और हम अपने बच्चों को पहुँचाने जाते हैं स्कूल पे।
0: जी जी,
2: साइंस में सत्य साई में।
0: जी जी,
2: तो वहाँ पे आप वहाँ में पानी बहुत भरा होता है रामजागोन के पास में साहब।
0: सर वहाँ तो इतना पानी है कि मैं खुद उस पानी को अभी पार करके आ रहा हूँ, वो तो मैं समझ सकता हूँ। अभी भी अब देखिए 72 घंटों से ज्यादा बारिश हो रही है शहर के अंदर, और कितनी काफी तेज मूसलाधार बारिश है।
1: चला तुमने छुट्टी क्यों करवाई स्कूलों की कल?
0: हाँ
2: कल तो 100% बारिश है साहब।
0: जी जी, मैंने हम लोगों ने अभी बताया भी है, और कल छुट्टी भी है स्कूल की सर।
2: जी जी सर, स्कूलों की छुट्टी है।
0: जी जी जी जी, तो आप बताइए सर कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बढ़िया चल रही है।
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
2: आपका प्रोग्राम सुनते रहे तो मैं तो साहब आंखों से जरा मजबूर हूँ, इसलिए मैं आपका नाम सुनते ही फोन लगा लेता हूँ।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, तो आपकी मोहब्बत है, जितना प्यार हमें आपसे है आपको भी हमसे उतना ही, हमें अच्छा लगता है जान करके।
2: साहब सुबह को मैं 6 बजते और मैं अपना आपका भजनों का प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं साहब।
2: अरे साहब आपकी आवाज सुनते ही मैं तो गदगद हो जाता हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: बहुत ही बढ़िया।
0: ये तो
2: अखिल सर जी का, अखिल सर जी का तो मैसेज मेरी पोती जरूर डालती है।
1: हाँ, आता रहता है।
0: क्या नाम है आपकी पोती का?
2: जी निरांशी यादव, अमित यादव, रितु यादव,
1: नमन यादव।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, मतलब पूरा परिवार शामिल रहता है हमारे प्रोग्राम में।
2: जी जी जी,
0: बहुत बढ़िया।
2: मेरी दोनों लड़की भी आपका प्रोग्राम सुनती हैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: चल एक तो ज्ञाने वाली बच्ची में रहती है और एक सम्राट अशोक नगर में रहती है।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया। देखिए हम तो कभी कभी आते हैं आपसे मुखातिब होने ऐसे फोन इन प्रोग्राम में, बहुत कम ही आना होता है मेरा तो खैर, लेकिन जब
2: आपका तो, अरे साहब आप तो सुबह के प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग भेजना शुरू कर दिया मैंने, लड़की बहुत ही कह दिया मैंने।
0: अच्छा अच्छा, अब आप गुड मॉर्निंग भेजते हैं, क्या बात है, कल से आपकी गुड मॉर्निंग मैं भी बदले में करूंगा आपको, बहुत बढ़िया। तो शंकर लाल जी आज क्या सुनवा दें इस प्रोग्राम में, इतना अच्छा मौका है, मौसम भी ऐसा ही है, थोड़ा बेईमानी कर रहा है आजकल,
2: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, तुमको पाने का इरादा है।
0: अच्छा जी,
2: तो भजन ये तो गीत है और मेरा लड़का अमित कुमार आपसे बात करना चाहता था।
0: जी प्लीज प्लीज करवा दें।
2: करो। हेलो
0: जी नमस्कार, कैसे हैं अमित जी?
3: नमस्ते सर, आप दोनों को?
0: जी जी बिल्कुल, हम दोनों तक आपका पहुंच गया है नमस्कार, आपको भी हम दोनों की तरफ से नमस्कार। अमित जी कैसे हैं?
3: बस बढ़िया है सर, बस हमारे पापा जी ने हमें सबको चस्का लगा रखा है।
0: अरे वाह,
3: ये गाने सुनते रहते हैं, आपकी बातचीत सुनते रहते हैं सबकी।
0: अरे वाह,
3: बड़ा अच्छा लगता है।
0: बहुत बढ़िया, देखिए ये तो एक अच्छा चस्का कह सकते हैं हम साहब इसे।
3: जी बस हमारे पापा ये सुनते रहते थे पहले फोन पे।
0: जी जी,
3: तो अब एक बड़ा बूफर लाके दे दिया, उसमें FM भी है, वो भी बजता रहता है और बस सुनते रहते हैं हम।
0: वो कहते हैं ना कि जब घर में कुछ अच्छी शुरुआत होती है और बढ़िया होती है तो वो इन्हीं चीजों से होती है ना, और ये एक बहुत मेमोरेबल चीज है ये, मतलब आपको ना एक टाइम बाद अमित भैया ये सिर्फ हमारी यादों

0: ये चीज है, मैं आपको बताऊं तो
1: मैं कुछ कहना चाहता
0: हूँ आपके लिए, कुछ कहना चाहते हैं हमारे अखिल प्रेजेंटर, जरा शिद्दत से सुनिएगा जी।
2: रिश्ते वक्त मांगते हैं, सिर्फ शब्द नहीं,
0: हाँ
2: अपनों को अपना कहने के लिए सिर्फ दिल चाहिए, वजह नहीं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात,
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया
0: जी जी। तो अमित जी आप ही बताइए, देखिए सर आपको रेडियो सुनाते हैं तो आपको अच्छा तो लगता है ना, इससे आपका टाइम भी बचता है, जानकारियां आपको मिलती हैं, ऐसा भी नहीं है आप स्क्रीन पे बैठे हो, जब तक बैठोगे तभी दिखेगा, रेडियो है, चलते फिरते कुछ भी काम कर सकते हो और सुन सकते हो।
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: बस हम तो सर थोड़ा सा आपको ये रात के प्रोग्राम सुन पाते हैं 9 से 10 बजे तक।
0: अच्छा, मतलब आप अखिल भाई के फैन फॉलोइंग में आ जाते हो फिर, चलो अच्छी बात।
1: हाँ सर वो इस 9-9:15 बजे तक आते हैं हम,
0: चलो
1: उसके बाद में हाथ पांव धोकर के अपना खाना पीना खा के थोड़ा सा आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं रेडियो पे।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, और रेडियो से जानकारियां भी मिलती हैं, सिर्फ गीत संगीत नहीं मिलता,
1: जानकारियां मिलती हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, तमाम लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, देखिए बाहर बारिश का मौसम है, हम लोग भी बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें।
2: अमित जी ये कहेंगे कि जहाँ भी जाएं छाता लेके जाएं।
1: इस मौसम में थोड़ा सावधान नहीं, क्या भीगना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये बारिश नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेगी।
0: अखिल भाई तौलिया लेकर आओ, मैं पूरा भीगा पड़ा हूँ यार। ठीक है अमित जी, मैं जरा
1: भीगे तो आज हम थे खूब। अच्छा। क्योंकि मेरा जो है मार्केट का काम है सर
0: जी जी,
1: तो आज पूरे दिन भीगे, कल तो हमने छुट्टी कर ली थी सर।
0: अच्छा अच्छा, तो इसीलिए आपने सैटरडे की छुट्टी संडे में पूरी करी है।
1: हाँ पूरी कर ली, आज पूरे दिन भीगे हैं।
2: जब आप भीगे हैं तब आपके दिमाग में कौन सा गाना आया है?
1: सर अभी पापा जी ने बताया था, मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा है।
0: देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा शंकर लाल जी को और आपको भी अमित जी, देखिए मौसम तो भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, लेकिन किसी को पाने का बिल्कुल इरादा नहीं है भैया। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो बाकी माहौल इतना अच्छा बना ही दिया है, तो इस गाने को चलिए सुनते हैं
1: जी। वैसे तो ये मौसम ही इतना अच्छा है कि सारे को पाने का इरादा रहता है।
0: देख लो पापा जी के सामने हो मेरा, बहुत बढ़िया। चलिए समझ सकते हैं ना, ये समझ सकते हैं,
2: कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, कुछ यादें साथ रह जाती हैं, मुलाकातें तो होती रहती हैं जिंदगी में, लेकिन कुछ आवाजें दिल के पास रह जाती हैं।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: मजा आ गया।
0: चलिए अमित जी एंजॉय करिए आप भी, और बाकी किसी को पाने का इरादा है तो पापा जी को बता दीजिए, है ना। अच्छा ओ शादी होगी तो हम गलत जगह निशाना मार रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अमित जी बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, चलिए नमस्कार भैया, थैंक यू भैया।
3: इजाजत तो
0: हमें भी है फिलहाल यहाँ से जाने की, है ना, लेकिन हम सोच रहे हैं एक लास्ट कॉल लेकर ही जाएं, देखते हैं कौन होंगे हमारे साथ, हमारे लकी वाले कॉलर, एंड उसके बाद अखिल भाई को भी मैं फ्री करूंगा, क्योंकि
2: आज नरेंद्र जी की कॉल नहीं आई, मैंने नरेंद्र जी एकदम
0: आया था उनका कॉल, बट वो अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया। सी देखते हैं नेक्स्ट कौन होंगे, है ना।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, और हवा का पता नहीं लेकिन मौसम बहुत ज्यादा भीगा भागा है। अखिल भाई, मैं आपसे कहूंगा कि स्कूटी अगर आप चला रहे हैं तो प्लीज छाता अच्छे से खोल के जाइएगा, क्योंकि कभी भी हवा उड़ा के लेके जा सकती है। एक मिनट, में आपकी आवाज खोलना भूल गया था, सॉरी, अब आप बोलिएगा।
1: मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कभी भी हवा किसको उड़ा के लेके जा सकती है, स्कूटी को?
0: देखो, अगर आप स्कूटी पे छाता खोलेंगे तो ऑफकोर्स यार आप नहीं उड़ोगे, छाता ही उड़ेगा। और अगर आप छाते को कस के पकड़ोगे तो आप दोनों भी उड़ सकते हो है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जो है सफलता पूर्वक ही अपनी स्कूटी चलाएं।
1: चाहते हो कि मैं फ्लाईओवर के
0: ऊपर? आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे पीछे बैठाना, मैं छाता पकड़ के चलूंगा है ना, फिर वापस छोड़ने आ जाना। लेकिन
1: हम पूरी रात यही करते रहेंगे
0: नहीं भाई, मुझे सुबह शो में भी आना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आनी है अपने लिसनर्स के लिए। और बाकी ये तो मतलब बड़ी एकदम से ऐसा माहौल बन गया कि मुझे भी नहीं पता था, अनएक्सपेक्टेड था। आप यहाँ आ गए हो संडे को और मैं भी अचानक से आ गया, तो एक मतलब एक केमिस्ट्री बन गई बढ़िया वाली, हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो गई आपकी हमारी। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शो में मिलते हैं, शो के बाहर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और कल अखिल भाई ने एक बहुत ही शानदार खाना में खिलवाया जो हम भूले नहीं बुलाए पा रहे हैं, और शायद हम बुला भी नहीं पाएंगे कभी लाइफ में। वही वाली बात है कि खाओ तो उसका एहसास मानो। चलिए फिलहाल बैक टू पॉइंट, 10:01 हो गया। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बड़ा आराम के साथ चलाएं, और आप जहां भी जा रहे हैं सुरक्षित पहुंचें। हमारी जो है आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, और अब आप फोन बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इस कॉल के बाद हम कॉल नहीं लेंगे। कभी आप फोन लगाते रहो और बोलो आनंद जी ने कहा था दिल से दिल तक मिलाना तो लग जाएगा, क्योंकि वो कनेक्शन अब टूटने वाला है, मतलब अभी के लिए करंटली है ना, क्योंकि हम लोग को भी अपने अपने घर जाना है।
1: कल फिर मिलेगा वो?
0: हाँ, कल फिर मिलेगा। और अभी आप जाकर के क्या करने वाले हो? मैं तो जैसे अभी एडिटिंग करूंगा, सुबह के लिए कंटेंट बनाऊंगा, और फिर खाना वाना भी खाना, मतलब अभी कुल मिला के 12 बजे तक ही नींद आ पाएगी।
1: मैं जाके अब थोड़ा सा टाइम बेटी के साथ, कहता है ना कल छुट्टी हो गई है तो कल सुबह उठने की तो जल्दी नहीं रहे।
0: जी जी जी जी,
1: थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे।
0: देखिए संडे की शाम हम रेडियो पर आपसे बात कर रहे हैं, रात के 10 बजे हमें पता नहीं था। और एक कॉलर जो है अभी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हेलो, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो सुजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो
1: सुजीत जी, सुन तो पा रहे हैं मगर वो अभी कंफ्यूज हो गए।
0: सुजीत जी लगता है रेडियो चला के भूल गए। हेलो, चलिए सुजीत जी, आपका गाना हम जरूर चला देंगे। और चलिए जाते जाते ही कॉलर से बात कर ही लेते हैं उनका मन रखने के लिए। हेलो, कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर आपका।
0: जी जी, वो कहते हैं ना कि खाने पर दाने, दाने पर खाने वाले का नाम, कोई कहावत है ना ऐसी।
1: आज तो तुम जो भी कहावत बोलोगे सही रहेगी,
0: है ना? तो वो वाली बात है, देखिए आज तो आपका मतलब एकदम से चाम लग गया। हम दोनों जा ही रहे थे बट हमने सोचा जब हम जा रहे हैं तो पहले आपसे बात ही कर लें सर। और आप तो काफी समय के बाद जुड़ रहे हो, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, अपने बारे में बताएं सर।
2: जी मैं अविनाश अदनाकर।
0: देखिए मैंने आपसे आपके बारे में आपका नाम पूछा था लेकिन आपने जो अभी ये किया ना, मैं ये क्यों किया आपने बीच में, इसका तो हम चार्ज लेंगे आपसे।
2: बिल्कुल चार्ज लीजिए, किसी दिन मुलाकात होगी तो चार्ज ले लीजिएगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली।
1: आनंद अब तुम्हें जाना मुलाकात करना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं अखिल भाई आपको लेके जाऊंगा। देखिए जब युद्ध होता है तो हमेशा अपने साथी को साथ रखना चाहिए, है ना? कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध से पहले तुम पीछे उसको आगे कर दो।
1: इन्होंने बैटरी वाला चार्ज दे दिया था।
0: जी जी सर, अपने बारे में थोड़ा सा बता दें।
2: मैं अविनाश उपमा सर।
0: अरे अविनाश जी, जी जी बताएं।
2: जी,
0: कहाँ रहते हैं आप मुरादाबाद में?
2: मैं यहाँ पीटीसी में रहता हूँ।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो अविनाश जी आप काफी लंबे समय के बाद आए हैं, आपका ट्रांसफर हो गया था किसी और जगह?
2: नहीं थोड़ा सा व्यस्तता थी कारण जो है मैं अभी कॉल नहीं कर पा रहा था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: बातचीत नहीं हो पा रही।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए क्या होता है ना, जितने जितने हमारे लिसनर्स को राइट होता है आरजी के बारे में जानने का, उतना आरजी को भी उत्सुकता होती है अपने लिसनर्स के बारे में जानने की वो कहाँ गायब हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं गलत जगह पर पहुँच गए? आजकल गलत
1: गलत स्टेशन में पहुँच गए?
0: नहीं ऐसा नहीं है, देखिए बात यह है ना, स्टेशन एक ही हमारा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आप कभी भी जाओ आपको सुकून की नींद मिलेगी।
2: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अविनाश जी, और बताइएगा खाना पीना हो गया आपका?
2: हाँ जी हाँ जी हो गया।
0: बहुत बढ़िया, और बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया चल रहा है?
2: सब बढ़िया चल रहा है सर।
0: मेरे यहाँ तो कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। हाँ आपकी दुआ हमें भी चाहिए, हमारे रामलीला ग्राउंड के बाहर पानी बहुत भरा हुआ है, जहाँ जाते हैं वही वाटर लॉगिंग है, कीचड़ पीछे से चिपक जाती है, तो हालात बहुत खराब है।
2: जी जी, इतनी समय वहाँ की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, और मैं समझ रहा हूँ कि देश भर में ऐसे ही चल रहा है।
0: हाँ वही तो, वही वाली बात है। तो उसको कुछ कहना चाहेंगे सर?
2: हर जगह बारिश हो रही है सर।
0: कुछ कहना चाहेंगे मुरादाबादी से?
2: क्या कहूँ सर, मैं यही चाहूंगा कि
0: मतलब जैसे छाता लेके निकले
1: या रेनकोट पहन के चले,
0: या रेनकोट पहन के चले,
2: या लेके निकले,
0: जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आप रेनकोट पहन के जाते हैं या छाता लेके जाते हैं?
2: हाँ, नहीं नहीं मैं रेनकोट पहन के जाता हूँ क्योंकि बाइक में जो है फिर रेनकोट ही ठीक पड़ता है, क्योंकि छाता लूंगा तो वो पता नहीं उल्टी दिशा में चला।
0: अरे यार अविनाश जी, थोड़ी देर पहले मैं अखिल जी को ये एडवाइस दे रहा था कि आप स्कूटी पे जाएंगे तो आप छाता खोल के जाना, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इन्हें उल्टी दिशा में ले जाएगा। अच्छा वाह आपने बता दी, अब आप रेनकोट लेके जाओ अखिल भाई। अच्छा ऐसा वैसे कभी हो, मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, ऐसा हो सकता है कि वैसे अगर हम छाता खोलेंगे तो हमें उल्टी दिशा में ले जाएगा क्या?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके तो अखिल भाई को मैं आगे बिठाऊंगा फिर।
2: छाता जी वो पलट जाता है वो।
0: तो मतलब मैं पीछे बैठूंगा तो मेरे पे वार कर देगा भाई, फिर गड़बड़ हो जाएगा।
2: खुलता तो ठीक है लेकिन कुछ देर के बाद वो जो है ऊपर की तरफ हो जाता है।
1: ये सर, वो बहुत ही बुरा लगता है जब आप नया नया छाता लेते हैं और हवा में आप देखते हैं कि एक
0: आपने पैसे भी दिए वो यूज भी नहीं किया और वो तुरंत मुड़ जाए ना, वो मैं समझ सकता हूँ। अब देखिए उसमें छाते की गलती नहीं है, आपने इतनी तेज हवा में खोला ही क्यों है? और जब आपको पता है गाड़ी पे छाता नहीं यूज करना है तो खड़ क्यों रहे हो?
2: नहीं वैसे छाता बचाने का भी तरीका होता है।
0: जी कैसे बचा सकते हैं आप मुझे ये सिखा दें?
1: छाते को
2: आप धूप और बारिश से जो है,
0: जी जी
2: धूप और बारिश से बिल्कुल बचा सकते हैं।
0: अविनाश जी आज मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, मैं छाता बचाने का तरीका ही ढूंढूंगा गूगल पे बैठ के। आप ऐसी ऐसी एडवाइस दे रहे हो ना रात में। मैं बता रहा हूँ रात को मैं खाना पीना भूल जाऊंगा और उसका पाप आपको चढ़ेगा।
2: ऐसा मत करिएगा भाई साहब, नहीं तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा तो फिर
0: नहीं, मैं सुबह मैं सुबह आपका नाम लेके उतार दूंगा ना, उसके लिए आपको सुनना ही पड़ेगा रेडियो। आपकी अटेंडेंस भी नहीं आ रही है ना आजकल।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी टाइम हो गया।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा अविनाश जी आपसे थोड़ा सा बातचीत करके, थोड़ा सा खुल के हंस लिए हम और हमारे अखिल भाई, उनको तो टैक्स देना पड़ता है हंसाने के लिए, है ना। हाँ हाँ, बट चलिए कोई नहीं,
2: काफी गंभीर रहते हैं ये।
0: वो तो आप रेडियो सुन के पता लगा सकते हैं सर। आई डोंट नो,
2: एक आध बार मैंने सुना है।
0: ओ माई गॉड, तो आपको क्या गंभीरता नजर आई हमारे आरजे अखिल में?
2: बहुत सीरियस रहते हैं ये
0: एक्चुअली ना। जब मैं समझता हूँ जब आपकी शादी हो जाती तो वो हो जाते हैं इंसान। जब शादी हो जाती है तो वो हो जाता है सीरियस, क्यों अखिल भाई?
1: नहीं नहीं, ये ये अविनाश जी भी शादी शुदा है क्या?
0: हाँ यार, उनके तो बच्चे भी होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं?
1: ठीक है अविनाश जी, बिल्कुल एकदम दिल खोल के हंस लीजिएगा आज
0: कल। नहीं, बिल्कुल मैं, उनको उनको पता है ना, जो उनकी वाली वाइफ है वो इलाहाबाद में रहती है।
1: उनकी वाली वाइफ मतलब।
0: चलिए गाइस, हम लोग रेडियो कर रहे हैं, हम लोग कोई पर्सनल गेट टुगेदर नहीं कर रहे, लोग सुन रहे हैं, जूते पड़ जाएंगे, बंद करते हैं अब।
2: अच्छा, गाने आने कुछ बजाएंगे क्या?
0: हाँ, गाने बच्चे भी और बजाएंगे भी, आप बताइए क्या सुनेंगे सर?
2: अच्छा, मैं मुझे एक गाना सुनवा दीजिए फिर।
0: अब सुनना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं यहाँ बोल दिया और रेडियो बंद है। हाँ बताइए क्या सुना है?
2: एक गाना है एतबार का।
0: एतबार कर किसका?
2: फिल्म, फिल्म।
0: अच्छा वो अजय देवगन का?
2: नहीं नहीं नहीं, फिल्म सुरेश ओबेरॉय जी का है, उसमें गाना था किसी नजर को इंतजार है।
0: मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कौन से पोस्ट ऑफिस में रखा?
1: सारी पिक्चरें देखी होंगी उनके बेटे की, विवेक ओबेरॉय की। गाना इन्हें सुनना सुरेश ओबेरॉय जी का।
0: देखिए ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, सुरेश ओबेरॉय जी का। अच्छा जी, वैसे आज लता दी का भी जो है जन्मदिन था।
2: जी जी जी जी
0: जी, तो आप मुझे बताइएगा कौन से गाने के लिरिक्स क्या रहेंगे, बोल क्या है गाने के?
2: किसी नजर को तेरा इंतजार।
0: अच्छा ठीक है, वो मैं भाभी को फोन करता हूँ, इंतजार खत्म हो जाएगा सुबह तक। आपने बोला ना किसी ने,
1: नहीं आज आज इनकी सारी नजरें उतरेंगी।
0: अखिल भाई आपको भी घर जाना है ना?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, फिर ये बजा दीजिए नजर के सामने, जिगर के पास।
0: नहीं सर, अब मैं गाना चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरे कंप्यूटर ने आपका गाना सिलेक्ट कर लिया है, तो अब ये गाना ही बजेगा।
2: अभी आपने कहा ना कि मैं भाभी जी को फोन कर रहा हूँ।
0: नहीं आप चिंता मत कीजिए, आपका गाना सिर्फ मुरादाबाद के दिल में ही रहेगा, और गलती से अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो बात अलग है, क्योंकि वो सुन लेती हैं।
2: कभी कभी सुन लेती हैं।
0: हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और वैसे तो हमारा जाने का समय 10 बजे था, लेकिन आप आए तो 10:10 हमने दे दिए, हालांकि 10 मिनट के पैसे नहीं मिलेंगे, वो बात अलग है। लेकिन वो कहते हैं ना सर कि देखिए ये बड़ा रैंडम था, हमें भी उम्मीद नहीं थी आपका फोन आ जाएगा, और आपको तो थी नहीं उम्मीद, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और ये गाना आपको सुनना पड़ेगा, अब रेडियो ऑन करके सुनिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चलिए चलिए, नमस्कार भैया।
1: नमस्कार जी,
0: धन्यवाद सर।
3: को तेरा इंतजार आज भी है।
0: चलिए भैया, इंतजार मेरे घर वालों को मेरा है, और अखिल भैया को अखिल भैया की फैमिली का है, तो अखिल भैया अब हम लोग अपनी थैला पोटली उठा के निकलते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आनंद, और इस समय बारिश का वैसी मौसम हो रहा है।
0: Exactly.
1: तो हमें थोड़ा तो जल्दी निकलना
0: है ना, 10:11 हो गए हैं, बड़ा अजीब सा संयोग है, 10:10 नहीं हो रहे हैं, अब 11 हो रहे हैं, तो अब हम लोग जाते हैं गाइस। मैं सुबह आपको मिलूंगा इसी एनर्जी के साथ, सुबह या शाम सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6,
1: गुनगुनाते रहें,
0: रेडियो बजाते रहें,
1: बजाते रहें।
0: क्या कर रहे हो? रेडियो बजाते रहें, इनको सदमा लग गया, रेडियो बजाते रहें, गुनगुनाते रहें, और ऐसे ही सुनते रहें, और अपना ध्यान खास
1: सभी
0: करके रखें।
1: हैप्पी डॉटर्स डे भी।
0: अरे वाह, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉटर्स डे की, और बेटियां हमारे देश का भविष्य है, उनका स्पेशल ख्याल रखें, और जो वो करना चाहती हैं, जो वो बनना चाहती हैं, उन्हें एक मौका जरूर दें।
1: जरूर जरूर जरूर।
0: चलिए हमारी तरफ से शुभ रात्रि, शुभ खैर, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दो भैया।
1: गुड नाइट
0: आपको भी। गुड नाइट।
1: गुड नाइट जी, गुड नाइट।

गुमा सुबह पे जिस तरह शाम का वो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।